ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

श्री रामचरितमानस की स्वर थे हरिहरन के और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। सुविचार। गुणवान मनुष्य के संपर्क में रहकर सामान्य मनुष्य भी गौरव प्राप्त करता है, जैसे कि फूलों के हार में रहकर धागा भी मस्तक के ऊपर स्थान प्राप्त करता है। आइए सुविचार के बाद सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की इस कड़ी में पेश है ये पहला गीत तेरी कसम फिल्म से, जिसे गाया है अमित कुमार ने, आनंद बख्शी के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

पेश है ये अगला गीत दो दिलों की दास्तान फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में, बोल अंजन के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

बेमिसाल फिल्म के इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अभी आपने सुना फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी को एक प्यारी सी सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपका शनिवार शानदार शुरुआत के साथ बीत रहा होगा। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी मॉर्निंग कंपेनियन नीतू सिंधी, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो कुछ बातें कुछ गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

दोस्तों, शनिवार की जो सुबह है उसका अपना ही एक अलग एहसास होता है। ना ऑफिस की भाग दौड़, ना सोमवार वाला तनाव, बस सुकून, अच्छी बातें और बेहतरीन गीत। और आज की इस खूबसूरत सुबह को और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा विषय। आज हम बात करेंगे उन एहसासों की, उन यादों की जो सीधे दिल को छू जाती हैं। पहली बारिश, नाम सुनते ही कितनी बातें याद आने लगती हैं। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवाएं, चाय की प्याली, गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में पसंदीदा गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

सच कहूँ दोस्तों तो पहली जो बारिश है वो सिर्फ मौसम नहीं बदलती बल्कि मन का हाल भी बदल देती है। पहली बारिश की बूंदें जब धरती पर आती हैं तो साथ में हजारों यादें भी ले आती हैं। आइए सुनते हैं खूबसूरत तकमा, प्रोग्राम का नाम कुछ बातें कुछ गीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

श्रोताओं, फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत में। मैं हूं आपकी रेडियो सखी नीतू सिंधी। दोस्तों, सच सच बताइए कि बचपन में बारिश देखते ही सबसे जो पहला ख्याल है वो क्या आता था? यही ना कि काश आज स्कूल की छुट्टी हो जाए, है ना? बारिश में कागज की नाव बनाना, पानी में उछल कूद करना और फिर घर आकर डांट खाना। लेकिन मज़ा बहुत आता था। आज हम बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तनाव भी बढ़ गया है, लेकिन पहली बारिश आते ही दिल फिर से बच्चा बन जाता है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

श्रोताओं, बारिश से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि बारिश की जो बूंदें हैं वो भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। श्रोताओं, ये एक सवाल आपसे है कि आपको पहली बारिश में सबसे पहले क्या याद आता है? चाय, पकोड़े या किसी खास इंसान के साथ बिताया हुआ कोई पल? जरा सोचिए, तब तक सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: अगर बारिश की बात हो और प्यार का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बारिश और मोहब्बत का रिश्ता बहुत पुराना है। एक छाता, दो लोग और ढेर सारी बातें। कभी बातें होती हैं, कभी सिर्फ निगाहें बोलती हैं।

दोस्तों, हर बारिश सिर्फ खुशियाँ नहीं लाती, कभी कभी कुछ बूंदें पुरानी यादें भी ताज़ा कर जाती हैं। किसी अपने की याद, कोई अधूरी कहानी, कोई अधूरा सपना, बारिश दिल के जज्बात बाहर ले आती है। शायद इसलिए कहा जाता है बारिश दिल की भाषा समझती है।

जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात क्या क्या है जानते हैं आप? छोटी छोटी खुशियाँ, खिड़की के पास बैठना, हल्की बारिश, एक कप चाय और पसंदीदा संगीत, बस इतना काफ़ी है। कभी कभी खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे पलों में मिलती है। पहली बारिश हमें एक खूबसूरत सीख देती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, सुकून आता ज़रूर है, बस थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है।

कितना सही कहा गया है ना श्रोताओं, कि बारिश की जो बूंदें होती हैं वो एकदम बेरंग होती हैं, उनका कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब वो धरती पर पड़ती हैं तो पूरे जहान को हरा भरा कर देती है। कहते हैं ना, सारे इत्रों की खुशबू मंद पड़ गई, मिट्टी में बारिश की बूंदें जो चंद पड़ गई।

0: श्रोताओं, आज का ये सफर यहीं तक। आज आपके साथ पहली बारिश की बातें करके दिल सच में खुश हो गया। जाने पहले एक छोटी सी बात ये कि जिंदगी भी मौसम की तरह होती है, कभी धूप, कभी गर्मी, कभी तूफान, लेकिन हर मुश्किल के बाद सुकून जरूर आता है। बारिश की बूंदें सिर्फ पानी नहीं होती, ये उम्मीद, सुकून और नई शुरुआत होती है। मैं आपके साथ आपकी रेडियो सखी नीतू मिलूंगी फिर से इसी प्रोग्राम जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत में, एक नए विषय और नए गीतों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी की हर छोटी खुशी को महसूस कीजिए। नमस्कार दोस्तों। अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरूआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।

0: 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: साणंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल 1 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल

0: कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात 440 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 530 अरब डॉलर और सेवाओं का निर्यात 421 अरब डॉलर से बढ़ाकर करीब 470 अरब डॉलर करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में 863 अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां

0: गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi

मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। नित नई जानकारियों और सुरीले गीतों से सजाकर एक नए दिन एक नए अंक के साथ हम हाजिर हैं।

0: साल 2026 के 185वें अंक के साथ आपसे मुखातिब गुलनाज खान और
1: अर्चना चौहान,
0: स्वीकार करें हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: और नमस्कार के आज के अंक को पहुंचा रही है आप तक हमारी टीम, जिसमें है आज ट्रांसमीटर पर चंद्राराम पटेल और कैलाश चंद्र सोलंकी।
0: तकनीकी सहयोग के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद हैं सुनील जयपाल।
1: अनाउंसर ऑन ड्यूटी प्राइमरी चैनल पर हमारे साथ है नीतू सिंधी और एफएम से हमारा साथ दे रही हैं रेखा भाटिया। नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड की।
0: पूरी टीम के साथ आवाज और जज्बात के साथ आपसे मुखातिब गुलनाज खान और
1: अर्चना चौहान।
0: श्रोताओं, जिंदगी का एक और नया दिन, उम्मीदों का दिन और वे लम्हे यकीनन हमें और प्रेरित करते हैं जिसमें हम उम्मीद रखते हैं। हौसलों का एक और दिन है और साथ ही कुछ कर गुजरने का एक और दिन है, और कुछ लोगों के लिए बहानों का भी दिन है। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए आज सुकून भरा दिन है तो कुछ लोगों के लिए बहुत सारी प्लानिंग का दिन है। आपका दिन कौन सा है हमें बताइए और ज़रा उसके लिए तैयारी भी कीजिए। बहरहाल हमारे लिए आज का दिन बड़ा ही खुशी का है, जोधपुर शहरवासियों के लिए। आज बहुत कुछ होने वाला है हमारे शहर में और हमारे प्रदेश के लिए भी। आज एक नई डगर की शुरुआत हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और नित नए दिन उजले सवेरे हाजिर होते हैं हम लेकर गाने नए नवेले।

जी हाँ दोस्तों, मन मन मस्त मगन होता रहता है, क्योंकि जो मौसम है वो बदल चुका है, और जब मौसम बदलता है तो दिल के हालात भी बदलते हैं और आपका जो मूड है वो भी बदलता है। और कहा भी जाता है कि जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार तो मिलती है।

जोश और ज़िंदगी से लबरेज़ ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना। और ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। और हमारी जानिब हम ये कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी को खुला छोड़ दीजिए जीने के लिए, बहुत संभाल के रखी हुई चीज़ वक्त पर नहीं मिलती। इश्क क्या, हुस्न क्या और क्या फसाना, हम ना होंगे तो ये रंगे ज़माना क्या और अफसाना क्या। जी हाँ, हर हाल में मुस्कराने की ठानी है, ऐ ज़िंदगी हमने अभी हार कहाँ मानी है।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और नमस्कार में हम गाने लेकर आए हैं आपके लिए, नए नवेले। और अभी जो आपने गाना सुना वो कहता है कि जिंदगी आईना है, जैसा आप उसे देखना चाहेंगे वैसा ही दिखेगी। और जब भी खुशियों की और ख्वाहिशों की बात आती है तो कहा जाता है कि छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है, ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। और इन बदलते पलों के साथ हम भी बदलते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अनुभव करते हैं और इन खुशियों को साझा करते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई बहुत दिल के करीब होता है, और जब कोई दिल के करीब होता है तो उनको यही नसीहत जाती है कि सचमुच जुड़े हो अगर किसी की ज़िंदगी के साथ, तो कबूल कर लो उस व्यक्ति को हर कमी के साथ। क्योंकि शब्दों से अगर किसी को एतराज़ होता है ना, तो उसे कहना चाहिए कि क्या तुम मौन पढ़ सकोगे। जी हाँ, ज़िंदगी हमें ऐसे ऐसे सबक देती है कि खामोशी के साथ हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, और कोई हमसफ़र मिल जाए तो फिर जिंदगी का ये सफर और भी सुहाना हो जाता है।

0: श्रोताओं, 9 बज रहे हैं। यहाँ हम रुकेंगे न्यूज़ ब्रेक के लिए और 9:10 में नमस्कार कार्यक्रम फिर से जारी रहेगा आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर, देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की, कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राज्य को विभिन्न सौगात देंगे। वे जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जाएंगे, जहां वे लगभग 1,06,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश के पहले

0: ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रूपये से अधिक की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पचपदरा में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखे जाने और जोधपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि नए टर्मिनल को लेकर वहां लोगों में बहुत उत्साह है। इसके बनने से अधिक पर्यटक जोधपुर आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवस्था मजबूत होगी।
2: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई संपर्क से देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, ओसिया और थार जैसे क्षेत्र पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन, रेस्तरा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आधुनिक एयरपोर्ट निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति देगा, जिससे जोधपुर क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल पचपदरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिफाइनरी का इंतजार लंबे समय से था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
3: काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का, रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने 17 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास किया और उद्घाटन भी उसका वो ही कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है।
0: मुख्यमंत्री ने कल पचपदरा स्थित मंडापुरा में एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का भी उद्घाटन किया। सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। दो दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिरोही संवाददाता।
4: कार्यक्रम में देश भर से विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ तथा नीति निर्माण से जुड़े अधिकारी भाग लेंगे। चिंतन शिविर में न्याय प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली, नागरिकों को सरल एवं सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने, संस्थागत सुधार तथा सुशासन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून आगे बढ़ रहा है और उसने ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पहुंच बना ली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा उदय

0: जयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। अगले दो तीन दिन में इसके शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने आज जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। इसके अलावा कुछ दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर शामिल हैं। यहां भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच जयपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं। सुबह कुछ स्थानों पर छिटपुट बरसात भी हुई। करौली में हल्की फुहारों ने जिले का मौसम खुशनुमा बना दिया है। भरतपुर और बांसवाड़ा में कल देर रात से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। जालौर में कल रात हवा के साथ हल्की बरसात हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा, आबू रोड, स्वरूपगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल देर शाम घंटे भर तक झमाझम बादल बरसे। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि वहां दो दिन से चल रही बारिश से लगभग सभी इलाके तरबतर हैं।
1: राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। दो दिनों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं बारिश की वजह से खेत भी पानी से लबालब हो गए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और किसान अब खेतीबाड़ी में जुट गए हैं। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को उपयुक्त फसल बुवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जलाशयों और भूजल स्तर की निगरानी, पशु चारे की उपलब्धता तथा कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन कल जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत की आधारशिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर। देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और आज के अंक के साथ आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
3: अर्चना चौहान। अब नमस्कार कार्यक्रम में बढ़े चलते हैं आगे और जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों है खास। जी हाँ दोस्तों, आज है 4 जुलाई का दिन और साथ ही साथ आज के दिन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज के दिन को विशेष बनाती है। जैसे बात कर ली जाए 1776 की, तो अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और जिस वजह से अमेरिका में आज का दिन मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में।
2: जी हाँ श्रोताओं, 2 जुलाई 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया और दो दिन बाद 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने ग्रेट ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता और मिलकर नया देश बनाने की घोषणा की थी। श्रोताओं, ये एक ऐसी घटना थी जिसने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन को जन्म दिया था। और आपको ये भी बता दें कि उस वक्त उनके ध्वज पर 13 उपनिवेशों के आधार पर 13 स्टार थे और आज 50 राज्यों के आधार पर 50 स्टार हैं।
3: बात

कर ली जाए 1871 की, तो दुनिया के पहले विद्युत संचालित सक्शन आधारित वैक्यूम क्लीनर बनाने वाले इंग्लैंड के इंजीनियर हुबर्ट सेसिल बूथ का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। उन्होंने फेरिस पहियों यानी व्हील्स सस्पेंशन ब्रिज और कारखानों को डिजाइन किया था।

0: साल 1884 में अमेरिका की आजादी के 100 साल 1876 में पूरे होने पर फ्रांस ने एक प्रतिमा उपहार स्वरूप देने की घोषणा की थी, जिसका नाम विश्व को स्वतंत्रता का प्रकाश देने वाली रखा गया था। प्रतिमा निर्माण में अपेक्षा से अधिक समय लगा, इसलिए शताब्दी वर्ष 1876 को वो तैयार न हो सकी और आज ही के दिन साल 1884 को विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी औपचारिक रूप से भेंट की गई थी। श्रोताओं, इस मूर्ति पर अमेरिकी स्वतंत्रता की तारीख भी लिखी है, 4 जुलाई 1776।
1: बात कर ली जाए 4 जुलाई 1933 की, तो हंगेरियन आविष्कारक लियो जे लार्ड ने परमाणु बम के इतिहास में सबसे पहले न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर अवधारणा प्रस्तुत की थी। 1934 में इसका पेटेंट रजिस्टर कराने हेतु आवेदन किया और इसके साथ ही लियो अमेरिका को न्यूक्लियर शक्ति बनने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे।
0: चौंतीस में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला मैडम मेरी क्वेरी का निधन हुआ था। आज के दिन उन्हें पोलोनियम और रेडियम जैसे रासायनिक पदार्थों की खोज के लिए जाना जाता है। वे भौतिकी और रसायन जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति भी थीं।

0: और दोस्तों, आज ही के दिन फिलीपींस को संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता मिली थी 1946 में। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन के बाद स्पेन ने फिलीपींस को अमेरिका को सौंप दिया था। 48 साल अमेरिकी शासन के अधीन रहने के बाद यह स्वतंत्रता उसे मिली थी।
1: जी हाँ श्रोताओं, फिलीपींस को जब स्वतंत्रता मिली तो वो ट्रीटी ऑफ मनीला के तहत 4 जुलाई 1946 को अमेरिका ने फिलीपींस की स्वतंत्रता को औपचारिक मान्यता दी थी और फिलीपींस संप्रभु राष्ट्र बना था। रोचक बात यह है कि 1962 तक वहां पर स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता था और फिर उसे बदलकर 12 जून किया गया। ये वो तारीख थी जब स्पेन से आज़ादी की घोषणा हुई थी। तो आज वहां पर फिलीपींस अमेरिकन फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है।
0: बात कर ली जाए 4 जुलाई 1947 की, तो आज ही के दिन भारत के बंटवारे का विधेयक पेश हुआ था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। आजाद कैसे होगा, इसकी पूरी योजना बनाने की जिम्मेदारी मिली लॉर्ड माउंटबेटन को। उन्होंने सबसे पहले एक डिकी बर्ड प्लान बनाया जिसे नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद माउंटबेटन ने एक और प्लान बनाया जिसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है।

श्रोताओं, ब्रिटेन के शासन से आजाद होने के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, यही तय करने के लिए ब्रिटेन की संसद में द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया था। इसी विधेयक में भारत के बंटवारे और एक अलग देश यानी पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। ये विधेयक 18 जुलाई को पारित हुआ था। इसके तहत ब्रिटिश हुकूमत के हटने यानी भारत के आजाद होने की तारीख 15 अगस्त तय की गई थी। और 1960 में अमेरिकी झंडे में 50वें सितारे को जोड़ा गया था, जो नए राज्य हवाई का प्रतिनिधित्व करता है।

0: 1966 में आज ही के दिन भारत में प्रेस काउंसलिंग ऑफ इंडिया का आधिकारिक रूप से स्थापना की गई थी। इस संस्था का मुख्य कार्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के साथ पत्रकारिता के नैतिक मानकों को बढ़ावा देना है, समाचार पत्रों और पत्रकारों को सलाह जारी करना और प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: श्रोताओं, 1997 में नासा का रोबोटिक रोवर यान सोजनर मंगल ग्रह पर पहुंचा था। ये नासा के मार्स पाथफाइंडर यान का हिस्सा था। 7 महीने के सफर के बाद ये मंगल ग्रह पर पहुंचा था और वो ऐतिहासिक दिन आज ही का था।
0: और ठीक एक साल बाद यानी 1998 में आज ही के दिन जापान ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लैनेट बी नामक अपना पहला अंतर्ग्राहिक मिशन भेजा था। इस मिशन को बाद में नोजोमी नाम दिया गया और इसी के साथ यह मिशन आगे बढ़ा।
1: साल 2005 में ऑस्ट्रिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति सन बफिन खोजी गई। उत्तर ऑस्ट्रेलिया के तटीय जल और संभवतः पापुआ न्यू गिनी के आसपास के इलाके में पाई गई थी ये प्रजाति। इस नई प्रजाति की पहचान को ऑस्ट्रेलियन सन बफिन डॉल्फिन नाम दिया गया। ये लगभग 30 वर्षों में वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त पहली नई डॉल्फिन प्रजाति थी।
0: वहीं बात कर ली जाए सन 2006 की, तो आज ही के दिन नाथुला दर्रा व्यापार के लिए फिर से खुला था। 1962 के भारत चीन के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था और बाद में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 4 जुलाई 2006 को इसे दोबारा खोला गया था।

जी हाँ दोस्तों, इतना प्यारा सा गीत था और वाकई वादियाँ भर जाएगी जब बारिश होगी। अभी एक बार बारिश हुई है लेकिन हमें इंतज़ार ज़रूर है। और जब बारिशों की बात करते हैं तो साथ की बात करते हैं, और जब साथ की बात करते हैं तो सहकारिता की भी बात करते हैं। और आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस।

0: जी हाँ, प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है सहकारिता और सहकारी समितियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में उनके योगदान को उजागर करना। और इसकी शुरुआत की बात कर ली जाए तो सन 1923 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी ICA का गठन किया गया था। इसमें सतत विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए साझे प्रयास किए जाते हैं और प्रति वर्ष इसके लिए एक थीम भी निश्चित की जाती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, संगठन में शक्ति होती है, ये सिर्फ कहावत नहीं है, अनुभव है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों का। देश का इतिहास गवाह है कि जब जब समाज देश की खातिर एकजुट हुआ है, तब तब हमें कामयाबी मिली है। मानव समाज में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी संगठन के गुण मिलते हैं जो उन्हें अस्तित्व के नुकसान से बचाते हैं। संगठन और सहकारिता को नया नाम नहीं, ये तो हमारे अस्तित्व की विकास यात्रा से जुड़ा है, लेकिन इस आंदोलन का जब जब एक रूप में हम उसे देखते हैं तो उसमें कई विचार जुड़ते चले जाते हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है, तो इस दिवस पर सहकारिता को सर्वमान्य पहचान देने का उद्देश्य छुपा है और भावना भी यही कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता, आर्थिक दक्षता, शांति, समानता और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा मिले। दरअसल सहकारिता से समाज के उपेक्षित वर्ग को शक्ति मिलती है। सहकारिता की जन्मस्थली रही है भारत भूमि। हमारे संस्कारों में, हमारे आयोजनों में संगठित होकर रीति रिवाजों को मनाने की एक लंबी परंपरा रही है। और जब जब अपने देश के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो संगठन की बात हमें नज़र आती है, कि चाहे वो वृक्षों को बचाने की बात हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो दुग्ध क्रांति आपको याद होगी, जब सभी ने संगठित होकर एक क्रांति को जन्म दिया था और आज वो संगठन कितनी मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपना नाम किए है।
0: इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई कार्य साथ मिलकर करते हैं तो वो सक्सेस होने के उसके चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर हम साथ रहेंगे तभी विकास करेंगे। और कहा भी यही जाता है कि जब कड़ी से कड़ी मिलती है तो एक जंजीर बन ही जाती है।
1: जी हाँ, भारत में ही नहीं, चीन जैसे विशाल देश में और साथ ही साथ सिंगापुर, फिजी जैसे छोटे देश में भी सहकारिता है। तो बस कड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, कड़ी को कड़ी से मिलना होगा।

0: कड़ी दर कड़ी जब मिलती है तो संगठन बनता है, और जब जिंदा तस्वीर की हम बात करते हैं तो हर तस्वीर का एक नाम होता है।
1: जी हाँ, और उसका नाम है आधार कार्ड। आज काम की बात में हम कर रहे हैं बात आधार कार्ड की अपडेट से जुड़े नए नियमों की। जी हाँ, आधार कार्ड हमारे मुख्य दस्तावेजों में से एक है जिसके द्वारा हम सरकारी योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं, और इसके लिए समय समय पर हमें उसे अपडेट करना पड़ता है, जैसे मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या एड्रेस चेंज हो गया है या कोई और अपडेट। 1 जुलाई 2026 से आधार से अपडेट को लेकर एक राहत दी गई है। पहले इसके अपडेशन के लिए आपको शुल्क देनी पड़ती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इसके तहत अब आप माई आधार पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन दस्तावेज मुफ्त अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से ईमेल आईडी अपडेट करने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क भी 6 महीने के लिए पूरी तरह से हटा दिया गया है। और महत्वपूर्ण बदलाव इसमें जैसे जन्मतिथि है या जेंडर में सुधार के नियमों में एक सख्त कानून लाया गया है, और इसे आप जीवन में केवल एक ही बार बदला सकते हैं। 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है, और अब UIDAI द्वारा केवल नए प्रकार के आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं जिसमें किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को नहीं रखा गया है, जैसे पता या 12 अंक का नंबर। इसके बजाय केवल आपकी फोटो और एक सुरक्षित QR कोड दिखाई देगा। तो अगर आपको अपडेट करवाना है अपना आधार, तो जल्दी ही करवा सकते हैं।

0: श्रोताओं, आज का दिन हमारे शहर और हमारे राज्य के लिए बहुत खास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में जोधपुर के बहुप्रतीक्षित नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर नए एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसी दौरान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान 2 का भी शुभारंभ किया जाएगा। श्रोताओं, नए टर्मिनल के एप्रन पर एक साथ 12 से अधिक विमानों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में यहां पर 3 से 4 विमानों को ही खड़ा किया जा सकता है और भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाने और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान के यात्रियों को वैसे भी हवाई सफर के लिए एक सौगात मिली है। जोधपुर जयपुर एयरपोर्ट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नियमित उड़ान सेवा के रूप में ये सौगात हमें मिली है। और श्रोताओं, राजस्थान के लिए ही नहीं पूरे देश के औद्योगिक विकास के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
1: जी हां, रिफाइनरी के निर्माण में एफिल टावर से 40 गुना ज्यादा लगभग 3 लाख मेट्रिक टन स्टील, बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज्यादा 16 लाख घन मीटर कंक्रीट और गीजा के पिरामिडों से 6 गुना ज्यादा करीब 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई है। परियोजना में 28,000 किलोमीटर केबल बिछाई गई है जो पृथ्वी के 2 चक्कर लगा सकती है। रिफाइनरी में 125 मीटर ऊंचा डोम, जो कोक डोम स्थापित किया गया है, जो गोल गुंबज से 3 गुना अधिक बड़ा है। अगर बात कर ली जाए कि ये रिफाइनरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो अमेरिका में लुइसियाना के गैरीविले रिफाइनरी के बाद 50 साल में सबसे बड़ी रिफाइनरी नहीं बनी है और अनुमान के मुताबिक 2030 तक 1 से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्षमता कम होने की आशंका है। एक अन्य अनुमान के अनुसार 2035 तक विश्वभर में कई रिफाइनरियां बंद होने के दायरे में हैं और ऐसे में हमारी रिफाइनरी जब बनेगी और काम में होगी तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इसी के लिए आज रिफाइनरी का जो उद्घाटन किया जा रहा है।
0: श्रोताओं, राजस्थान की ये पहली रिफाइनरी है और राज्य की पहली रिफाइनरी होने के नाते आज के लिए हमारा दिन खास है। इससे राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स ये एक कच्चे तेल को ईंधन में बदलने वाली रिफाइनरी नहीं है बल्कि एक इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पेट्रोल, डीजल, LPG, ATF के साथ साथ पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी बनाए जाएंगे और कच्चे तेल का उपयोग भी बढ़ेगा। बाड़मेर बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल का उपयोग करने से परिवहन लागत कम होगी और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी होगा। साथ ही साथ इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, परिवहन और दूसरी सेवाओं का भी विकास होगा। इससे पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे स्वच्छ ईंधन का उत्पादन संभव होगा और सभी कुछ मिलाकर पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी योजना माना जा रहा है। तो श्रोताओं, आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब राजस्थान और देश के विकास यात्रा के इस नए अध्याय का स्वागत करें और आकाशवाणी के इस मंच से हम सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

0: श्रोताओं, आज शनिवार है और शनिवार को हम खास तौर पर आपके लिए शनिवार की रेसिपी लेकर आते हैं। और आज का दिन खास है तो खास बात भी होनी चाहिए, वो भी हो गई, काम की बात भी हो गई, तो अब रेसिपी का टाइम है। और आज का दिन विशेष यूं भी है कि आज इंटरनेशनल जैक फ्रूट डे है, यानी कटहल दिवस। तो जब आज दुनिया के लोग कटहल दिवस मना रहे हैं तो हम कटहल की ही क्यों ना कोई रेसिपी तैयार करें। हर साल 4 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है।
1: जी हाँ, और यह दिन खास इसलिए है क्योंकि पेड़ पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े फल और शाकाहारी लोगों के लिए प्लांट बेस्ड मीट के रूप में कटहल को महत्व दिया जाता है। कटहल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल फल है और कटहल की बाहरी परत जो होती है वो नुकीली होती है। यह फल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, हालांकि दुनिया भर में ये ज़्यादातर एशिया में पैदा होता है। और अगर जानकारी की बात कर ली जाए तो जानकारी के मुताबिक 1888 में पहले हवाई में उगाने की इसको कोशिश की गई थी, लेकिन जो इसका जैकफ्रूट शब्द है वो पुर्तगाली के जैका से लिया गया था और मलयालम में इसे कहा जाता है चाका।
0: और श्रोताओं, कटहल सालों पहले भारत में उगा था, क्योंकि दक्षिण भारत के साथ ही उत्तर भारत के राज्यों में कटहल के पेड़ हजारों साल से हैं। भारत के साथ ही कटहल पड़ोसी देश बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। श्रीलंका और बांग्लादेश में इस कटीले छिलके वाले फल को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था। भारत में इसे सन 2018 में केरल का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया और तमिलनाडु का भी ये राजकीय फल है। कटहल के पेड़ पर लगने वाले फूलों में केवल मादा फूल से ही कटहल होता है। नर फूल खिलकर जमीन पर बिखर जाते हैं। फूलों से इसकी उत्पत्ति होने के कारण ही कटहल सब्जी ना होकर फल माना जाता है। और कटहल स्वाद और पोषण दोनों में भरपूर होता है। कटहल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, सी और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं कटहल का कुछ खास, और कटहल रोगन जोश नाम देते हैं आज जो हम बनाने जा रहे हैं, पूरे जोश के साथ बनाने वाले हैं। ये कश्मीर के प्रसिद्ध रोगन जोश का हम शाकाहारी रूप आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कच्चे कटहल का रेशेदार टेक्सचर और कश्मीरी मसालों की खुशबू मिलकर इसे बेहद लजीज बनाने वाली है। 4 जनों के लिए हम बनाएंगे, वैसे कार्यक्रम हम 2 जने दे रहे हैं तो 1 से हमारा क्या होगा। आप ले

0: जी 500 ग्राम कच्चा कटहल बड़े टुकड़ों से कटा हो आप उस तरह से काट लीजिए। एक कप दही ले लीजिए अच्छे से फेंट कर। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए। 2-3 तेज पत्ता ले लीजिए। दालचीनी ले लीजिए, इतना तो अंदाज़ा होता है। 1-1.5 इंच दालचीनी ले लीजिए। 3-4 हरी इलायची ले लीजिए। 4-5 लौंग ले लीजिए। छोटी इलायची ले लीजिए एक, और 1 छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर ले लीजिए। साथ ही इतना ही सौंठ का पाउडर ले लीजिए। 2 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लीजिए। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी ले लीजिए। 1 छोटा चम्मच धनिया ले लीजिए। और गरम मसाला भी तो डाल ही देंगे ना, और नमक तो आपको पता ही, आप अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। करना क्या है, करना ये है कि 2 कप गर्म पानी में थोड़ा सा हरा धनिया सजावट के लिए आप ले लीजिएगा, और कटहल के टुकड़ों को हल्का सा उबाल लें। फिर सरसों के तेल में सुनहरा होने तक इसे तले या फिर शैलो फ्राई कर लें, और उसी तेल में तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग डालकर खुशबू आने तक भूनें। अब आंच धीमी करके फेंटा हुआ दही डाल दें और लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, सौंफ और सौंठ का पाउडर डालकर 2-3 मिनट के लिए भूनें। तला हुआ कटहल डालकर मसाले में अच्छी तरह से मिलाएं। गर्म पानी और नमक डालकर ढक दें। धीमी आंच पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक चलाएं, और उसके बाद देख लें कि मसाले अच्छे से कटहल में समा गए हैं या नहीं। और अंत में गरम मसाला डाल दें। धनिया जो हमने काट कर रखा था ना, फेंके नहीं, उसे उस पर सजाना है। इसे आप कटहल रोगन जोश को तंदूरी रोटी, नान, रुमाली रोटी या जीरा राइस के साथ में गर्मा गर्म परोसें, और शेफ़ की कुछ ख़ास टिप्स भी होती हैं, अगर उपलब्ध हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए, यहाँ पर गुल शेफ़ आपको कुछ बता रही है। तो मेरी ख़ास टिप ये है कि सब कुछ तैयार हो जाए तो चुटकी भर रतन जोत का तड़का सरसों के तेल में देकर उसकी ग्रेवी में मिला दें। अब अर्चना, आप पूछे कि रतन जोत होता क्या
1: होता
0: है।
1: क्या है जी?
0: जी, रतन जोत एक प्राकृतिक जड़ है, मसाला नहीं है। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यंजनों में गहरा लाल रंग देने के लिए किया जाता है, खासकर कश्मीरी व्यंजनों में जैसे रोगन जोश में। तो आपको करना क्या है कि 2-3 इंच रतन जोत का टुकड़ा ले लें, जो कि सूखी जड़ होती है। छोटे छोटे टुकड़े कर लें। एक छोटे पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल या घी डाल दें अपने श्रद्धा अनुसार, और तेल जब धुआं छोड़ने लगे तो आंच धीमी कर दीजिए और रतन जोत डालकर उसे धीमा कर दें। तेज़ नहीं करना है क्योंकि रंग ख़राब हो सकता है। बस इसी रंग को आपको अपने डिश में मिला देना है और फिर गर्मा गर्म परोसना है। खाने वाले भी कहेंगे वाह क्या जोश है।
1: जी बिल्कुल। और रेसिपी के साथ में एक और टिप जो आपकी आ गई कि इसका कलर आप ऐसे कैसे सुधार सकते हैं। तो आज के शनिवार की रेसिपी में हमने जाना कटहल रोगन जोश।

0: जी
1: श्रोताओं,
0: हाँ
1: अब आपको लिए चलते हैं खेल के मैदानों की तरफ। और फीफा वर्ल्ड कप में कल के मुकाबले में स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दी। एक तरफा जीत के साथ स्पेन ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। और 2010 के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने किसी वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहली जीत हासिल की है। और वहीं पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा कर अंतिम 16 में जगह बना ली है। और समय जब पिछड़ गया था, पुर्तगाल ने एक शानदार वापसी की थी।
0: श्रोताओं, आज नमस्कार कार्यक्रम में बस अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर हम श्रद्धा से उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए बहुत कुछ किया। उसी कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को, भारत के महान संत, विचारक और राष्ट्रभक्त थे। और उनका असल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता थे। 1893 में शिकागो धर्म संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ था। इससे विश्व भर में मशहूर हुए और भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व में पहचान दिलाई थी। और 39 वर्ष की आयु में आज ही के दिन 1902 में उन्होंने समाधि ली थी। वे आज भी युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
1: जी हाँ, और साथ ही साथ आज हम याद कर रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू को, एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्हें जाना जाता है। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश में हुआ। रंपा विद्रोह का नेतृत्व करते हुए गुरिल्ला युद्ध के तकनीकों का उपयोग उन्होंने किया और सम्मानपूर्वक मन्नियम वेडू यानी जंगल का वीर उन्हें कहा जाता है। लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1924 में उन्हें गिरफ्तार कर वीरता से भरे इस युवा क्रांतिकारी को मार दिया, लेकिन आज भी उन्हें एक साहस का प्रतीक माना जाता है।
0: श्रोताओं, यादों की कड़ी में याद कर रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जी को। भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे। श्रम कल्याण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी, सेवा भावना का आदर्श उदाहरण रहा।
1: वहीं आज हम याद कर रहे हैं विमलेश कांति वर्मा को, हिंदी के प्रतिष्ठित भाषाविद, साहित्यकार, शब्दकोश निर्माता के और अनुवादक हैं। हिंदी भाषा और उसके वैश्विक प्रचार प्रसार में योगदान के लिए महापंडित राहुल संक्रियातन सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं।
0: श्रोताओं, याद कर रहे हैं धन सिंह गुर्जर जी को। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरठ क्रांति की शुरुआत का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने धन सिंह गुर्जर को मुख्य रूप से दोषी ठहराया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई।
1: वहीं आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी हमारे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है और बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में सन 2022 में अपने जोड़ीदार सात्विक राज साई राज के साथ मिलकर शानदार खेलते हुए देश के लिए पुरुष डबल फाइनल्स का स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। चिराग शेट्टी पुरुष युगल प्रतियोगिता और मिश्रित टीम प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन खेलते हैं और साथ ही साथ उन्हें 7 वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक अर्जुन के साथ स्विस जूनियर ओपन 2014 में पुरुष डबल्स में हासिल किया था।
0: श्रोताओं, याद कर रहे हैं अम्मू स्वामीनाथन को। भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थीं। संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं थीं, उनमें अम्मू स्वामीनाथन भी एक थीं। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्षता की थी। और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं भरत व्यास जी को, गीत कर रहे हैं। और भरत व्यास जी पर आज हम एक फनकार कार्यक्रम भी प्रसारित करेंगे। श्रोता हमारे FM चैनल से उसे सुन सकते हैं। और यादों की कड़ी में याद आते हैं वो जिन्होंने तिरंगे को रूप दिया था। जी हाँ श्रोताओं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक थे पिंगली वेंकैया।
1: जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक थे और भारत देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक भी थे। पिंगली वेंकैया की संस्कृत, उर्दू और हिंदी भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। साथ ही वे भू विज्ञान और कृषि के अच्छे जानकार थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने अमेरिका के कंबोडिया नामक

0: कपास की बीज का आयात कर भारत को कपास बीज के साथ अंकुरित किया, और साथ ही साथ जो ये आज हम अपने तिरंगे का स्वरूप देखते हैं वो भी उन्हीं की देन है।
1: जी हाँ साथियों, तिरंगे के तले हम सब एक हैं। आइए दुनिया को दिखा दे, तिरंगा हमारा गौरव है और हम सब भारतवासी एक हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कामना करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। नमस्कार कार्यक्रम समाप्त करने की गुलनाज खान
1: और
0: और
1: अर्चना चौहान को दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम लोक संगीत।

0: बन चुकी है अवसरों की भूमि राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत।

जनाब सुदर्शन फाकिर, मेरा उनका साथ रहा है कुछ 40 साल से। जलंधर रेडियो पे थे वो, मैं वहां से गाता था। फिर यहां आके मैंने उनका एक फर्स्ट एल्बम एक ही शायर का जो होता है वो फाकिर साहब का था, उसी में से ये नज़्म है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते

0: हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक विवाह ऐसा भी से, जिसमें आवाजें हैं शान और श्रेया घोषाल की। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
5: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहब्बतें से, जिसमें अपनी आवाजें दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए, अब आपको ये गीत सुनवा रहे हैं फिल्म जीत से, जिसमें आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तालसी। इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर से प्रोग्राम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए श्रोताओं, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने।

शुदा हूँ फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में। आइए अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, जिसे गाए हैं कुमार शानू और एलिसा चिनॉय सपना मुखर्जी ने। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आइए, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रेफ्यूजी से, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आइए, आखिरी ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म मन से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत संजीव दर्शन का।

0: श्रोताओं, इस फिल्मी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के ठीक 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम लोक संगीत इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: श्रोताओं, लोक संगीत के इस प्रोग्राम में पहला लोक रंग हम आपको सुनवा रहे हैं ऋचा शर्मा का गाया हुआ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: लोक संगीत के प्रोग्राम में अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता शर्मा का गाया हुआ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: श्रोताओं, अगला लोक रंग हम आपको सुनावा रहे हैं अनुप्रिया लखावत का गाया हुआ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: श्रोतों, अगला लोकरंग राम निवास राव का गाया हुआ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में ये लोक गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, चंपा मेथी पार्टी का गाया हुआ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
2: लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आखिरी ये लोक भजन हम आपको सुनवा रहे हैं, गजेंद्र सिंह राजपुरोहित का गाया हुआ।
3: कबीर

0: श्रोताओं, इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारी अगली पेशकश सुगम संगीत। सुगम संगीत में कार्यक्रम सुनवाने से पहले एक कमर्शियल ब्रेक।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में ये पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं श्रोताओं, रूप कुमार राठौड़ की गाई हुई।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: श्रोताओं, आप आकाशवाणी जोधपुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आइए अब ये रचना सुनवाते हैं हम आपको पंकज उदास की गाई हुई।

0: श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा जिले के पचपदरा पहुंच गए हैं। वे अब से कुछ देर बाद 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विदेश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड के एक हिस्से सहित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया यह नया टर्मिनल भवन हर साल 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजराबू राममोहन नायडू भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि योजना से अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा तथा 100 नए हवाई अड्डों और 20 हेलीपोर्ट का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से लगभग 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा और राजस्थान में विमानन क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी।
2: आप अभी देख रहे हैं उदयपुर में नया टर्मिनल अभी बनने के लिए तैयार है। कोटा में एक नया टर्मिनल हम एयरपोर्ट ही बना रहे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे और काफी श्री गंगानगर है। जैसे हमने राज्य सरकार से भी काफी चर्चा की कि बहुत सारे ऐसे लोकेशन है राजस्थान में जहाँ पे नए एयरपोर्ट की संभावना है, तो वो सबको भी आगे 10 साल में किस तरह से उसको भी सच करें, किस तरह से वहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाए, उस पर भी एक कोशिश हमारी चलती रही।
1: सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हो रहे हैं। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप आधुनिक, प्रभावी और नागरिक केंद्रित विधिक व्यवस्था के निर्माण पर विचार विमर्श होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने सहकार से समृद्धि के संकल्प को दोहराते हुए भारत के विकास और आत्मनिर्भरता में सहकारी आंदोलनों के महत्व पर जोर दिया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। इन सभी को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और हमलों की योजना बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में संलिप्तता के कारण आतंकवादी घोषित किया गया है। यूपीए अधिनियम में संशोधन के तहत केंद्र सरकार को संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया है। संशोधन लागू

0: होने के बाद से सरकार ने 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। राजस्थान पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। 16 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के पहले ही दिन प्रदेश भर में 18,477 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 7,104, तेज गति से वाहन चलाने वाले 5,000 से अधिक चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं अवैध पार्किंग करने वाले और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनवाते हैं किसान साथियों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत। श्रोताओं, कृषि जगत में आज हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता डॉक्टर विपिन चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक कीट विज्ञान काजरी जोधपुर से दिनेश राणेजा की बातचीत। विषय है चूहों से बचाएं अपनी फसल। प्रस्तुति राजेश लामरोड की है।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया आज आपने जानकारी दी रहा चूहों से बचाए अपनी फसल एरवास्ते कार्यक्रम में पधारिया है डॉक्टर विपिन चौधरी, आप प्रधान वैज्ञानिक है कीट विज्ञान काजरी जोधपुर रमाई ने। राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: ज्यों किसान भाई खेती बाड़ी आप करे है भांत भांतरी, चाहे वह दलनी हो, चाहे अनाज री हो, धान री हो, तिलन हो, ए पैदावार लिया करे, चूहा जी का है ए फसला ने बहुत नुकसान पहुंचाया करे
1: जी। ऊंदरा एक ऐडी चीज है कि जी की कहीं रात में निकले गए दिखे नहीं है खेत में, ने सुबह जरे किसान भाई फिरे जरे देखे के कुतरी जाड़ी पड़ी है अपनी सब्जी और जड़ उखवाड़ी वड़ी पड़ी है, बड़े बिल बनायोड़ा है, ए कई चीजें मिले है आपने। ए चूहा है जी का बड़ा खतरनाक है और ए कहीं है किसान भाइया ने दो तरह नुकसान पुगाया करे।
0: हाँ
1: जी का मैं वैज्ञानिक भाषा में कहवा कि एक तो सीधा तौर माते हैं और हाँ। एक इनडायरेक्ट तौर माते हैं,
0: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष।
1: हाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो अब सीधा तौर माते हैं तो कहीं है जाव में बढ़ जा
0: हाँ।
1: और जाव में बढ़िया पचे वो भी फसल ने नुकसान करनो, बीज भाई बीज ने बारे काट ले उनो, बीज बारे निकलियो तो कुतर दे उनो, फसल पाके जरे भेर नुकसान करनो। तो इन तरह आप देखो लागे ऊंदरा अपने जो है हर क्षेत्र में नुकसान करे,
0: इनो जी को नुकसान है बहुत मोटो हुए
1: सा बिल्कुल। उनो कारण भी है सा
0: हाँ।
1: उनो कारण कहीं है कि अपना लागे तो ऊंदरा छोटा सा की है
0: हाँ।
1: और यूं अगर आप देखो लाके एक अपने जी को भगवान एक हैंगारे कहीं है कहवे के साहब एक खाउनी एक सीमा दी है
0: हाँ।
1: कि जो अबे आपा 80 किलो रा मीना खा तो जरे आपा घर में ज्यादा ज्यादा 400-500 ग्राम खानो खा ला। यूं ही ऊंदरा ने भी वजन रे बराबर तो है 10 ग्राम ही खावे,
0: हाँ
1: लेकिन यहाँ साथ कहीं साहब एक देण है। अब कहीं भगवान री कह दो के यहाँ शराब दियोड़ो है या कहीं दियोड़ो है,
0: खड़ी प्रकृति है।
1: हाँ सा यहाँ कहीं मुंडा में जी का आगला दो दांत है जी का कुतर ने काम आवे के,
0: हाँ
1: ए दो दांत जी का रोज 0.4 mm बद ऐसा
0: अच्छा मोटा हुआ है,
1: मोटा हुआ है लंबाई में बद है।
0: हाँ
1: अब अगर ए लंबाई में बद है और ए अगर कुतरे नहीं नी चीजा ने
0: हाँ
1: और हवा नहीं रखे दाता ने तो ए कहीं है के मुंडा में बढ़ जाला ऊपर ला जबड़ा में निचला जबड़ा में,
0: हाँ
1: अब यहाँ मुंडो बिड़ी जाए बंद हो जाए
0: मुंडा रो बिगाड़ हो जाए
1: और हाँ। पचे की खा नहीं पावेला ने बोका ठुकीजदा मर जावेला
0: जने खावता रहे
1: तो इन वास्ते कहीं कुतरता रहे
0: हाँ।
1: खावे तो 10 ग्राम ही है
0: हाँ।
1: कुतरे हल्लो है तो मार्ग में जिकी भी चीज मिलेला उन्हें कुतरेला दाता ने घसेला और घसिया पचाई यानी जी की साइज है जी की नॉर्मल राखेला ताकि मुंडा में नहीं बढ़े
0: हाँ।
1: पहलो कारण तो ओ ने दूजो कारण कहीं टाबरिया मोखलाई देवे सा
0: हाँ।
1: एक ऊंदरा रे ज्यादा ज्यादा 22 टाबर हो जावे सा। अब अगर 22 रा 22 आ तो ठीक है कि अपन कहवे कि भगवान अपन माता हाथ राखियोड़ो है, ए 22 रा 22 पनप जावे
0: हाँ।
1: तो आप देखो कहीं होवेला। मैं आपने साहब एक बात बताऊंगी चाहू मां एक बार कहीं करियो एक अध्ययन करियो कि प्रयोगशाला में एक जोड़ो ऊंदरा छोड़ दा आपा
0: हाँ।
1: और साल भर पचे देगा कितना ऊंदरा होया तो वो मानो प्रयोग में उनमें गणित लगाई कोई स्टेट

0: इसलिए था पड़ियो कि एक जोड़ो ऊंदरो पूरा साल में 1200 टावर पैदा करे। अब आप इतना मोकलाई जोड़ा आपने खेत में और हैंग रहेंग टावर पनप जा।
1: हाँ।
0: आपा तो रह वाला कोनी ऊंदरा ही रह वाला
1: सी। सही कहे सा, पूरो जी को धान है वो चौपट कर दी।
0: विपिन
1: जी बहुत ही बढ़िया जी की आप गहन जी की बात है वे आप किसान बहने बताई हो, और हमें यू लागे के खास तौर से ए जी का ऊंदरा है ए अपना खेती है अपनी जी की कृषि है अने इनरा शत्रु क्यों कहवा आपा।
0: तो अब अगर आपा एक कोई फसल बाई हाँ और फसल बाई और फसल में लगाया 2 रुपया और आपने 2.5 रुपया मिलगा जरे तो आपा माना के ठीक है साकी मिली हुई
1: नपो यो।
0: अब आपा लगाया 2 रुपया और मिलियो 1.5 रुपयो
1: घाटो
0: 50 रुपया घाटो। अब उन घाटा ने घाटो पूरा करा।
1: सही बात कही सा।
0: तो अब जरे वो घाटो हुए तो जरे आपने कने कही है कि साहब इनो जाप तो होना चाहिए। तो अब ऊंदरा जो मैं आपने पहली बताया ज्यादातर रात्रि चर है।
1: हाँ।
0: तो किसाना ने ठा ही नहीं पड़े कि साहब ऊंदरो मारी फसल नुकसान कर दी। ऊ में कहीं है आपने कहीं करना पड़े कि आपने ठा की कर पड़े फसल में नुकसान हो या तो ऊंदरा रा बिल दिखे तो आपन ठा पड़े साहब ऊंदरा है और अब है जो है आपने देन करेला।
1: हाँ।
0: तो जो है आपने इंजाम करना चाहिए।
1: भात भातरा जी का क्षेत्र मैंने ऊंदरे जी की पहचान है किसान भाई कर ले आपने के बिल भी ठिंडा योड़ा है कुतिरोड़ा जी का पौधा है हाथ जी आप बात बताई मल है मूत्र है वो भी बिकलोड़ो दिखे अटे ऊंदरा री उपस्थिति है। हमें हैंग बताऊंगी और हमें यू आवे के ए जी का ऊंदरा है इनारे माते अपने किसान भाई जी को प्रभावी जी को नियंत्रण है आणो जी को खात्मो है आणो जी को कंट्रोल की कर रख सके।
0: साहब एक बहुत बढ़िया प्रसिद्ध करियो आप होया कई करे के साहब माने कने कई तरह रा जो है नियंत्रण रा उपाय है। तो आपा पहली आपा वही उपाय करा के भाई ऊंदरा ने रोक ला।
1: हाँ।
0: वो रोकने की विधियां अलग है जो आपा एक तो स्वच्छ खेती करा आप जरा खेत खड़ो तो थोड़ो तवी ऊंडी लगाओ क्योंकि खेत रे मायने जितना भी बिल है वे भोंगी जाला।
1: हाँ।
0: कई तो तवी रे नीचे कटने मर जाला के जी का दौड़ी के वो गिंडक है चील कौआ है ए खा ले तो थाना कासो नियंत्रण हो जाए। तो मैं आ कह सा बाड़ी ऊंचाई है जी की कम रखो ताकि पानी लगाओ जी को पानी रो थोड़ो शोक संत जो है
1: बूटे भी जाबो
0: करे तो ऊंदरा बटे घर नहीं करे।
1: सही बात बताई
0: ठीक है ना सा एक अंडी बेर कहीं है कि भंडारण वगैरह में ऊंदरा री अगर संख्या कम है।
1: हाँ।
0: तो अपने पिंजरा प्रयोग करो ऊंदरो भगवानू गणा डरा।
1: हाँ।
0: के साहब गणेश जी री सवारी है लेकिन गीता रो ज्ञान भी लेवनो चाहिए जिमें कृष्ण जी कहो कि साहब अगर आपने कोई घर वालों भी नुकसान कर रही है तो उन्होंने जाप तो करो।
1: सही बात है प्रबंधन रा
0: तो ये कहीं ऊंदरा जी का पकड़ो एक पानी में डुबो नहीं मार परान पचे फेंको आपा कहीं करा कि 1 किलोमीटर दूर गया ऊंदरों ने बारे नोक दियो वो अपने घरों निकल दूजार घर में बढ़ जाला।
1: हाँ।
0: इन्हें पछे भी अगर आपने लागे के साहब अपने जाप तो नहीं हो रियो है।
1: हाँ।
0: ऊंदरा ने विश्व आपा नियंत्रण कर सका रासायनिक विश्री एक विधि है जिमे रसायन 2 तरह रा मिलिया करे बाजार में एक तेज असर कारक एक धीमो असर कारक।
1: हाँ।
0: कहीं चुगो बनावनो पड़े जिको अपने बाजरो हल्लो हो तो मैं कहवा बाजरा में बढ़ाओ इन चुगा ने।
1: हाँ।
0: और वो चुगो बनाया पचे आप कहीं करो जाओ में पे बिल है जिका पहला दिन भोंग दो क्योंकि एक ऊंदरा घना ही बिल बनावे।
1: हाँ, जाता
0: सा। आतन, हाँ, तो
1: आदा खाली पड़िया रहे।
0: तो पहला दिन वे बिल भोंग दो शाम रहे दूजा दिन हवा रहे जिका ताजा खुलियोड़ा बिल है उन मायने वो जहर रो चुगो 10-15 ग्राम ऊंडो गाल दो ऊंदरो खाई जाप तो हो ही उनो और कम 80% का आपने जो है नुकसान बचेला।
1: हाँ।
0: लेकिन साथ में एक बात और कहनी चाहूँ आपने।
1: हाँ सर।
0: कि आप अगर जो है संकेतिक नियंत्रण करो हैंग विद्यारो एक साथ अनुपालन करो जो स्वच्छ खेती करो पिंजरा रो भी प्रयोग करो जहर रो भी प्रयोग करो तो आपने जो है ऊंदराओं जो है निजात जल्दी मिलेला और लंबा समय तक मिलेला।
1: सही बात बते सर जी की खास जी की बात है कि भाई ऊंदरा माथे किसान भाई नियंत्रण जी को है किन तरह से राख सके और यूं आवे है कि भाई हर आदमी जी चौधरी साहब आप रे खेत रे मैंने जी का ऊंदरा है या बिल है आप उन ध्यान रखो मारो खेत है तो मैं भी ध्यान रखू आ कोशिश वे कि वाणी जी की संख्या है वह वृद्धि मैंने रोक लाग जा। तो हमें एक प्रश्न वो आवे के भाई अपने जी को सामुदायिक जी को नियंत्रण जी की चर्चा अक्सर किसान भाई आपस में क्रिया करे इनरो कई महत्व है।
0: आ तो साहब बहुत बढ़िया आप प्रश्न करियो के आपा वो देखा के जिन्हें घर में पीड़ है वो ही हमारी।
1: हाँ।
0: दूजो कहीं कह वे अरे वह पीड़ कि नहीं घर में आ सके कदी तो भाईसेना ने कहीं करना चाहिए हैंगा ने बेड़ो और काम करना चाहिए। अब जो आप रे एक किसान भाई रे जाव में ऊंदरा है।
1: हाँ।
0: वो लाई फसल भाई ऊंदरा आएगी पाड़ लो जाव खाली पड़ियो है अब आपा तो अपन जाव में नियंत्रण कर लिया पाटला में गया परा
1: बात आ बात होगी अपने घर में दिवाली सफाई करा उन्द्र निकल पड़ोसी घर में
0: कर गया परा। तो इन वास्ते मैं किसान भैया ने हमेशा कहूंगा कि आप हैंग जना भेड़ा हो भेड़ा उपरा ने हैंग जना आप रे खेत में कार्यक्रम एक साथ करो ताकि जितना भी आपने बड़े एरिया बड़े क्षेत्र में जितना बड़ा क्षेत्र में आप सामूहिक अभियान चलाओ ला के भाईषण आपा फलाना दिन भेड़ो हुआ
1: निश्चित कर ले सर
0: निश्चित कर ले के आपा पंचायत में भेड़ा हुआ जो भी विधि है।

0: वो समझ लेवा और जिको है हैंग साते इनो जाप तो करा और जिन्हों कहीं है कि आपने कासा दिन वास्ते निजात मिलेला और एक दूजा रे खेता में है उंदरा नहीं बढ़ेला।
1: हालता हालता आप किसान भाई ने संक्षिप्त महीने कहीं संदेश और कहीं बलाउन देवनी चाहो
0: साहब। बलान ओज है उंदरा रो नियंत्रण जरूरी है। अगर आपने आपरी फसल रो बचाव करनो है तो उंदरा रो जाप तो करनो जरूरी है। और एक जी की बात मैं आपने बहुत जोर देवन कहनी चाहूं के एक घर में नहीं करनो नियंत्रण, एक जाव में नहीं करनो सा नियंत्रण। हैंग बेड़ा हो गांव रा आदमी, हैंग बेड़ा होने सामुदायिक रूप में आपरा खेता में नियंत्रण करो। इन्नू कहीं है कि ऊंदरा आपने लंबे समय तक निजात मिलेला सा।
1: सही बात पति साहब, ओज को ऊंदरा निजात उजाला तो खास तौर से किसान जी की आय है, खाद्य सुरक्षा है और जो को सार्वजनिक स्वास्थ्य है इन मायने भी पदा पवेला। डॉक्टर विपिन जी चौधरी साहब आप कार्यक्रम में पधारिया, चूहों से बचाए अपनी फसल विषय माते किसान भाई ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दे रही, इस वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम सा।
1: कृषि जगत प्रोग्राम रो टेम पूरा वेरियो है। दिनेश राणे जाने सीख दिराओ। राम राम।

किसान साथियों ने अभी सुना अपना कार्यक्रम कृषि जगत। श्रोताओं, कृषि जगत में आज हमने सुनवाई भेंट वार्ता डॉक्टर विपिन चौधरी, प्रधान वैज्ञानिक कीट विज्ञान काजरी जोधपुर से दिनेश राणेजा की बातचीत। विषय था चूहों से बचाएं अपनी फसल। प्रस्तुति राजेश लामरोड की थी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका का।

0: वंदन अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम नारी वाटिका में। और आज की नारी वाटिका का सफर आप तय करेंगे अपनी दो प्यारी सी सखियों के साथ। मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ है
1: मैं हूँ खुशबू। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: सखियों, आज का हमारा मन और मस्तिष्क एक ही ऐसी दिव्य आवाज की ओर आकर्षित है जिसने पूरे विश्व को जगाया।
1: पूर्णिमा, जब जब दुनिया में समाज सुधार और सशक्तिकरण की बात होती है, तब तब हमारा ध्यान जो है वो आधुनिक आंदोलनों की ओर जाता है। लेकिन पता है, आज से 125 साल पहले भगवा वस्त्र पहने एक सन्यासी ने वैश्विक मंच से भारत की नारी शक्ति का जो जयघोष किया था, उसकी गूंज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिन और आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे उनके जीवन की प्रेरणादायक प्रसंग,
1: जी
0: उनके अनमोल विचार, उनके उपदेश, युवाओं के लिए उनका संदेश, महिलाओं के प्रति उनकी सोच, शिक्षा का महत्व और राष्ट्र निर्माण में सबका योगदान।
1: जी तो सखियों, चर्चा करेंगे इन सभी विषयों के बारे में। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो बेहद ही खास रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आप तक पहुंचाते हैं ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

सखियों, इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम नारीवादी का में। और जैसा कि हमने बताया, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो विशेष रहने वाला है स्वामी विवेकानंद के जीवन पर। देखिए सखियों, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम इन्हें जानते हैं, जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 1893 की आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, जो कि आज भी अपना काम कर रहा है। फिलहाल इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको सुनवाते हैं डॉक्टर रेणुका राठौड़, विवेकानंद केंद्र की सदस्य से पूर्णिमा जैन की फोन।

0: नाउट बातचीत। आप बने रहिए कार्यक्रम नारी वाटिका के साथ।
1: आप सुन रहे हैं नारी वाटिका, जहां हम बात करते हैं उन महान विभूतियों की जिन्होंने अपने विचार से पूरी मानवता को नई दिशा दी। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारत के युग पुरुष को, जिनके विचार आज भी युवाओं की रगों में जोश भर देते हैं, जिनकी वाणी आत्मविश्वास जगाती है और जिनका जीवन हमें सिखाता है कि असंभव शब्द केवल कमजोर मन वालों के लिए होते हैं। ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के, और आज हम फोन आउट के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा पर निकलेंगे डॉक्टर रेणुका राठौर के साथ, जो विवेकानंद केंद्र की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम नारी वाटिका में।
2: बहुत धन्यवाद।
1: तो रेणुका जी, चलते हैं विवेकानंद जी की जीवन यात्रा पे और शुरू करते हैं उनके बचपन से। तो आप उनके बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं।
2: देखिए, स्वामी जी बचपन एक ऐसे सुंदर परिवेश में बीतता है, जहाँ पर कि उनके माता पिता बड़े उस समय के समृद्ध लोगों में से हैं और बहुत अच्छा उनका घर परिवार है। उससे भी बड़ी बात यह है कि स्वामी जी जो वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जो बहुत नटखट है, बहुत चंचल है, बहुत जिज्ञासु है और हर चीज को परख कर जानना चाहता है। तो मुझे एक वाकया याद आता है जो हमने पढ़ा था बहुत
1: जी।
2: बच्चों को कहते हैं ना, पुराने समय में, उस समय तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन में था कि देख वो भूत है, उधर मत जाना
1: जी।
2: तो किसी ने जब उनको कहा कि वहाँ ब्रह्म राक्षस है और तुम उधर मत जाना, और वो रात में वहीं रुक जाते हैं और उस पेड़ पर जहाँ के लिए कहा गया था कि यहाँ भूत रहते हैं, वो उस पेड़ पे लटक गए, वहीं बैठ जाते हैं और पूरी रात बैठे रहते हैं वहीं पे, रात भर कुछ नहीं दिखता। तो फिर सुबह कूद के नीचे आते हैं और उसके बाद अपने दोस्तों को कहते हैं कि ये हमें गलत बताया गया है कि इस तरफ भूत रहते हैं, यहाँ कोई भूत नहीं होता। तो ये वो बच्चा है जो हर चीज अनुभव के माध्यम से जानना चाहता है, हर चीज अपनी आंख से परख कर, खुद देख कर, विश्वास के साथ उसको परख कर और फिर उस पे विश्वास करता है। तो ये बहुत अनोखा और मेरा ख्याल है सबसे सुंदर तरीका है किसी बच्चे को बड़ा करने का, जहाँ पर कि उस बच्चे को पूरी स्वतंत्रता मिले और उसको अपने अनुभव के माध्यम से अपनी पहचान खुद करने का अवसर मिले। तो स्वामी जी का बचपन ऐसा था और इसी कारण आज हमारे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको हम युवा पीढ़ी ही नहीं, भारत का हर व्यक्ति पूरे आदर्श पुरुष के रूप में देख सकता है, क्योंकि उनका बचपन बहुत बहुत सुंदर सिद्धांतों और बहुत सुंदर परिकल्पनाओं के साथ बीता
1: जी। और कहते हैं कि स्वामी जी जो हैं वो अपने गुरु जी यानी कि गुरु रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने उनके जीवन को किस प्रकार प्रकाश दिया?
2: तो स्वामी जी युवावस्था और उसी दौरान वो वहां पहुंच गए थे ठाकुर के पास, अपने जो बाद में उनके गुरु बने, वो उनके पास पहले कई बार वहां जाते हैं दक्षिणेश्वर और वो उनसे बात करते हैं, उनके पास उनको बहुत दूर चुपचाप बैठ के देखते हैं पहले, और फिर जैसे ही ठाकुर से उनकी आंखें मिलती हैं और ठाकुर उन्हें अपने पास बुलाते हैं, तो वो उनका पहला प्रश्न ही यही होता है कि भाई आप जो ये ईश्वर की बात कर रहे हो तो क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो वो ऐसे सीधे विश्वास नहीं कर रहे, ठाकुर के हर प्रश्न पे, हर वाक्य पर पहले प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अपने भीतर और उसके बाद उसको परखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आंख मूंद कर किसी पे विश्वास नहीं करना, ये उनके अंदर बहुत गहराई से था
1: जी।
2: और ठाकुर ने बड़े सुंदर तरीके से, और वो पहुंचते भी एक ऐसे सिद्ध पुरुष के पास है जो स्वयं पारदृष्टा थे, तो जैसे ही उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो ठाकुर उन्हें उसी रूप में कहते हैं कि हाँ वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ
1: जी।
2: और तो स्वामी जी एकदम चकित हो जाते हैं और ठाकुर उनकी आंख उनकी भौहों के बीच में अपना अंगूठा लगा देते हैं, और उस वक्त उनका जो अनुभव होता है उसके बाद उन्हें ये अनुभूति, उनको ये विश्वास हो जाता है कि मैं जिस व्यक्ति के पास आया हूँ वो ढोंगी नहीं है, वो पाखंडी नहीं है, वो सचमुच एक गुरु है, वो सच एक बहुत बड़ा ज्ञानी है। और वो उस परखने के कारण फिर वो पूरी तरह से सरेंडर करते हैं। देखिए बहुत सुंदर तरीका, कितना एक जीवन की सुंदर परिभाषा है स्वामी जी के इस एक्शन में, इस कर्म में, कि पहले आप परखो और जब आप परख कर पूर्ण विश्वास कर लो तो फिर समर्पण

0: इतना ही पूरा हो, वहां फिर कोई भी संदेह की गुंजाइश ना हो।
1: तभी तो इनका जो गुरु शिष्य का जो संबंध है वो प्रचलित है कि अगर गुरु शिष्य का संबंध होना है तो गुरुजी और स्वामी जी जैसा होना चाहिए।
0: बिल्कुल निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
1: तो ये गुरु शिष्य का जो संबंध है जैसा स्वामी जी और उनके गुरुजी में था, वैसा ही आज की पीढ़ी उन गुरु शिष्य के संबंध से क्या सीख ले सकती है?
0: देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आज की पीढ़ी में सबसे पहले तो हमें गुरु और शिष्य के संबंध को स्पष्ट करना पड़ेगा। अध्यापक गुरु नहीं है
1: जी,
0: है ना, जिसे आजकल हम कह देते हैं स्कूल में, विद्यालय में गुरुजी हैं, वो गुरुजी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी उस गुरु के पद को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया है। अध्यापक है, वो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा है और वो आप तक पहुंचा रहे हैं
1: जी,
0: है ना। तो एक तो ये स्पष्टता आवश्यक है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में गुरु नहीं है, है ना। गुरु एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक पदवी है, गुरु एक बहुत बड़ी साधना है, और गुरु वही है जिन्होंने अंदर पहले उस भाव को जिया है, उस सत्य को समझा है, जाना है, उसको अंगीकार और आत्मसात किया है, और अब वो इस स्थिति में है कि वो पूरे विश्व को, आगे आने वाली पीढ़ी को या अपने सामने जो भी व्यक्ति आता है उसको ये बताने में समर्थ है, है ना। ये सामर्थ्य होना बहुत आवश्यक है, ये समर्थ है कि जो सत्य मैंने जाना है उस सत्य को अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गुरु का समर्थ होना आवश्यक है। ज्ञानी का अर्थ है अनुभवजन्य, अनुभूति से आया हुआ ज्ञान, है ना, किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं। तो वो अनुभूति से जन्य वो सामर्थ्य है, वो जब उस व्यक्ति के पास आ जाता है तब वो गुरु की पदवी को प्राप्त करने के सही योग्य है। और फिर शिष्य कौन है? जो पूरी तरह से समर्पण कर ले, पूरी तरह से सरेंडर करे, और वो जो गुरु कहे उस पद, उस मार्ग पर बिना किसी संशय के, बिना किसी उहापोह के पूरी तरह से चले और उस सत्य को उसी प्रकार प्राप्त करे और अंगीकार करे जैसा वो गुरु कह रहे हैं
1: जी।
0: तो ये जो परस्पर का भाव है, ये जिनके बीच में आज आ पाता है, वे ही वास्तव में गुरु और शिष्य हो सकते हैं, है ना
1: जी।
0: तो जैसे अर्जुन है, है ना, तो शिष्य से हम शादिमाम स्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, शरणागत हूँ पूरी तरह से
1: जी।
0: अब आप जो कहेंगे वो मैं पूरी तरह से करूँगा। तो ये शिष्य का भाव हो, और गुरु निश्चित रूप से सामर्थ्यशाली होना चाहिए
1: जी।
0: और ये जहाँ पर भी है वहाँ पर फिर सत्य का उद्घाटन होने से कोई रोक नहीं सकता
1: जी। रेणुका जी, स्वामी जी आदर्श है एक युवा पीढ़ी के लिए, तो आज के युवाओं में जो बढ़ता तनाव और निराशा है, उनके लिए उनके जो विचार है वो कितने प्रासंगिक हैं?
0: बहुत बहुत प्रासंगिक हैं। मुझे स्वामी जी जैसा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आज तक नजर नहीं आया। स्वामी जी के लिए ये बहुत सुंदर वाक्य है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, स्वामी जी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे नकारात्मक, कोई नेगेटिव हो
1: जी,
0: उनमें सब कुछ सकारात्मक ही है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नकारात्मक हो। और स्वामी जी युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। मुझे स्वामी जी का वो वाक्य बहुत सुंदर लगता है, बचपन से अपनी युवावस्था मैंने जब उस दौर से गुजरी तब भी मैंने अपने आप को बार बार याद दिलाया। वो कहते थे कि जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है
1: जी।
0: ये नास्तिकता की कितनी सुंदर परिभाषा है, और ये हर युवा को ग्रहण करनी चाहिए। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर भरोसा करें, अपना सामर्थ्य, आप सब कुछ अच्छा तभी कर सकते हैं जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो, और इसलिए आप नास्तिक तभी होंगे जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और स्वामी जी कहते थे माँ भी, ये मुझे उन्होंने उपनिषदों से लेकर बार बार कहा इस वाक्य को, डरो मत, है ना
1: जी, डर के आगे जीत है।
0: हाँ, भय किसी चीज से नहीं होना चाहिए, युवाओं में पूरी तरह से आत्मविश्वास होना चाहिए, भय किसी चीज से नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर तो, युवाओं के अंदर तो वो सामर्थ्य है कि वो पहाड़ को हिला सके। ये स्वामी जी कहते थे कि युवा क्या नहीं कर सकता। स्वामी जी तो बहुत, उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य और है कि मुझे सिर्फ ऐसे 100 युवा

0: मौका दे दो जिनकी शिराओं और धमनियों में जो पाषाण के हो, मतलब है ना फौलादी हो, है ना
1: जी।
0: तो ऐसे मुझे 100 युवा दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल के रखूंगा। तो युवा के अंदर तो वो जोश है। स्वामी जी स्वयं एक ऐसे युवा थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस तमस काल, मतलब घोर अंधकार काल में, जब भारत बिल्कुल निराशा में डूबा हुआ था और पूरी तरह से बंधन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय एक व्यक्ति यहाँ से निकलता है जिसके पास खुद के पास उस समय कुछ भी नहीं है। दूसरों के द्वारा दिए हुए अर्थ और संपत्ति के सहारे वो अमेरिका पहुंचते हैं और वो वहां पर लोगों के अंदर एक इतना बड़ा परिवर्तन उनकी आवाज के माध्यम से ही और उनके कर्म के माध्यम से, उनके एक्शन के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है और भारत की एक नई छवि पूरे यूरोप और पूरी अमेरिका में फैलती है। और वो एक ऐसे व्यक्ति ने कर दिखाया, उस समय के भारत से निकल कर गए थे। तो एक व्यक्ति ही जब पूरे विश्व में बदलाव ला सकता है, एक युवा, है ना
1: जी।
0: तो अगर भारत का युवा, हर युवा अगर जागृत हो जाए और वो स्वामी जी के कहे अनुसार उनकी वाक्यों पर पूरी विश्वास करके और उनका अनुसरण करने लगे, तो क्या हम विश्व नहीं बदल सकते?
1: जरूर
0: रूप से बदल सकते हैं।
1: उन्होंने युवाओं के साथ साथ महिलाओं के उत्थान पे भी बहुत काम किया था। और उनके महिलाओं के उत्थान के लिए उनके क्या विचार हुआ करते थे?
0: स्वामी जी तो वैचारिक सामर्थ्य बहुत कमाल था स्वामी
1: जी, जी।
0: तो वो हमेशा ये, मतलब महिलाओं के लिए तो उनको जब भी पूछा जाता था तो वो ये कहते थे कि भाई महिलाओं के अंदर वो सब सामर्थ्य है जो वो अपना रास्ता स्वयं निकाल लेंगी, तुम उन्हें सिर्फ शिक्षा दे दो
1: जी।
0: और वो हमेशा ये कहते थे कि भाई उस समय जो पाश्चात्य नारी है और जो भारत की नारी है, उन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि भारत की नारी के पास एक बहुत अच्छा सोर्स है कि वो अपने पूर्वजों से उसने जो प्राप्त किया है, जैसे अपने पूर्वजों से उसके अंदर जो गुण प्राप्त हुए हैं, अगर वो केवल उनको अपने जीवन में उतार ले, तो वो उदाहरण देते थे संगमित्रा का, अहिल्याबाई का, मीराबाई का
1: जी।
0: और वो कहते थे कि भारत की जो महान देवियां हैं वो परंपरा को आगे बढ़ाएं और वीर प्रसूता बने, है ना। और उनका ये भी कहना था कि भारत की स्त्रियां बहुत पवित्र हैं, बहुत और त्याग मूर्ति हैं, क्योंकि उनके पास वो बल और वो शक्ति है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने से प्राप्त होती है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि बस शिक्षा महिलाओं को दो, केवल उनको अपने सही और गलत का, मतलब उसके बीच में जो भेद करने का विवेक उन्हें प्राप्त हो जाए, और उसके अलावा महिला में स्वयं में वो सब सामर्थ्य है कि स्त्री जाति जो है वो पूरे विश्व के परिवेश को बदल सकती है, वो एक इतनी सुंदर माँ बन सकती है, वो एक इतनी सुंदर गृहिणी बन सकती है, वो अपना कार्य, उसको आप जो भी कार्य देंगे
1: जी,
0: है ना, वो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकती है। स्त्री के अंदर वो सारा सामर्थ्य है, बस उसे एक सच्ची शिक्षा की आवश्यकता है। और भारत में बहुत समय तक स्त्रियों में शिक्षा का अभाव रहा। आज वो परिवेश निश्चित रूप से बदल रहा है, जो कि बहुत
1: बहुत हद तक बदल भी चुका है,
0: बिल्कुल हर्ष का विषय है। लेकिन यहाँ पर फिर स्वामी जी का वाक्य याद रखना आवश्यक है कि भारत की भूमि में जो अध्यात्म का बीज है वो हमारी स्त्रियों में बना रहे। ये स्वामी जी बहुत कहते थे कि भारत की स्त्री को पाश्चात्य स्त्रियों का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो गहराई है वो पश्चिम में नहीं है, तो इसलिए उस पश्चिम की गहराई को प्राप्त करने के लिए हमारी स्त्रियों को पहले अपने भीतर झांकना होगा और अपने भारत के उन गुणों को प्रस्फुटित करने का सामर्थ्य भारत की नारी के पास है। ये स्वामी जी का बहुत सुंदर, और ये भारत की स्त्री को जानना है कि उसे पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना है, उसे विचार, उसे खान पान, रहन सहन, पहनावा किसी का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन अनुभव के आधार पर अपनी उस धरोहर को संजोकर रखते हुए करिए, क्योंकि भारत के पास जो सामर्थ्य है वो दूसरे देशों के पास नहीं है।
1: रेणुका जी, आज के जो माता पिता हैं, आज के जो शिक्षक हैं, उनको स्वामी जी के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए?
0: देखिए, माता पिता जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास होना चाहिए
1: जी,
0: है ना। और माता पिता वह कार्य करें जो उनके बच्चे सिर्फ उन्हें देखकर अनुकरण कर सके, है ना
1: जी।

0: हम कहें कुछ और करें कुछ और, ये जो अंतर है कर्म का और विचार का, ये नहीं होना चाहिए, है ना
1: जी।
0: हम कथनी और करनी में एक रूपता हो और माता पिता स्वयं उस पद्धति का अनुसरण करें जो हमारी अपनी पद्धति है। जैसे स्वामी जी कभी कहते थे कि किसी दूसरे को अपना बनाने के लिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके विचारों और आपके कर्म के अनुसार वो आपका अनुकरण करने लग जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक अंतर है कि माता पिता वह करें जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे करें,
1: क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो माता पिता को वो देखेंगे करते हुए। और रेणुका जी, जो स्वामी जी के विचार हैं वो अपन अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
0: स्वामी जी का तो हर वाक्य जीवन

0: से अपना सकते हैं?
1: स्वामी जी का तो हर वाक्य जीवन में अपनाने योग्य है। स्वामी जी के
0: जी
1: पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सिर्फ वाक्य हो या केवल कथन हो। स्वामी जी तो पूरी तरह से एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व है जो जीवन में पूरी तरह से अनुकरण करने योग्य है ना।
0: जी
1: उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल विचार मात्र पे हो। वो पूरी तरह से एक अनुकरणीय व्यक्तित्व है जिनकी एक एक बात को जीवन में, चाहे युवा हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, जीवन के हर क्षेत्र में स्वामी जी को उतारा जा सकता है।
0: जी तो चलते चलते जो सखियां हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको आप क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे?
1: स्वामी विवेकानंद भारत का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हमें इस आधुनिक युग में भारत की प्राचीन परंपरा से परिचित करवाने के साथ साथ हमें एक ऐसा सूत्र भी दिया कि जीवन में तर्क और जीवन में विश्वास,
0: जी
1: इन दोनों को तभी ग्रहण किया जा सकता है जब वो सत्य की भूमि पर स्थापित हो। तो स्वामी जी का जीवन पूरी तरह से सत्य पर आधारित जीवन है। पूरी तरह से जीवन के अनुभवों को आत्मसात करने का जो उनका संदेश है, वो एक बहुत अनोखा संदेश है। और भारत के हर व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद बनने के लिए अपने भीतर सत्य का अनुसंधान करना होगा और जीवन में तर्क और विश्वास और समर्पण, इन तीनों जो धुरियां हैं उन पर अपने जीवन को स्थापित करना होगा। कुछ भी आंख बंद करके और उसको ग्रहण नहीं करना है, लेकिन एक बार जब आप उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कस लेते हैं
0: जी
1: तो फिर समर्पण भी पूरा हो। और ऐसा यदि भारत का व्यक्ति, भारत का नागरिक, भारत का बच्चा, भारत की स्त्री, सभी लोग कर पाते हैं तो हम वास्तव में भारत के पुनर अनुसंधान और पुनर्स्थापना पर कार्य कर पाएंगे, जो कि
0: जी
1: बहुत आवश्यक है। आज के समय को देखते हुए और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम अपने भीतर उस सत्य का अनुसंधान करें और फिर दूसरों के लिए उसे सामने रखें। इस रूप में स्वामी विवेकानंद सबसे सुंदर आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने है।
0: जी सखियों, अभी हमने विवेकानंद जी के जीवन यात्रा पे अभी हम चले, और इस यात्रा पे हमारे साथ ही डॉक्टर रेणुका राठौर, जो कि विवेकानंद केंद्र की पुरानी कार्यकर्ता हैं। रेणुका जी, आपने हमारे और हमारी सखियों का इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा भी बहुत आभार आपका। थैंक यू।
2: सखियों, अभी आपने सुनी डॉक्टर रेणुका राठौर, विवेकानंद केंद्र की सदस्य से पूर्णिमा जैन की फोन आउट बातचीत। और चलिए अब आपको फिर से जोड़ लेते हैं कार्यक्रम के संग और ले चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: खुशबू, स्वामी जी कहते थे कि एक विचार लो
1: जी
0: और उसी विचार को अपने जीवन बना लो। आज के अधिकांश जो युवा हैं वो एक साथ कई सारे लक्ष्य तय कर लेते हैं और उन पे चल पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनका ध्यान बढ़ जाता है क्योंकि एक लक्ष्य नहीं, उनके पास चार लक्ष्य हैं और उन चारों में वो जो उनका केंद्र है वो बढ़ जाता है। तो विवेकानंद जी का कहना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरे मन से एक लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा, क्योंकि अगर आप 10 चीजों के पीछे भागेंगे ना तो उसमें से एक भी हाथ नहीं आएगी। इससे बेटर ये है कि आप एक लक्ष्य के पीछे भागो तो वो जीवन में एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगा। और
0: कहते ना कि एक नवा एक

0: नाव पे ही सवार रहना चाहिए,
1: जी
0: अगर हम दो नाव पे सवार होते तो गिरने का डर रहता है।
1: बिल्कुल रहता है। और आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का दौर है ना, आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया के दौर में जी रहा है, तो हर तरफ वही लाइक्स कमेंट्स और दूसरों से तुलना की होड़ मची है। तो इसी चकाचौंध के बीच में आज का जो युवा है, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि खुद को अकेला फील करता है, उदास, और कई बार ऐसा होता है ना कि वो रास्ते से भी भटक जाता है। बहुत सारी
0: हाँ,
1: चीजें ऐसी होती है या सर्कल ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य से उसको भटका देते हैं, तो ऐसे में करियर का भी तनाव होता है,
0: होता है।
1: काफी बार ऐसा होता है कि असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, डर भी लगता है, और अक्सर एक जो कॉमन थिंग होती है वो ये होती है कि खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता है ना,
0: जी
1: कदम डगमगा जाते हैं कि भाई हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय में आज से 125 साल पहले स्वामी जी ने कहा था कि युवाओं को भटकाव से निकालने के लिए आत्मविश्वास का एक अचूक महामंत्र भी है, और वो महामंत्र क्या है इस बारे में भी हम हमारी सखियों से जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

0: सखी, आप सुनाए हैं कार्यक्रम नारीवादी का, और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी कुछ खास। और इसी कड़ी में इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले पूर्णिमा बात कर रहे थे कि युवाओं में जब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो स्वामी जी ने क्या कहा था। तो देखिए, उनका एक बहुत ही खास महामंत्र था, और वो था कि खुद पर भरोसा नहीं करता है ना जो इंसान, वो नास्तिक होता है। अक्सर हम कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म में नहीं मानता या भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक होता है, लेकिन वो कहते थे कि जो व्यक्ति खुद पर ही भरोसा नहीं करे वो नास्तिक होता है, क्योंकि दुनिया
1: खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो वो दुनिया कैसे जीत पाएगा।
0: जी, और वो कहते थे कि कोई भी काम तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि आपको अपनी स्वयं की शक्तियों पर विश्वास नहीं हो। और उनका ये भी मानना था कि दूसरों की राय से पहले खुद की राय बदलो।
1: हाँ, और उनका ये भी मानना था कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
0: जी,
1: आजकल अधिकांश जो युवा हैं वो छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं। सोशल मीडिया भी है तो वहाँ पे भी दूसरों की सफलता देख के वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं, खुद को बहुत कम आंकने लगते हैं। और ऐसे समय में विवेकानंद का जो ये संदेश है हमें याद दिलाता है कि सफलता निरंतर प्रयास से मिलती है, तुलना से नहीं।
0: और कहते हैं ना कि अपनी नियति के निर्माता तो हम खुद ही होते हैं, और जब तक हम ये नहीं कहेंगे ना कि भाई नहीं, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, किसी से हमें कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है, तो वो व्यक्ति जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और कहते हैं ना कि जब तक खुद को मजबूत नहीं सोचोगे तो, और जब तक खुद भी मजबूत नहीं बनोगे, तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते।

0: जी हाँ सखियों, छोटा सा दिल और इस दिल में बसी जो आशा है वही हमें जो है हमारे लक्ष्य की ओर लगातार लेकर जाती है। और पूर्णिमा, पता है, युवाओं को तो प्रेरित किया ही था स्वामी जी ने, लेकिन उनकी एक खास बात ये रही थी कि उन्होंने नारी यानी महिला सशक्तिकरण को भी उस समय बहुत प्रेरित किया था। और उनका ये मानना था कि जब तक किसी समाज की महिला को नहीं सुधारा जाए ना, उनकी स्थिति को नहीं सुधारा जाए, तो
1: जी,
0: शायद वो समाज कभी नहीं सुधर सकता।
1: और उनका ये भी कहना था कि महिलाओं का जो है वो राष्ट्र की शक्ति माना जाता था।
0: जी
1: वो मानते थे कि जो महिलाएं हैं वो राष्ट्र की शक्ति हैं, और उनका कहना था कि किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति है उसका जो सबसे बड़ा जो मापदंड है वो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति है। और यही नहीं, उनके अनुसार यदि महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी ना तो पूरा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। और उन्होंने कई बार बोला भी है कि जो गरीबों की जो सेवा है वही भगवान की सेवा माना जाता है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात इन्होंने कही थी उस समय। और सखी, आपको बता दें कि उसी समय स्वामी जी ने ये साफ भी कह दिया था कि पुरुषों और महिलाओं को समाज के विकास में बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और महिलाओं को सिर्फ दया का पात्र नहीं बल्कि शक्ति का साक्षात रूप भी माने। और इसीलिए उनका कहना था कि महिलाओं की हर समस्या का जो समाधान है पूर्णिमा, वो एक ही चीज़ में है, और वो है शिक्षा। जब तक महिला शिक्षित नहीं हो सकती, तब तक वो समाज भी शिक्षित नहीं हो सकता।
1: और यही नहीं, महिला शिक्षा, महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता पर जो उन्होंने उस टाइम जोर दिया, वो सोचो आज उनके जो विचार है वो सत्य साबित हो रहे हैं।
0: जी
1: पर ये उनका जो विचार था वो इतने वर्षों पहले उनका ये विचार था जो आज जाके सही सिद्ध हो रहे हैं।
0: हाँ, और देखिए उस समय वो चाहते थे कि भारत की जो महिलाएं हैं ना, जो बेटियां हैं, वो गार्गी, मैत्रेयी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर और विदुषी बने। और देखिए जब हम आज 21वीं सदी के भारत को देखते हैं, जहां बेटियां अंतरिक्ष में जा रही है, सीमा पर देश की रक्षा कर रही है, व्यापार और राजनीति का नेतृत्व कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था वो आज सच साकार हो रहा है। और देखिए आज की नारी आत्मनिर्भर भी है, निर्भीक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सफर अभी थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि समाज के हर कोने तक हमें इस भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करना है, और स्वामी जी का संदेश हमें उस हर कोने तक पहुंचाना है।

0: बिल्कुल सखी हूँ। माटी को माँ कहते हैं, और ये जो मिट्टी है ना, यही मिट्टी कहीं ना कहीं हमारी युवाओं की प्रेरणा भी है। और इसी प्रेरणा का उपदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया, कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक।
1: और यही नहीं, कन्याकुमारी की जो चट्टाने हैं वहां बैठकर उन्होंने भारत के भविष्य का चिंतन किया और वहीं से उन्होंने राष्ट्रीय सेवा का संकल्प लिया।
0: क्या बात है पूर्णिमा। और देखिए, उनका ये कहना भी था कि जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता वो कभी भी महान नहीं बन सकता। और माटी तो आपकी माँ है, ये देश आपका है, तो युवा शक्ति जो है वो अपने देश के लिए हमेशा क्या रहे, डेडिकेटेड रहे।
1: तत्पर रहे। जी हाँ, और आज का युवक, जो आज का युग है वो तकनीक का युग है और जानकारी बहुत है लेकिन ज्ञान कम है, दोस्त हजार हैं लेकिन सच्चे संबंध कम है, मनोरंजन बहुत है लेकिन मन की शांति बहुत कम है।
0: तो ऐसे में हमें स्वामी जी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं वो हम हमारी युवाओं को बताते हैं, हमारी सखियों को बताते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, उसका उपयोग करें, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि मोबाइल जो है वो आपके यूज के लिए है, आपके आसानी के लिए है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप उसके ऊपर पूरा निर्भर रह गए और अपने दिन के 24 घंटे में से कई सारा समय आप मोबाइल पर बिताएं।
1: अब तुलना नहीं करें, खुद का जो है आत्म विकास करें।
0: ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल। साथ ही साथ शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखें, क्योंकि जब ये स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर अधिक केंद्रित रह सकते हैं।
1: आप जिस देश में रहते हैं उस राष्ट्र के लिए आप सोचें, उसके लिए आगे बढ़े और हमेशा तत्पर रहें।
0: इसके अलावा समय का सम्मान करें, क्योंकि समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय का जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे, समय भी आपका सम्मान नहीं करेगा।
1: आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा आप अपनी सफलता के कदम नहीं चूम पाएंगे।
0: और अगला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपने भीतर की शक्ति को पहचाने, क्योंकि उनका मानना था कि सारी शक्ति जो है वो हमारे भीतर ही है। इसलिए डरो मत, स्वयं पर विश्वास करो, और स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता का पहला कदम है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में जीते हैं।

0: सखियों, स्वामी जी एक सन्यासी नहीं थे, वे विचारों की एक ऐसी क्रांति थे जो आज भी हर युवा, हर विद्यार्थी और हर माता पिता और हर नागरिक को प्रेरित करती थे।
1: और उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता धन से नहीं, चरित्र से मापी जाती है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए।
0: धर्म और धर्म का अर्थ विभाजन नहीं बल्कि मानवता है, और सबसे बढ़कर हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति छिपी है, आवश्यकता है केवल उसे पहचान कर सही दिशा देने की।
1: तो आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये विशेष रहा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर और उनकी प्रेरणादायक संदेशों पर।
0: तो अब आपको हम रूबरू करवा देते हैं हमारी टेक्निकल टीम से। HPT पे थे विक्रम सिंह भाटी और राय सिंह राव
1: जी। कंट्रोल रूम से हमारे साथ थी प्रवीण कुमार, और साथ ही कंसोल से आप तक इतनी प्यारी प्यारी गाने पहुंचाए उगम सिंह राजपुरोहित ने,
0: और इस प्रोग्राम की प्रस्तुति तैयार की थी मनीष सोलंकी ने। और हम दो रेडियो दोस्त आपके साथ, मैं हूँ पुण्यवा मेरे साथ,
1: और मैं थी खुशबू।
0: तो लेते हैं विदा फिर मिलने के वादे के साथ, तब तक स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: लगेगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
2: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
2: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: अपनी यात्रा के दौरान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है।

0: भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म उमराव जान से, जिसमें आवाजें हैं अलका याग्निक की। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बटवारा से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीत को लिखा है हसन कमाल ने और संगीत का जादू बिखेरा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिंदूर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज ने। गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेटा से, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत दिलीप और समीर सेन का।

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत की ये आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से। आवाज़ रूप कुमार राठौड़ की है, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत अनु मलिक का।

श्रोता हूँ इस फिल्मी गीत के साथ ही। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 3 बज रहे हैं। हमारी प्रथम सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: भाई ऐसा कहा जाता है ना, किसी चीज़ का आप इंतज़ार करो तो भाई इतना ज़्यादा लगता है वो इंतज़ार कि वो कब चीज़ पूरी होगी, कब वो शुरू होगी। और हम सबको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, वो बारिश कल आ ही गई भाई साहब। जो हमें लग रहा था कि कब आएगी कब आएगी, इतने बादल आ रहे जा रहे थे, साथ में कई बार ऐसा भी हुआ कि हवा के साथ बादल चले भी गए, बट कल जो फाइनली बारिश आई और जो खुशी हुई, हालांकि वो खुशी बहुत छोटी सी थी, जल्दी से आगे चली हुई, पर अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब बारिश का मौसम धीरे धीरे आ ही जाएगा। वो मौसम आए ना है, हम आ चुके हैं आपका कार्यक्रम युववाणी लेकर, जिसमें आज है वीकेंड का पहला दिन यानी सैटरडे, जो भी वो भी निकलने वाला है। खैर उसी के निकलने के साथ हम लाए ढेर सारे गाने, ढेर सारी बातें और नए अपडेट्स। हाल फिलहाल आपके साथ जुड़ी है दो प्यारी आवाज़ें, मेरा नाम है रिद्धि।
1: और आज आपके साथ इस आवाज़ का नाम राहुल। और ये वीकेंड की शाम बड़ी मज़ेदार होने वाली है, और जिन लोगों ने अपने प्लान्स डिसाइड कर लिए हैं

उनके लिए तो भैया बढ़िया है, और जिन लोगों का 5 डे वीक था उनके तो भैया मौजे मौजे, और नहीं है तो संडे के तो कल छुट्टी मिलने वाली है ना। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी जारी है, और आपके साथ ये दो आवाज़ें जुड़ चुकी हैं काफ़ी लंबे टाइम बाद, इन दोनों को आप साथ सुन रहे होंगे। पर फिलहाल बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे आज की शाम का पहला म्यूजिकल ट्रैक और एंजॉय करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने।

तो भाई राहुल, जो हम मौसम की बात कर रहे थे, वो जो सबका फेवरेट मौसम होता है, ये वही वाला मौसम है जब हम, ऐसा होता है ना कि बस गाड़ी लेके दूर कहीं घूमने निकल जाओ, बहुत सारी बातें कर लो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, ठंडी ठंडी हवा है, भाई ये किसे नहीं पसंद है। और ये स्पेशल

0: परफेक्ट मौसम वो है कि बस दो बूंद गिरी और जितनी भी नमकीन की दुकानें हैं, मिर्ची बड़े, कचौरी, हाई, जो सेल बढ़ती है उनकी, अब भाई मजा आ गया। अब जो वेदर आएगा, होपफुली इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अलनीनो इफेक्ट के कारण बारिश कम होगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, कम ही सही पर अच्छी हो जाए तो और मजा आएगा।
1: बिल्कुल, इस बारिश का इंतज़ार भी जो कल हुई उसका भी बेसब्री से कई सारे लोग कर रहे थे। और जैसे ही मौसम में बदलाव आया ना, लोगों के माहौल में, उनकी बिहेवियर में भी बदलाव देखने को मिला। वो एनर्जी हल्की सी अलग नज़र आई। अरे यार, आज ऑफिस जब जो लोग गए वो बड़े खुश नज़र आ रहे थे कि अरे साहब बारिश हुई, निकाला देखी कौन की ठाने, देखी कौन, अरे बिल्कुल देखी साहब, देखी कल बारिश हुई थी। और फिलहाल मौसम के हाल आपको बता दें तो भैया, हमारे शहर जोधपुर का हाल कुछ यूँ है। सनसेट का टाइम 7:34 PM आ रहा है और रात ढलते ढलते करीब 1 से 2 बजे के बीच हल्की बूंदाबांदी आपको देखने को मिल सकती है। तो भैया अगर ऊपर छत माता कोई कपड़ा हुक रहा है तो नीचे लिए
0: और राहुल,
1: जाओ।
0: ऐसा भी होता है जब हम बारिश का वेट करते हैं ना, तो अक्सर वो उसी वक्त आती है जब हम नहीं जग रहे होते, मतलब जब सब वेट ऐसे कर रहे होते कि अरे अब बारिश आएगी, अब बारिश आएगी, तो वो ऐसे टाइम पे आएगी जब सबको नींद आई हुई होगी, फिर एकदम से लाइट जाती है, फिर उठते कि अरे लाइट क्यों गई, फिर लगता है कह रहे हैं बाहर तो बारिश आ रही है इतनी तेज। और हमारे शहर में तो बहुत ज्यादा होता है, इनिशियली जब बारिश आती है तो हमेशा लेट नाइट आएगी ताकि लोगों को पता ही ना पड़े और वो आके चली जाए। पर हाँ, ये जरूर होता है कि बारिश आती है तो अगली जो सुबह होती है, जो मिट्टी की खुशबू, जो हवा में हल्की हल्की सी ठंडक, भाई मजा आ जाता है।
1: वो और ज्यादा सुहानी
0: पर
1: होती है।
0: हाँ, ये जो दिन चढ़ते चढ़ते जो ह्यूमिडिटी होती है, तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं कि ये ह्यूमिड मौसम है, आपको गुमराह कर सकता है कि आप पानी ना पिए, आपको फुल फुल फील हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये वही मौसम है जिसमें हमारा पेट बहुत जल्दी खराब होता है, हमें फीवर बहुत जल्दी आता है, तो आप पानी पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और जितना हो सके बाहर का फूड अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये मौसम है जो चीज़ें, जो खाना बना हुआ होता है, उसे बहुत जल्दी खराब कर देता है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और हाल फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए। और अपडेट्स राहुल के पास बहुत सारे हैं, वो किसके हैं क्या है वो बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: भाई, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां अभी पूरा विश्व फुटबॉल के पीछे दीवाना हो रखा है, जो कि जायज़ भी है, वो गेम ही ऐसा है कि भाई जो फैन फॉलोइंग है और जो हमारे भारत में भी लोग देखते हैं, उन्हें पता है कैसे रात रात भर जागना पड़ता है भाई साहब। ये टास्क है, हाँ, फुटबॉल फैंस उनके लिए टास्क होता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो क्रिकेट के लिए लॉयल्टी है भाई, कोई स्पोर्ट मैच नहीं कर सकता, कितने भी वर्ल्ड कप्स चल रहे हो, पर इंडिया में जो क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है वो अलग ही है। और ये जस्ट मेरे पास में जो लड़का बैठा है राहुल, इसको जो कह सकते हैं क्रिकेट फैन जो इसके दिमाग में है, ये जो खुद है, ये जानता है, और ये वैसे ही अपडेट्स लेकर आया है क्रिकेट के इस फुटबॉल सीजन के बीच में। तो
1: और
0: आइए
1: मैं
0: सुनते हैं ये
1: नहीं,
0: क्रिकेट
1: बिल्कुल हमारे जो
0: अपडेट्स।
1: पूरे भारत के लोग हैं जो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो वैभव सूर्यवंशी के फ़ैन हैं, जो देखना चाहते हैं, सभी के मन में ये सवाल है कि यार आज वैभव सूर्यवंशी खेलेगा या नहीं खेलेगा, खेलेगा कि नहीं खेलेगा। क्योंकि जो भैया देखो, आयरलैंड की उस हार के बाद और ज़्यादा मतलब हो गया कि कब होगा ये जीत का सिलसिला शुरू, क्योंकि पिछला जो इंग्लैंड के साथ T20 मुकाबला था वो बारिश के कारण धुल गया था। और आज भी 55% जो है वो चांसेस बताए जा रहे कि बारिश हो सकती है। इधर ये लग रहा है कि मैच हो गए नहीं, उधर हमारे जितने भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो सोच रहे कि यार वैभव सूर्यवंशी खेलेगा या नहीं। तो भैया ये तो अब जब टॉस होगा तब पता चलेगा, जब ये शीट आएगी टीम की, भैया ये प्लेयर आज खेलने वाले तभी पता चलेगा। और होपफुली आज का मैच हो और इंडिया जीते। फिलहाल के लिए गानों का सिलसिला जारी है हमारी प्लेलिस्ट की खोज में। आपके लिए अगला गाना पेशी साहब।

0: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे जीएसटी ऑफिसर समीर मित्तल से राहुल की फोन आउट बातचीत। और ये बातचीत उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जो अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये वाला इंटरव्यू।
1: ऐसे तो हम हर रोज कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया सीखते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मुखातिब होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में जाने अनजाने में ही सही लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम जुड़ने वाले हैं जिनका शायद हर एक लफ्ज आपको कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है, स्पेशली यूथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर समीर मित्तल। मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं।
2: मेरा नाम समीर मित्तल है, कस्टम्स एंड जीएसटी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ मुंबई के अंदर। मेरी स्कूलिंग बीकानेर राजस्थान से हुई, कॉलेज मेरा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हुआ जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक किया।

0: किया और डिग्री पूरी करते ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग गया। सबसे पहले SBI का PO एग्जाम दिया, वो क्लियर हुआ। SBI का क्लर्क एग्जाम दिया, वो क्लियर हुआ। GST इंस्पेक्टर 2018 दिया, जॉब में लग गए। फिर दोबारा एग्जाम दिया SSC CGL 2021, वो भी क्लियर हुआ। तो पढ़ाई करते करते अब आज जॉब में आ गए हैं।
1: क्या बात है, इतने सारे एग्जाम्स आपने एक साथ क्लियर किए, ग्रेट। तो अब मैं जानना चाहूंगा, आप जिस प्रोफेशन में हैं वो आपको आपकी पहले के लाइफ से किस तरह अलग बनाता है? वो क्या फीलिंग्स होती हैं इन टर्म ऑफ करियर, जो मेहनत आपने की वो परिणाम आप आज किस रूप में देखते हैं?
0: जब स्टूडेंट थे तो हमेशा से यही सुनते आ रहे थे कि एक बार आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद आपकी लाइफ काफी सेटल हो जाती है। तो मेरे कजन ब्रदर हैं जो कि काफी अच्छी पोस्ट पर है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो हमेशा मुझसे कहते थे कि 3 साल या 30 साल, ये 3 साल मजदूरी करके आगे 30 साल रिलैक्स हो जाओ, या इन 3 साल रिलैक्स रह के एंजॉय करके आगे 30 साल मजदूरी करते रहो। तो उनकी जो बात थी मुझे काफी हद तक ठीक लगती है। तो एक संघर्ष के बाद, एक मेहनत के बाद लाइफ डेफिनेटली थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है। यू फील लाइक यू आर सेटल्ड इन लाइफ, तो डेफिनेटली लाइफ में बेटर आपको फील होता है।
1: अब यूथ के सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि जब एक इंसान एस्पिरेंट बनता है तो उसके लिए प्रिपरेशन का जो पड़ाव है वो मोटिवेशन से शुरू होता है। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए मोटिवेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एक एस्पिरेंट के लिए इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: जब मैं इस रास्ते से गुजरा तो कुछ रूल्स मैंने या कुछ कोट्स मैंने खुद के लिए नोट डाउन करके एक जगह चिपका लिए थे। तो सबसे पहले तो मुझे, मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रहे वो,
1: जी
0: उनका एक कोट था कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग बट आई टोल्ड माई सेल्फ डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। तो पहली बात ये कि कुछ समय जिंदगी में ऐसा होगा जब आपको अपना जो गाड़ी का गियर है वो टॉप गियर पे लाना पड़ेगा। उस टाइम पर सारी मेहनत, सारा फोकस आपको अपने काम में ही झोंकना पड़ेगा, अपने काम में ही आपको डूब जाना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो, बीट SSC CGL, LIC एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, IBPS, SBI, हर एग्जाम में सबसे पहले तो पढ़ाई करना किसी को नेचुरली पसंद नहीं है, नेचुरली अच्छा नहीं लगता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। साल 6 महीने, 1.5 साल एक बार जोर लगाओ, मेहनत करो, सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई में डूब जाओ, उस सब्जेक्ट से खेलना स्टार्ट कर दो। और मैंने पढ़ा था, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां नहीं देंगे तो आपका लक्ष्य कुर्बान हो जाएगा। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो कुछ समय तक आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, और वो इनफैक्ट आप अपने लक्ष्य पर इतना फोकस हो जाए, इतना उसमें डूब जाए कि वो चीज अपने आप छूट जाए।
1: बिल्कुल सही कि अगर आपने अपने लक्ष्य के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां नहीं दी तो आपका लक्ष्य ही कुर्बान हो जाएगा। बहुत सही, लिटरली आपके जो कीवर्ड्स है ना बिल्कुल सीधे हिट कर रहे हैं, ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और एक ये प्रॉब्लम शायद सबके साथ होती है कि वो कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये कोई मिथ है या फिर वाकई में आजकल अथाह सिलेबस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है? अगर है तो उससे कैसे डील करें?
0: मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। जितने एग्जाम मैंने दिए और क्लियर किए, उनका किसी भी एग्जाम का सिलेबस मैं भी पूरा नहीं कर पाया था। पर क्योंकि एग्जाम आज के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस, इट इज एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड अंडर GK, बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, बीट ज्योग्राफी, बीट इकोनॉमिक्स, बीट करंट अफेयर्स, बीट नेशनल स्कीम्स, एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड अंडर जनरल अवेयरनेस। उसके अलावा जैसे इंग्लिश की बात करें तो वोकेबुलरी है। सो अभी वोकेबुलरी का कोई अंत नहीं है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट, आप सबको याद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लर्न देम ऑल। मैथ्स है, उसमें भी आजकल इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ गए, आप खत्म नहीं कर सकते हो। इसका एक ही तरीका है, सबसे पहले जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं आप उसको सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो, सब कुछ नहीं पढ़ना। आप सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न देखो, एग्जाम का सिलेबस। फर्स्ट इज एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न। सेकंड इज एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 5 साल के देख लो। आफ्टर थॉरो एनालिसिस ऑफ एग्जाम सिलेबस पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप मार्क आउट करो कि पूरे सिलेबस में से 20 से 25% मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन से। इन 20% टॉपिक्स को, इस 20% सिलेबस को आप मास्टर कर दो। डू इट वंस, डू इट ट्वाइस, डू इट थ्राइस, बी अ मास्टर। इससे 80-20 रूल जैसे होता है, ये 20% सिलेबस आपको 80% स्कोर करवाएगा। उसके बाद में पूरे सिलेबस को 3 चीजों में तोड़ना है। फर्स्ट इज मोस्ट हाई यील्डिंग कंटेंट, सेकंड इज मीडियम मॉडरेट, थर्ड इज लो यील्डिंग कंटेंट। हाई यील्डिंग पे आप पकड़ बनाओ अच्छे से और मास्टरी करो, 2-3 बार रिवाइज करो। मॉडरेट को आप सेकंड ले लो, एक बार जब वो पूरा हो गया हाई यील्डिंग, उसके बाद आप मॉडरेट को पकड़ो और उसको एक बार रिविजन कर लो। लो यील्डिंग अथाह होता है, अनएंडिंग होता है, उसको थोड़ा बहुत जितना आप कर सको करो, पर प्रीवियस ईयर पैटर्न जो है उसके हिसाब से जब आपने हाई यील्डिंग चीजें कर ली है, उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है।
1: एक आजकल ये हो रहा है कि सरकारी नौकरी लगना मतलब कम समय में तो बहुत मुश्किल हो गया है। एक बार इंसान रट पकड़ लेता है कि मैं सरकारी नौकरी लगेगी तभी शादी करूंगा, तो एक तो ये शादी वाला प्रेशर, फिर ये पढ़ाई वाला प्रेशर, तो ये दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें इंसान, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो ये कि मेरे हिसाब से शादी एक बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, और ये आपको आफ्टर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही आपको मैरिज के बारे में सोचना चाहिए। घर वाले कहते हैं वो अपनी जगह

0: सही है उन्होंने जो देखा है, बट आप उनको कन्विंस करें कि जब तक मैं खुद ही का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ तो हाउ वुड आई टेक केयर ऑफ समवन हु इज कमिंग विद मी। जब तक मैं खुद ही का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ तो मैं जो पार्टनर मेरे साथ आएगा उसका खर्चा मैं कैसे उठा पाऊँ। तो मेरे हिसाब से चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही सबसे पहले टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उनको प्यार से कन्विंस करें कि मुझे 1-2 साल का समय दें, 2-3 साल का समय दें, मैं पढ़ाई करूंगी, पढ़ाई करूंगा और अपनी जॉब लूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। दूसरी बात ये कि एग्जाम का जो प्रेशर है उसको प्रेशर की तरह ना लें, आप अपनी मेहनत करें। जैसे एक निष्काम कर्म योगा की थ्योरी होती है कि वर्क इटसेल्फ शुड ब्रिंग प्लेजर, आप सिर्फ निष्काम भावना से अपने काम को योग की तरह करें, मंशा को बिल्कुल छोड़ दें। जैसे कहते हैं कर्म करता चल फल की चिंता मत, तो आप अपने काम में डूब के अपने काम को करते चले निष्काम भावना से, और उसके बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप प्रेशर में बिल्कुल ना आए। एग्जाम इज नॉट जस्ट एकेडमिक टेस्ट, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी। आप कितना प्रेशर झेल पाते हैं, क्योंकि जॉब में आने के बाद भी, सर्विस में आने के बाद ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपको मुश्किल स्थिति में, हाई प्रेशर सिचुएशंस में, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपको काम करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो अगर एग्जाम इसी तरह बनाया गया है कि जो बंदा वो काबिलियत रखता है वही आगे जाके उस नौकरी को भी ढंग से कर पाएगा, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं नौकरी की उसको निभा पाएगा। तो एग्जाम इज नॉट जस्ट एकेडमिक टेस्ट की आपने पढ़ाई की और वहां पर जाके लिख दिया या ऑप्शन टिक कर दिया। इट इज नॉट जस्ट, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल टफनेस, इमोशनल टफनेस, योर मेंटल क्लैरिटी, हाउ वेल यू कैन परफॉर्म इन द हाई प्रेशर सिचुएशन, इन सब चीजों का भी एक टेस्ट है ये।
1: बिल्कुल सही कहा। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप जिस पोस्ट पर हैं, ये एग्जाम जो है वो SSC कंडक्ट करवाता है, तो जो बच्चे SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ बात नहीं हो सकती, स्पेशली इस एग्जाम के लिए क्या वो जरूरी है, वो चीजें बताना चाहेंगे आप?
0: SSC के जो भी एग्जाम है, BEAT, CGL, CHSL, MTS एक्सेट्रा, इन सब की मेन रिक्वायरमेंट है योर स्पीड। SSC का जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है दैट इज स्पीड ओरिएंटेड, तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना है सबसे ज्यादा। जिसकी स्पीड तेज है वो बंदा उस एग्जाम को निकाल लेगा। जो पेपर है CGL का, उसमें GK सेक्शन को छोड़ के मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में अगर एक जगह 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिए जाए या 3 घंटे कर दिए जाए तो ऑलमोस्ट हर बंदा बहुत अच्छा स्कोर करे। पर आपको अपनी स्पीड पे काम करना है, दिए गए समय के अंदर 60 मिनट के अंदर आपको 100 सवाल करने हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी स्पीड पे काम करें। स्पीड मतलब मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन स्पीड, इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्पीड। तो मैथ्स में कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा काम करें, 40 तक की टेबल को याद करने की कोशिश करें। मैंने भी कोशिश की थी, 25-30 तक अच्छे से याद कर ली थी। तो टेबल्स को याद करें, स्क्वायर्स को याद करें, 25 तक का स्क्वायर याद करें, और 25 से लेकर 150-200 तक के आगे ट्रिक्स होती है, आप उन सबको फॉलो करें। क्यूब्स को भी 30 तक याद कर लीजिए। उसके अलावा जो बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन सब के आप बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे आप कैलकुलेशन पे हर चीज के शॉर्टकट फास्ट मेथड सीखने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल्स, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, इन सब चीजों को, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। तो 15-20 दिन, 1 महीना आप इस चीजों पे दीजिए। इंग्लिश के लिए कॉम्प्रिहेंशन आता है, वोकेबलरी आती है, ये सब चीजें एग्जाम में आती हैं, तो रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। उसके लिए आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, पर 5 से 10 हज़ार पेजेस आप पढ़ें। जैसे अगर आप 250 पेजेस की एक बुक होती है तो 20 बुक्स जब आप पढ़ लेंगे तो काफी हद तक आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, आप महसूस करेंगे। तो इंग्लिश में रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, किसी चीज को पढ़ना और कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, दिस इज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, ये तेज होनी चाहिए। और रीजनिंग के अंदर जैसे नंबर सीरीज है, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रेडियो है, तो A for 1, L for 12, L for 12, इंडिया, I for 9, N for 14, D for 4, I for 9, A for 1, रेडियो में R for 18, A for 1, D for 4, I for 9, O for 15। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ या कोई बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें जो जो वर्ड्स हैं, जो जो लेटर्स हैं, उन सभी लेटर्स की नंबरिंग पढ़ता था। आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको बोर्ड्स दिखेंगे, टेम्पलेट्स दिखेंगे, आप उनको डोंट रीड द लेटर, स्पीक द नंबरिंग, नंबरिंग बोलो आप उनकी। कुछ दिनों में, कुछ समय में आप दुनिया से आगे निकल जाएंगे। अपना जीवन उसमें झोंक दिया आपने और उस काम को खेल बना लिया, उस काम में इतना डूब गए, एक गेम की तरह, और उसको एंजॉय कर रहे हो आप। इट इज नॉट प्रेशर, ये खेल है आपके लिए, आपको मजा आ रहा है, यू आर एंजॉयिंग इट।
1: क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाया। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। होता नहीं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक एस्पिरेंट क्या क्या सोच सकता है, उससे कैसे डील कर सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी और इसलिए मैंने बहुत मेहनत की अपने आप पर टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं जो पर्सनली करता था, मैं सिर्फ वही शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने एक छोटा नोटपैड रख रखा है अपने पास, जिसके अंदर मैं एवरी मॉर्निंग आई मेक अ टू डू लिस्ट, जिसमें मैं सबसे पहले जो जो काम मुझे करने हैं उनको प्रायोरिटी लिस्ट पर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज तैयारी करनी है तो मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर मुझे 200 वोकेबुलरी याद करनी है, जीके के अंदर मुझे पॉलिटी का सुप्रीम कोर्ट वाला सेक्शन पढ़ना है और मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा आज का 4 टारगेट है, तो पहले मैं इन चीजों को मेंशन करूंगा। उसके बाद मेरे को 2 PDF डाउनलोड करनी है।

0: वो चीज लिखूंगा, एक बंदे से बात करनी है कि पॉलिटी को अच्छा सोर्स कौन सा है वो चीज मेंशन करूंगा, ऐसे में 7 से 8 पॉइंट जो मुझे करने पड़े से रिलेटेड वो सब लिख लूंगा। उसके बाद में मैं उन सभी को आईवी ली मेथड से नंबरिंग दूंगा कि कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं 10 में से नंबर दूंगा। एलजेब्रा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई विल गिव इट 10/10 और 9/10। पीडीएफ मैं कल भी डाउनलोड कर सकता हूँ, सो आई विल गिव इट 4/10। सो आप जितने भी टास्क आपने 7 से 8 या 10 टास्क लिखे हैं उन सभी को नंबरिंग दो, और सबसे पहले जो टास्क मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, जो 3 टास्क, उनको आप खत्म करो। तो सबसे पहले मैं यही करता था मॉर्निंग में, सारे कामों को लिखना याद करके कौन कौन से थे, उसके बाद उनको नंबरिंग देना। जब नंबरिंग हो जाए उसके बाद टॉप 3 टास्क सिलेक्ट करके उनको टाइम लिमिट देना कि ये काम एलजेब्रा पढ़ना है मुझे 40 मिनट लगेंगे, और डिफाइन इट एज मच एज पॉसिबल। एलजेब्रा पढ़ना है 9/10 इसकी प्रायोरिटी है, इसको पढ़ने में मुझे 40 मिनट लगेंगे, एमसीक्यू निकालने हैं मुझे इतने मिनट लगेंगे, और कॉन्सेप्ट डिवाइस करने मुझे इतने मिनट लगेंगे। ये करने के बाद आप बैठ जाओ घड़ी में उतना टाइमर लगा के उसको खत्म करो, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लो, चिल मारो, चॉकलेट खाओ, घूमो, फोन पे बात करो, गाने सुनो, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट टारगेट को लो, उसको खत्म करो। मेक इट लाइक अ गेम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। दूसरी बात ये कि मेरा जो मोबाइल है उसके अंदर भी मैंने नोटपैड बनाया है, उस नोटपैड को मैंने वॉलपेपर के ऊपर विजेट की तरह रख दिया है। जो भी काम मुझे पढ़ाई के अलावा करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल घर का कोई काम मुझे बोला गया, या मुझे कपड़े धोने हैं, या मुझे सब्जी लेके आनी है, कुछ भी, उसको मैं वहां पर नोट करता हूँ। दिस इज अंडर डेली हाउसहोल्ड वर्क हेडिंग, उसके अंदर मैं उन कामों को नोट करता हूँ। तो इस तरह आप अपनी लाइफ को जो एक टू डू लिस्ट पर रख सकते हैं, ये काम आप करो सुबह 8 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक। 5-6 बजे तक आप अपना सारा काम करके रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद अपना बैडमिंटन खेलो, वॉक करो, दोस्तों के साथ गप्पे मारो, फोन चलाओ, 2-3 घंटे खुद के लिए रखो, चिल मारो। मेरे को जैसे गाना गाना बहुत पसंद है, तो मैं गाना गा लेता था, दोस्तों से गप्पे मार लिए, मुझे मूवी देखना पसंद था। तो जब मेरा टारगेट अचीव होता था तो हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन मैं मूवी देखने चला जाता था हॉल में, जिससे माइंड भी पूरा रीएनर्जाइज हो जाता।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है ना कि गेम्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहोगे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जो कि मायने रखता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है एक एस्पिरेंट के लाइफ में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम बैडमिंटन खेलता था रेगुलरली, और अभी भी मैं, यहाँ पर बैडमिंटन नहीं है मेरी सोसाइटी में, तो मैं वॉकिंग करता हूँ। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन लेवल्स बढ़ते हैं, जो कि फील गुड हार्मोन है, जो कि कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको काउंटर करता है। साथ ही किसी भी स्पोर्ट्स से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपकी ब्लड ब्रेन को मोर ब्लड ब्रेन सेल्स को ज्यादा ब्लड मिलता है, जिससे वो ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं, और ओल्ड एज में डेमेंशिया की भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती है वो भी बहुत कम हो जाती है उससे। तो मूड बूस्टिंग में, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, और आपकी ओवरऑल वेलबींग में बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स रेगुलर आधे से 1 घंटा 40 मिनट कम से कम आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज को दें। बैडमिंटन खेलना चाहें बैडमिंटन खेलें, पीटी, लॉन टेनिस, या फिर वॉकिंग भी करना अगर आप चाहें तो 40 मिनट 1 घंटा रोज वॉक करो, 5 किलोमीटर। मैंने जैसे खुद के लिए नियम बनाया है 1 आवर और 5 किलोमीटर, तो लगभग 57-58 मिनट्स मुझे लग जाते हैं 5 किलोमीटर चलने में। सो इधर आई डू इट इन मॉर्निंग, अगर दिन में नहीं हो पाते तो आई डू इट इन इवनिंग। पर 1 घंटा आप खुद के स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए दें, आपका मूड भी अपलिफ्ट रहेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बढ़ेंगी। वॉकिंग करने के बाद जब आप पढ़ते हैं तब आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी बढ़ती है, आपको ज्यादा याद होता है, और पढ़ाई में बोरियत हो तो वॉक करते करते पढ़ाई करें। मैं ऐसे करता रहा बहुत बार, वॉक करते करते किताब लेके पढ़ता था। उसके अलावा आप बीमार कम पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आपके जो बीमार, एक बार बीमार हो गए तो 4-5 दिन खराब हो जाते, वो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं हो। दूसरा जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से वो आपको सिखाती है कि हार के बाद भी जीत के लिए लगातार मेहनत कैसे करनी है, कितनी भी हार मिले आप गिव अप नहीं करते हो, आपको हमेशा एक उम्मीद रहती है कि अगली बार मैं जीतूंगा। तो जिंदगी का भी ये उसूल है कि लगातार हार मिलने के बाद भी आप फिर बोलो एक कोशिश और, एक मौका और, एक बार और, मैं इस बार जीत के दिखाऊंगा। तो ये जो चीज होती है हार को पचाना और जीत के लिए लगातार मेहनत करना, एक उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ना।
1: जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी इंसान को जिंदा रखती है, वो एक होप बढ़ाती है अपने काम को करने के लिए कंपेरेटिवली मेंटल वर्क के। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें आपने शेयर की, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चाहूंगा एक लास्ट बार यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, होप आप ऐसे ही काम करते रहे और ऐसे ही यूथ को गाइड करते रहे। मेरी शुभकामनाएं आपको भी, सभी एस्पिरेंट्स को। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जिंदगी में आगे बढ़े। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव, डू गुड टू एवरीवन, एंड गॉड विल हेल्प यू।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, फिलहाल अब आप और हम इस टाइम मशीन में जो टाइम दिख रहा है इसके साथ बढ़ते आगे, मिलते हैं आपसे फिर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी जीएसटी ऑफिसर समीर मित्तल से राहुल की फोन आउट बातचीत, और ये जो पूरी कॉन्वर्जेशन थी इसे सुन के यही लगा कि यार इन्होंने कितना सॉर्टेड वे में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मतलब जो होता है ना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क।

वो कह सकते हैं कि इनकी पूरी कॉन्वर्जेशन में झलक रही थी कि किस तरीके से उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे सेक्शंस बांट के अपनी तैयारी की। तो यार राहुल, ये जो इंटरव्यू था ये बहुत ही यूज़फुल था, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने जो चीज़ बताई कि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप प्रिपरेशन में लगे रहें और अपनी खुद की लाइफ को, खुद की फ़िटनेस को, खुद की पर्सनल हैप्पीनेस को भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई को बहुत सॉर्टेड वे में करें, बहुत स्मार्ट वे में करें। अगर आपने इंटरव्यू ढंग से सुना तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे, और बाकी तो आपकी मेहनत रंग एक दिन जरूर लाएगी। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं हमारे ये वाले गाने।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: बिल्कुल जी, वेलकम बैक एक बार फिर से छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम हमारे को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इन आवाज के साथ। आज इस आवाज का नाम राहुल, आपके साथ और मेरे साथ है
4: रिद्धि।
3: और बहुत सारी बातें चल रही है। अगर आप प्रोग्राम सुनते हुए गाड़ी चला रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल भाई साहब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो भैया मौसम भी खराब है और गड्ढों में गाड़ी वाड़ी गिर गई तो थोड़ी लचक पड़ जाएगी। और फिलहाल अगर जब कभी भी आप बाइक पर ट्रैवल करें तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपनी जो गाड़ी है, अपनी कार है, अपनी बाइक है, वो स्पीड लिमिट में ही चलाएं। और
4: भाई अभी जो ये
3: मौसम है ना, वो बारिश का मौसम है और इस अच्छे वाले मौसम जो कि आने वाला है, कई जगह तो आ चुका है, और इस अच्छे मौसम में ना एनवायरमेंट के साथ क्या कुछ चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं, चले जानते हैं।
4: सबसे पहले राहुल, जो तुमने चीज़ कही कि अपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स का ध्यान ज़रूर रखें, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारी जो खूबसूरत सड़कें हैं, वही पानी के नीचे जाने के बाद पता ही नहीं पड़ती कहाँ सड़क है और कहाँ नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेलमेट तो एटलीस्ट। और अभी तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये भी देखते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो इतने अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाते हैं, जिसमें किसी की गलती नहीं होती, वो सिर्फ सड़क की गलती होती है। तो यस, अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें। और जहाँ तक बात है पर्यावरण को खूबसूरत बनाने की, तो राहुल अभी मैंने भी एक चीज़ देखी पड़ी जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के अच्छा भी लगा, वो ये था कि आप इस मौसम में सीड बॉल्स बना सकते हैं। सीड बॉल्स बेसिकली ये होती है, इसको हम एक स्कूल एक्टिविटी जैसी चीज़ कह सकते हैं जो सब लोग कर सकते हैं, इट्स अ गुड थिंग टू डू। उसमें ये है कि आप जितने भी बड़े पेड़ हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, और जो भी बैनियन ट्री हो गए बड़े बड़े, इनके आप बीज इकट्ठे कर लीजिए, बहुत सारे बीज अपने घर पर ले आइए, और जितनी भी आपके आसपास मिट्टी है, थोड़ी मिट्टी भी चलेगी, उसके लड्डू बनाइए छोटे छोटे से, और उन लड्डुओं को सुखा दीजिए। फिर आप जहाँ पर भी बाहर जाएं, आपको लगे कि थोड़ा आउटर एरिया है या फिर जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी भी ऐसी जगह है जहाँ पर नया पौधा पनप सकता है, वहाँ पे उस सीड बॉल को गिरा दीजिए। बस आपका इतना ही काम है, उसके बाद सारा काम नीरजत खुद करेगा। इतनी जो ह्यूमिडिटी हो रही है हमारे आसपास, तो सीड बॉल्स अपने आप मिट्टी के अंदर जाते हैं और वो अपना पौधा पनपना शुरू होता है, उसको अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इस मौसम में हाल फिलहाल मिल जाती है। तो आप ये ज़रूर से कर सकते हैं अपने घर पे, आपके घर पे बच्चे हैं या फिर आप खुद यंगस्टर हैं जिन्हें वो क्रेज़ है कि बस हमें आसपास सब कुछ अच्छा करना है, ग्रीन ग्रीन करना है, तो आप ज़रूर से सीड बॉल्स बनाइए और अपने आसपास की जो जगहें हैं उसे हरा हरा करके खूबसूरत कर दीजिए।
3: बिल्कुल, ये आपके छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं वो प्रकृति में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इस बात को आपका अंदाजा भी नहीं है। अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली बड़े बदलाव आपको कुछ समय बाद देखने को मिलते हैं। और ये जो टाइम है, ये जो मौसम है, इस मौसम में ये चीजें बहुत ज्यादा जल्दी पनपती है।
4: और राहुल, ये भी होता है कि आपने कभी ये नोटिस भी किया होगा, कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं और अगर गाड़ी के शीशे खुले हैं, तो आप जैसे ही पेड़ वाली सड़क से जाएंगे ना, मतलब एक स्ट्रेच आता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, तो आपको वो हवा ठंडी फील होगी, वहां पर वो ठंडक महसूस होगी। तो ये तो हर टाइम हमारे अखबारों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में हमेशा ये चलता ही रहता है कि पेड़ लगाओ, सेव योर कंट्री, सेव योर अर्थ, बट एक्चुअल थिंग इज सेव योर सेल्फ, क्योंकि ये पेड़ आपकी ही मदद करेंगे और किसी की करे ना करे आपकी हेल्प होगी, आपके आसपास ठंडक बनी रहेगी।
3: फिलहाल आप और मिलकर एक और मदद आपकी कर देते हैं, बढ़िया सा गाना सुना देते हैं हमारे प्लेलिस्ट की खोज में। अगला गाना आपकी नजर ये रहा साहब।
5: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

वेलकम बैक जी, आपका एक बार फिर से प्रोग्राम यवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त। और बात कर लेते हैं मेडिकल प्रवेश परीक्षा, इसके बारे में जानकारी आ चुकी है। नीट पीजी जो कि आवेदन जिसका आप 21 जुलाई तक कर सकते हैं, और फॉर्म भरने से पहले आप ये चीज़ें ज़रूर समझ लें कि इस बार क्या कुछ छोटे मोटे बदलाव हो चुके हैं। नीट पीजी का जो पेपर है अब 200 नहीं, उसमें आपको 180 सवाल पूछे जाएंगे। और क्या उसमें बदलाव है, पहले ये था ना कि भी पहले आओ पहले पाओ का नियम अब ख़त्म हो चुका है। पहले जल्दी आवेदन करने वालों वाले जो छात्र होते थे उनके लिए उनका मन पसंदीदा शहर उनको मिल जाता था सेंटर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आवेदन करने की तारीख से सेंटर अलॉटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी को कंप्यूटर के ज़रिए रैंडम तरीके से ही जो है वो आपके परीक्षा केंद्र आपको मिलेंगे। और उसके बाद बात करें तो टाइम बाउंड सेक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और 180 सवाल। अब प्रश्नों की संख्या जो है 200 से घटाकर 180 कर दी गई है। पेपर में 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 36 सवाल होंगे, और जिसके लिए आपको 42 मिनट का समय मिलेगा। एक सेक्शन का समय पूरा होने के बाद छात्र उस सेक्शन को जो है वो दोबारा से नहीं खोल पाएंगे, तो आपको जो है वो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा, और उस दौरान ही आपको जो है वो एग्ज़ाम में देना है। तो ये थी कुछ खास खबर मेडिकल एग्ज़ाम को लेकर, क्या कुछ थी बातें।

0: भाई ऐसे जो गाने होते हैं ना भाई, जो वो दिल को छू जाते हैं, और जो इस मौसम में ऐसे गाने बज जाए, क्या चाहिए फिर, तो बस यही है, जन्नत यही है। हाल फिलहाल वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, इस मौसम को एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ अपनों के साथ समय बिताना ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है रिद्धि और मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल और प्रोग्राम का जो प्रस्तुत करता रहे वो है राजेश लामरोड, और कंसोल पे हमारे साथ ने हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने

0: 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय, प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज रात 10 बजे से आप सुन सकते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसे हम रिले करेंगे। राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका ये कार्यक्रम सुनिएगा आज रात 9:30 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। इसे हम रिले करेंगे।

आज रात 8 बजे से आप सुन सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।

किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुन सकते हैं आज शाम 7 बजे और 7:30 का वक्त रहेगा सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम का।

ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। और आइए अब सुनते हैं हमारी कल की दोनों सभाओं में प्रस्तुत होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका भी प्रसारण समय। कल शाम 7:30 से अब सुन सकते हैं आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेले जाने वाले फाइनल मैच का सीधा प्रसारण।

कल सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुनिएगा कल सुबह 6:15 पर। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 7:00। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार का वक्त रहेगा हमेशा की तरह कल सुबह भी 8:30 का। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कार्यक्रम चुनमुन सुन सकते हैं कल सुबह 10:00। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा कल सुबह 10:30 पर और दोपहर 12:30 पर। लोक संगीत का वक्त रहेगा कल दोपहर 12:00। कृषि जगत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल दोपहर 1:05 पर और महिलाओं का कार्यक्रम नारी वाटिका का वक्त रहेगा कल दोपहर 1:15 पर। युवा श्रोता अपनी पसंद का कार्यक्रम युवाणी सुन सकते हैं हमेशा की तरह कल शाम भी 5:00। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने एकदशांशोत्तर शून्य पञ्च लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः त्रयोविंशति जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। व्यापकरूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्रवञ्चनामाधृत्य भारतसर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। भारत इजराइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य आधिकारिकरूपेण प्रवृत्तो जातः। भारतर्तु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरात राज्यस्य कतिपयेषु अन्यभागेषु हरियाण पंजाब राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये द्वितीया टी ट्वेंटी अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य मैनचेस्टर नगरे क्रीडिष्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थाने एकदशांशोत्तर शून्य पञ्च लक्ष कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अनेन राज्ये आधारभूत संरचनायां ऊर्जायां परिवहने उद्यम सृजने च तीव्रता आयास्यति। स्वस्य यात्रायां प्रधानमन्त्रिणा जोधपुर विमानपत्तने नूतनस्य टर्मिनल भवनस्य उद्घाटनं कृतम्।
2: आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है।

0: और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है, चारों तरफ राजस्थान ही राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा।
1: तदनन्तरं सः बालोतरा मण्डलस्य पचपदरा क्षेत्रे देशस्य अत्याधुनिकं ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सः पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इत्येतत् राष्ट्राय समर्पितवान्। अत्रान्तरे तेन जयपुर मेट्रो द्वितीय चरणस्य शिलान्यासः अपि आभासी माध्यमेन कृतः। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य संघर्षेण एकविंशतितमायाः शताब्द्याः महत्तमः ऊर्जा संकटः समुत्पन्नः, किन्तु भारतेन समयोचित निर्णयैः कूटनीत्या च एषः कालः सम्मुखीकृतः। पूर्वं भारतं 25-26 देशेभ्यः ऊर्जा आयातं करोति स्म, इदानीं तत् 40 देशेषु विस्तारितम्। सः सबलं प्रावोचत् यत् वैश्विकोत्पाते अपि सर्वकारेण वातिन्धनस्य मूल्यं 2,000 रूप्यकाणां स्थाने केवलं 50-900 रूप्यकेषु नियन्त्रितम्। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पश्चिम एशिया युक्रेन संघर्षैः समुत्पन्ने वैश्विक उर्वरक संकटे अपि यूरिया मूल्यं 30,000 रूप्यकाणां स्थाने कृषकाणां कृते 300 रूप्यकेषु एव सुरक्षितम्। अनेनैव सह जोधपुरतः आरब्धया उड़ान योजनया लघुनगराणां सुदूरक्षेत्राणां च कृते वैमानिक सम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: राजस्थान सर्वकारस्य विभिन्न विभागेषु च नियुक्तानां 45,000 युवकानां कृते नियुक्ति पत्राणि अपि प्रधानमन्त्रिणा वितरितानि। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियमान्तर्गतं पाकिस्ताने स्थिताः 23 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। एते सर्वे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा इत्यादिभिः आतंकवादी संगठनैः सह सम्बद्धाः आसन्। मन्त्रालयेन निगदितं यत् देशस्य नागरिकाणां सुरक्षायै सर्वकारः प्रत्येकं आतंकवादी संजालं विनष्टुं कृतसंकल्पः वर्तते। अद्य उद्घोषितेषु 23 आतंकवादिषु 17 पाकिस्तान देशस्य नागरिकाः, 6 च भारतीय नागरिकाः सन्ति। परञ्च साम्प्रतं इमे पाकिस्तानात् पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीरात् च आतंकवादी गतिविधीन् संचालयन्ति। एते आतंकवादिनः भारत विरोधी कृत्येषु, शस्त्रास्त्र तस्करेषु, निधि संग्रहादिषु संलग्नाः सन्ति। अस्याः घोषणायाः परं राष्ट्रियान्वेषण अभिकरणेन एतेषां वित्तीय स्रोतांसि अवरोद्धुं शक्यन्ते, सम्पत्तिश्च स्वायत्तीकर्तुं शक्यते। अवधेयमिदं यत् 1991 वर्षे यूएपीए अधिनियमे संशोधनस्य कार्यान्वयनानन्तरं केन्द्रीय सर्वकारेण 80 जनाः आतंकवादित्वेन उद्घोषिताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। व्यापक रूपेण प्रवृत्तं चलच्चित्र वञ्चना वृत्तमाधृत्य भारत सर्वकारेण टेलीग्राम संस्थायाः कृते आधिकारिकी सूचना प्रसारिता। आधिकारिक स्रोतेभ्यः प्राप्तानुसारं प्रशासनेन टेलीग्राम संस्था वञ्चना प्रसारितेभ्यः चलच्चित्रेभ्यः ओटीटी विषयवस्तुभ्यः सद्यः प्रतिबन्धात्मकं पदक्षेपं वोढुं समादिष्टा। अस्य संवाद मञ्चस्य प्रबन्धकाः आगामिषु 15 दिनेषु स्वीकृत कार्याचरणस्य प्रतिवेदनं प्रेषितुं निर्दिष्टाः। भारत इजराइल देशयोः मध्ये संजातः द्विपक्षीय निवेश सन्धिः अद्यारभ्य अर्थात् जुलाई मासस्य 5 दिनांकात् आधिकारिक रूपेण प्रवृत्तो जातः। अयं हि ऐतिहासिकः सन्धिः गतवर्षे सितम्बर

0: मासे नवदेहल्यां हस्ताक्षरितं गतः। केन्द्रीय वित्त मन्त्रालयः प्रत्यपादयत् यत् अयं द्विपक्षीय निवेश सन्धिः उभयोः राष्ट्रयोः आर्थिक सम्बन्धानां दृढीकरणाय अथ एकं सुरक्षितं पूर्वानुमानयोग्यं निवेश वातावरणं निर्मातुमेकं ऐतिहासिकं चरणं वर्तते। मन्त्रालयेन गदितं यत् सन्धेः आधारेण परिसीम्नि निवेश गतिविधिषु प्रवर्धनेन सह भारत इज़राइल देशयोः मध्ये रणनीतिक आर्थिक सहभागिता अपि गभीरा भविता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अद्य स्वामी विवेकानन्दस्य पुण्यतिथौ तस्मै सादरं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीय सन्देशे उपराष्ट्रपतिना राधाकृष्णन् इत्यनेन स्वामी विवेकानन्दः कश्चन महान् देशभक्तः, दार्शनिकः, आध्यात्मिक द्रष्टा चेति व्यपदिष्टः। तेन प्रोदीरितं यत् स्वामी विवेकानन्देन भारतस्य सभ्यतामूलक चेतनायाः पुनर्जागरणं विहितम्। सहैव देशस्य सनातनज्ञानं कृत्स्नं हि विश्वं प्रति प्रसारितम्। उपराष्ट्रपतिना सबलं विज्ञापितं यत् स्वामिनः आत्मविश्वासपूर्णस्य, प्रबुद्धस्य, करुणापूर्णस्य च भारतस्य परिकल्पना अद्यापि राष्ट्रस्य विकासयात्रायाः मार्गं दिशति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रतिपादितं यत् भारतस्य संस्कृतम्, आध्यात्मिकतां, राष्ट्रियचेतनां च वैश्विकपटले प्रतिष्ठापयितुं स्वामी विवेकानन्दस्य यत् अवदानं वर्तते तत् अनुपम अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य डिजिटल परिष्कारैः उपभोक्तृन्यायं सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रयत्नान् रेखांकितवान्। केन्द्रीयमन्त्रिणा प्रह्लादजोशिना लेखं प्रकाशयन् श्रीमोदी अवदत् यत् सम्बद्धपक्षैः सह व्यापकमन्त्रणायाः परं ई जागृति मञ्चः परिष्कृतः। भारतर्तुविज्ञानविभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्दिवसेषु मध्यभागे गुजरातराज्यस्य कतिपयेषु, अन्यभागेषु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान प्रान्तानां शिष्टेषु क्षेत्रेषु प्रावृतस्थितिः सर्वथा अनुकूलं वर्तते। पुरुषक्रिकेटक्रीडायां भारत इंग्लैण्डदेशयोः मध्ये द्वितीया टी20 अन्ताराष्ट्रियक्रीडा अद्य मैंचेस्टरनगरे क्रीडिष्यते। भारतीयसमयानुसारं क्रीडेयं अद्य सायं 7 वादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर जिले की चिट्ठी और 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित किया। 79,450 करोड़ रुपए से अधिक की ये रिफाइनरी प्रदेश के औद्योगिक और पेट्रोलियम सेक्टर में मील का पत्थर साबित होगी। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार के संयुक्त उद्यम से सालाना 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का शोधन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। उन्होंने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और

0: राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के फोर लेन निर्माण का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से बिजली निकासी के लिए 1900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह परियोजना विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से राजस्थान में हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपनी रिफाइनिंग क्षमता में लगातार विस्तार किया है और देश आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग क्षमता वाला राष्ट्र बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वैश्विक संकट के बावजूद घरेलू रसोई गैस की कीमतों को नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की। समारोह के दौरान श्री मोदी ने सरकारी सेवा में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस अवसर पर उन्होंने एलपीजी टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी के मैन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर कच्चे तेल की शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रिफाइनरी परिसर में खेजड़ी का पौधा भी लगाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण पूरी दुनिया को 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने समय पर लिए गए निर्णयों, प्रभावी रणनीति, संसाधनों के संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति के बल पर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, तब भारत ने स्थिति का सही आकलन करते हुए दूरदर्शी नीति अपनाई और देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए इसे राजस्थान के लिए गौरव का क्षण बताया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज समूचा देश और राजस्थान विकास की गति पर लगातार आगे बढ़ रहा है।
2: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और यह सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यह रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का, ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा सहित कई मंत्री, जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जोधपुर में हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के हिसाब से तैयार किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह

0: शेखावत मौजूद रहे। प्रदेश भर में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालयों पर हुए कार्यक्रमों में जिला प्रभारी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान 54,000 से अधिक युवाओं को रोजगार किट वितरित किए गए। इनमें प्रधानमंत्री के पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने अलवर में नियुक्ति पत्र सौंपे। जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित रोजगार उत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। डीग में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, सवाईमाधोपुर में डॉ किरोड़ीलाल मीणा और चूरू में प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कृषि विभाग ने प्रदेश को जैविक खेती का मॉडल बनाने के लिए जिला स्तर पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच के प्रयास तेज किए हैं। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने आज कोटा में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि किसानों को जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों की बिक्री के लिए जिलों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
1: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं, कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते, तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा की है, इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे संस्थान है, वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट लाके निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
0: सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आज से विधि और न्याय मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया। दो दिन के सम्मेलन में देश में न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधारों और कानूनों पर देशभर से आए विधिवेत्ता विचार विमर्श कर रहे हैं। इस दौरान विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार देश के न्यायिक क्षेत्र में कार्य योजना पर भी मंथन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 12 से 18 जुलाई तक आयोजित की जाने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 अब 9,651 पदों के लिए होगी। गौरतलब है कि आयोग ने शुद्धि पत्र के जरिए पूर्व में पदों की संख्या बढ़ाकर 10,537 कर दी थी, जिसे कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। इस मामले पर आयोग के सचिव ने आज न्यायालय में सुनवाई के दौरान बताया कि मूल पदों में अधिकतम 50% तक की ही बढ़ोतरी की जा सकती है। सुनवाई के बाद आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए 9,651 पद अधिसूचित किए हैं। राज्य में मॉनसून की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। करीब सप्ताह भर की देरी से आए मॉनसूनी बादलों ने बीते 24 घंटों में दक्षिणी पूर्वी जिलों के साथ ही पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की उत्तरी सीमा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू से होकर गुजर रही है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में आगामी 5-7 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की भी चेतावनी है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा।

0: राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश की प्रगति में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री का आभार जताया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति ने सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और राज्य में मॉनसून की गतिविधियां बढ़ी। अगले कुछ दिनों में पूर्वी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मॉनसून, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

0: samaptu huwa. Namaskar.
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों मॉनसून, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी अनेक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ विकास कार्यों की भी लगातार समीक्षा कर रहा है। आज की जिले की चिट्ठी में इन सभी पर बात करेंगे। जिले में पिछले दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला। कई स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश थमने के बाद उमस बढ़ गई है। दूसरी ओर धान की रोपाई का काम शुरू होने से किसान खेतों में जुट गए हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इसके साथ ही घग्गर नदी में पानी की संभावना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से बैठक आयोजित की गई और नदी के तटबंधों के मरम्मत का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर डॉ खुशहाल यादव लगातार शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी काम करने के निर्देश दे रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में अनियमितताओं की जांच भी जारी है। कृषि विपणन विभाग ने जांच के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी विक्रय के मामले सामने आने की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों और आढ़तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 3 दिन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 2 लाख बच्चों को पोलियोरोधी दवा की 2 बूंद जिंदगी की पिलाई, जो निर्धारित लक्ष्य का 78.70% रहा। सीएमएचओ डॉ नवनीत शर्मा ने बताया कि दूसरे और तीसरे दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने घर घर जाकर छूटे बच्चों को दवा पिलाई। अभियान में 11,780 पोलियो वैक्सीन वॉयल का उपयोग किया गया। शेष बच्चों तक पहुंचने के लिए फॉलो अप अभियान जारी है। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से बीते दिनों एक दिवसीय रोजगार शिविर लगाया गया। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। शिविर में निजी कंपनियों, प्रशिक्षण संस्थानों और स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों युवाओं का प्रारंभिक चयन किया गया। रोजगार विभाग ने साल भर ऐसे शिविर आयोजित करने की योजना बनाई है। जिले के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को गैर संचारी रोग कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। सीएमएचओ ने बताया कि समयबद्ध स्क्रीनिंग, नियमित उपचार, फॉलोअप, डेटा गुणवत्ता में सुधार और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ये उपलब्धि मिली है। जिले में उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग की गई। हाल ही में राजकीय मेडिकल कॉलेज हनुमानगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले 60 भामाशाहों को शिक्षा श्री सम्मान तथा 24 प्रेरकों को प्रेरक सम्मान से सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर ने दानदाताओं की सराहना करते हुए उनके योगदान के वीडियो जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शित करने की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस और प्रशासन ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। गांव-गांव जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान भी चलाया गया। जिला प्रशासन के मिशन बुनियाद के तहत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने जिले के 400 से अधिक ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए विशेष स्वास्थ्य अभियान चलाया। अभियान के दौरान टीमों ने स्वास्थ्य जांच, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच, बच्चों का टीकाकरण, कुपोषण की पहचान, एनीमिया जांच और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई। श्रमिकों को स्वच्छता, मौसमी बीमारियों तथा नशा मुक्ति के प्रति भी जागरूक किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला स्तरीय कार्यक्रम हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में हुआ, जिसमें 4,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रही। हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
2: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार।

0: खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माए देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपयों बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माए मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई उं राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज भी आवता कुछ दिन माए उगनी और लंकाऊ हल्का माए भारी बारिश री चेतावनी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालोतरा जिला रा पचपदरा माए देश रो पहलो ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स देश ने सौंपियो। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राज्य सरकार का न्यू मिलर 79,450 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चू बनाई जी ई रिफाइनरी माए सालाना 90,00,000 मीट्रिक टन कच्चो तेल साफ करियो चावेला। ई मौके प्रधानमंत्री 1,05,000 करोड़ रुपया रा खर्च वाला पेट्रोकेमिकल्स शहरी परिवहन रेलवे सड़क नवीकरणीय ऊर्जा बिजली और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा चरण रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम जनता ने सौंपिया। वे चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेलवे लेन ने दोवड़ी बनावन री परियोजना और नेशनल हाईवे नंबर 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 ने 4 लेन री बनावन रा काम री शुरुआत कीनी। श्री मोदी 1,000 मेगावाट बूता वाली बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना ये जनता ने सौंपी। प्रधानमंत्री राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा हल्काऊं बिजली निकासी सारू 1,900 करोड़ रुपयों बत्ता खर्चों बनाई जी ट्रांसमिशन लाइन रोई उद्घाटन कीनो। ई मौके वे कहो के रिफाइनरी री आ परियोजना विकसित और खुदरे पान उबो भारत बनावन री दिशा माए खास कदम है। श्री मोदी कहो के तेल साफ करन रा ई कारखानाओं प्रदेश माए मोकला लोगां सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला और औद्योगिक विकास और तेज वेला।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी कहो के पश्चिम एशिया संकट रे बावजूद भारत टेम सर करी जिया फैसला असरदार रणनीति साधना रा संतुलित उपयोग और मजबूत कूटनीति रे पाण ई चुनौती रो कामयाबी सागे सामो कीनो। व कहो के दुनिया रा कई देश ईंधन री परेशानी जूझ रिया हा, वहां भगत ही भारत आगे री सोच नीति अपनार देश री ऊर्जा हिफाजत तय कीनी।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: प्रधानमंत्री कहो के भारत तेल साफ करण रा बूता ने लगातार बधावन सागे आज दुनिया रो रिफाइनिंग बूता वालो चौथो मोटो देश बन गयो है। श्री मोदी कहो के सरकार दुनिया माए तेल गैस रा संकट पीछे रसोई गैस रा मोल माथे काबू राखण माए कामयाबी हासिल कीनी। जलसारा दौरान वे नवी सरकारी नौकरी लागण वाला नौजवाना ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपिया। ई मौके प्रधानमंत्री रसोई गैस भरिया टैंकर ही रवाना कीना। श्री मोदी रिफाइनरी री मेन

0: कंट्रोल यूनिट रो दौरो कैर कच्चा तेल न साफ करण रे प्रक्रिया तकनीक और उत्पादा ने जानकारी लीनी व एक पेड़ माँ के नाम अभियान रहते रिफाइनरी परिसर माए खेजड़ी रो पौधो ही रोपियो। कार्यक्रम माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रधानमंत्री रो आभार जताता थका तेल साफ करण रा कारखाना रा उद्घाटन ने राजस्थान सारू माथो ऊंचो करण वालो बतायो। श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए पूरो देश और राजस्थान लगातार विकास कर रियो है।
1: आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और ये सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ का इंजन साबित होगा।
0: कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत कई मंत्री, जनता रा नुमाइंदा और मोटी तादाद में जनता मौजूद रही। इनो पहली प्रधानमंत्री जोधपुर में हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल भवन रो उद्घाटन कीनो। ई मौके वे संशोधित उड़ान योजना री शुरुआत कीनी। 28,840 करोड़ रूपये री ई योजना रो मकसद आवता 10 साल में जनता ने हवाई सेवा मुहैया करावनो है। कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू और केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावती मौजूद रहा। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव राखी जियो। जिला मुख्यालय माथे राखी जिया कार्यक्रम में माए जिला ना प्रभारी मंत्री और जनता रा नुमाइंदा सरकारी महकमा माए नुई नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपिया। इस दौरान 54,002 नौजवान ने रोजगार किट दिया जिया। आ कार्यक्रम में माए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रा पचपदरा माए राखी जिया कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण बताई जियो। पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव अलवर माए नियुक्ति पत्र दीना। जोधपुर माए राखी जिया रोजगार उत्सव माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सागे राज्य रा कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल समेत जनता रा कई नुमाइंदा शामिल भया। डीग माए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, सवाई माधोपुर माए प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सवाई माधोपुर माए किरोड़ी लाल मीणा और चूरू माए प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत नवी नौकरी लागण वाला ने नौकरी लागण रा कागजात सौंपिया। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई ने शुरू फैला। 13 अगस्त ताई चालन वाला पावस सत्र सारू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंजूरी दे दीनी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि सत्र माए देश रा भला सारू खास मुद्दा माथे सार्थक बहस चर्चा और फैसला करण माथे ध्यान दियो जावेला। कृषि विभाग प्रदेश ने जैविक खेती रा हलका माए आदर्श बनावण सारू जिला स्तर माथे सोशल मीडिया अकाउंट मनार बत्ताऊं बत्ता काश्तकारा ताई पहुंच बधावण री कोशिश तेज करती नी है। कृषि आयुक्त नरेश गोयल आज कोटा माए राखी जाए कार्यक्रम माए बतायो कि किसाना ने जैविक उत्पादा ने बेचण लायक बनावण जनता ताई वारी जानकारी पुगावण और सर्टिफिकेशन री जानकारी दी जावेला। वे बतायो कि जैविक उत्पादन की बिक्री सारू जिला माए ठौड़ मुहैया कराई जावेला।
2: अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया हमारी थोड़ी क्लिष्ट है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और किसान को हमने ये इनको आदेशित किया अधिकारियों को किसानों के पास जाएं कैसी प्रक्रिया होती है स्वयं संपादित करके उसके घर बैठे हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको जो सर्टिफिकेशन की प्रोसेस है वो घर पे बैठे कराएं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है किसान के वो कई बार बिक नहीं पाते तो हमने इसकी शुरुआत सियाम संस्था है हमारा स्टेटिस्टी है इसमें हमारे पास जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो भी हमारे संस्थान है वहाँ हर जगह हम जो ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान अपने प्रोडक्ट ला के निःशुल्क उनको जगह उपलब्ध कराएं।
0: सिरोही जिला रा आबू राजमाए

0: प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज विधि और न्याय मंत्रालय री खास उपलब्धियां द्वारा माय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला रो उद्घाटन केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कीनो। दो दिन रा ई सम्मेलन माय देश माय न्याय व्यवस्था प्रशासनिक सुधार और कानूना रा बारा माय देश भर आया कानून रा जानकार विचार कर रहा है। अरब मौसम राज्य में भय रही चौमासारी बिरखा बीच लाड़ला 24 घंटा माय प्रदेश लंकाऊ उगनी जिला सागे आतुणी हल्का माय कई थोड़ा चोखो में बरसियो। मौसम महकमा रे मुजब मानसून रे उत्तरी सीमा उदयपुर अजमेर झुंझुनू वहती निकल रही है। विभाग रे मुजब आवता दो तीन दिन माय राज्य रा कुछ और हल्का माय चौमासारी बिरखा भेवन रा आसार है। जयपुर भरतपुर कोटा उदयपुर और अजमेर संभाग रा कुछ हल्का माय आवता 5-7 दिन चौमासारी बिरखा चालती रहवन री संभावना है। इन दौरान उगनी और लंकाऊ उगनी हल्का माय कठे कठे भारी और कठे कठे घनी भारी बारिश सारू चेताई चियो है। आखिर माय खास समाचार एक और फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा माय देश री पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जनता ने सौंपी। 1,05,000 करोड़ रुपयाऊ बत्ता खर्च वाला विकास रा कामारी शुरुआत कीनी और पूरा भया काम देश ने समर्पित कीना। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो राजस्थान रिफाइनरी प्रदेश री बरकत माय मील रो पत्थर साबित फैला। प्रधानमंत्री रो आभार जतायो। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई राष्ट्रपति सरकार रा प्रस्ताव ने मंजूरी दीनी। और राज्य में चौमासारी बिरखा तेज हुई। आवता कुछ दिन माय उगनी और लंकाऊ हल्का माय भारी बारिश री चेतावनी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफको।
2: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। ग्वार चौला मूंग उड़द मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीजोपचार करें। मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनाला सगला हेतालु श्रोताओं ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोई
1: और किरण रा
0: राम राम। किरण जी देखो के जुलाई है और स्कूल खुल गई।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, स्कूल खुल गई है और देखो कि भाई मौसम में अभी जो है कि मेरी बाट जो है किसान और आपा सब जना बिल्कुल आंखें फाड़न देख रहा हा कि भाई अब तो इंद्र देवता मेहरबान वे जाए और मैं पानी बरसे तो देखो कि भाई किसान रे भी आप रो जो काम काज शुरू हुए और आपने भी जो है गर्मी से राहत मिले।
0: अब देखो हम चार उड़ता उड़ता आया है कि भाई बरसात अब आउन वाली है और जबकि महाराष्ट्र में बरसात बढ़िया हुए नहीं तो चार पांच दिन बाद गुजरात रे बाद राजस्थान तो हम

0: उम्मीद करा के इन सप्ताह रे महीने जो अगलो सप्ताह में जमन बरसात हो और बरसात पहला जकी उमसर गर्मी है आ तो देखो लाल दो तीन दिनों लगातार चल रही है।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, उमस और गर्मी कटे इन कटे यो संकेत दे रही है कि जो बरसात है वह जल्दी आने वाली है और ईश्वर करे की बहुत अच्छी बरसात हुए।

0: और गुरिंदर जी देखो कि आज अगर आप दिन विशेष री बात करा तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है आज। और खास कर देखो कि भाई सहकारिता एक एड़ो महकमो है जिरे मायने बहुत सारा लोग मिले और ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में सहकारिता विभाग सब जगह काम करे और पूरा विश्व रे मायने जो है सतत विकास रे सारू और सामाजिक लक्ष्य ने प्राप्त करने रे सारू जो है सहकारी समितियां रो गठन करीजे और इरे माध्यम सु समाज रे मायने वंचित वर्ग तक जो है सरकारी सुविधावां सरकारी योजनावां और वारे उन्नति रे जो काम है वो करीजे।
1: किरण जी देखो अगर कोऑपरेटिव सेक्टर ने अगर आप समझने की कोशिश करा तो सहकारिता के लोग आप रो सद ग्रुप बना

0: जो आपा सरकार बना जो ग्रुप बनावे उगेरा सदस्य बने उगेरा उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट लिखी जाए कि भाई आपा 10-20 लोग जका मिल और इन इन मुजबरे मायने काम करा इन तरह रो काम करा। तो मान लो गैर सरकारी संगठन री श्रेणी रे मायने अगर आपा कोऑपरेटिव बनावा उगेरा उद्देश्य और है ग्रामीण क्षेत्र रे मायने अगर आपा स्वयं सहायता समूह मुजब ये ने बनावा तो ग्रामीण जकी महिलावां है बेचा 21 हो चाहे 11 हो चाहे 25 महिलावां इकट्ठी हो एक निश्चित राशि 10 रुपया 100 रुपया मासिक जमा करना आपरो खातो खुलावे तो एड़ा जका स्वयं सहायता समूह है उए ने कोऑपरेटिव बैंक का भी मदद करे कई दूजा भात भातरा जका एनजीओ है वे भी मदद करे और उए रे साथे साथे सरकार री भी इमदाद है कि भाई वो जका सदस्य कोऑपरेटिव बनाई है जो ग्रुप बनायो है उए रो विकास करन रो जरियो जको है ते कहो नी कि भाई गरीबों गरीब आदमी और सरकार उन गरीबों गरीब रे विकास रे वास्ते जरिए कोऑपरेटिव उत्थान रो प्रयास।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी आपकी जो सहकारी संस्थावां है यहाँ रो उद्देश्य जो है समाज रे आर्थिक हितारी जो है पूर्ति करनी तो इंडे सारू जो ए लोग मिलन जो आप संगठन बनावे इनमें कुछ खासियत आवे की एक तो इनकी जो सदस्यता वे वह स्वैच्छिक है कोई बाध्य नहीं है की इरे मायने जुड़े जुड़े जिरी इच्छा वे वो इनसे जुड़ सके और इनमें जो नियंत्रण है आपकी जो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका विया करे कि जिन तरीका जो इन प्रबंधन है वे चुनियोड़ी समिति वे उरे माध्यम से करी जे और इरो जो मुख्य उद्देश्य वो है कि लाभ कमानो नहीं है जो कोई एक प्राइवेट संस्था है तो उरो उद्देश्य वे कि भाई मैंने ज्यादा से ज्यादा फायदो कमानो है पर सहकारी समिति रो उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा समाज ने जो है लाभ मिले समाज रो गरीब और वंचित वर्ग है उन तक सुविधा पहुंचे तो जो सेवा रो भाव है वो इरे माने मुख्य रिया करे और यहाँ रो जो पंजीकरण करियारे बाद है बिल्कुल कानूनी रूप अस्तित्व में आ जावे और समाज री सेवा रो काम करिया।

साथ यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में अगर आप जानकारी चाहो तो आज की है राजस्थान रे महीने तीन स्तरीय रूप आप इन्हें ओड़खाण कर रखे गांव रे महीने क्रय विक्रय विकास समिति हुए जो की कोऑपरेटिव मुजब काम करे और वह जका अनाज है शक्कर है जो भी सरकारी कम कीमत रे महीने जो की सरकार उपलब्ध करावे वाणो क्रय विक्रय करिया करे यानी और खरीद करनी है मान लो कोई फसल ली तो वह भी जरिए कोऑपरेटिव खरीद करे ग्राम स्तरीय पंचायत समिति रे मायने जका सदस्य हुए बे आप रो एक बोर्ड बनावे दस सदस्य हुए में जका ऋणी लोग है बे ऋणी आप एक कार्यकारिणी बना उन कोऑपरेटिव जकी है वे अध्यक्ष बने लेकिन वे साथ साथ दो अऋणी सदस्य भी हर कोऑपरेटिव रे मायने जरूरी है दूजो स्तर जो हीरो है वो जिला स्तर माते तो वह कठिन कटे भूमि विकास बैंक है या जकी जोधपुर इकायरी कोऑपरेटिव बैंक है उनसे जुड़ी अगर मान लो मोटो कोई ऋण चीज है या मोटी कोई योजना परियोजना है या सदस्य कोई ज्यादा है या सरकार कोई अड़ी योजना बनाई है जी रे महीने अनुदान कीमत चुकी

0: है, लाख लाख 2 लाख 5 लाख है, या कोई ग्रामीण है कोई अड़ी चीज खरीदनी चाहे जो ट्रैक्टर है या, तो उरे वास्ते आ जिला स्तरीय है हैंग जिला री मिलन एक सेक्टर पड़े जो कि राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मायने देखो के शहर रे मायने क्रय विक्रय समिति शहरारी अलग गांववारी अलग है, उरे साथे साथे राजस्थान रे मायने और गुजरात रे मायने अगर आप कोऑपरेटिव सेक्टर रे मायने देखा तो दुग्ध जो क्रय विक्रय है उरी भी समिति बनी उड़ी। आज अगर दुनिया मायने अमूल रो उदाहरण है तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर रो है कि एक कोऑपरेटिव सेक्टर पूरी दुनिया रे मायने किन तरह दूध रो संकलन करन दूध रा बाई प्रोडक्ट बनावे।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, कुल मिलायन बात आ है कि जो सहकारी समितियां है ए जो कोई भी ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में खास कर भारत जड़ा देश रे मायने इरी अर्थव्यवस्था री रीढ़ री हड्डी है। आज अपने देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी समितियां है जो मुख्य रूप से कृषि बैंकिंग उपभोक्ता और डेयरी रे क्षेत्र रे मायने काम कर रही है। कृषि रे मायने जो ए समितियां है ब्याज मुक्त ऋण देनो और किसाना ने जो खास कर है ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने जो काम है ए सहकारी समितियां कर रही है। साथ ही साथ जो है राजस्थान सरकार नाबार्ड री सहायता सु राज्य में 12,000 जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां है वे माइक्रो एटीएम सु लेस करी उड़ी है जिनमें ग्रामीण लोग घरे बैठा पैसा निकाल सके और जमा करा सके। इरे साथ साथ जो सहकारी समितियां है उचित मूल्य माते उन्नत बीज है खाद है कीटनाशक है उपलब्ध कराउन रो काम भी करे। पशु पालकार हारू दूध संग्रहण जो काम है अभी सहकारी समिति रे माध्यम सु करी जे राजफेड रे माध्यम सु राज्य स्तर माते न्यूनतम समर्थन मूल्य माते जो खरीद रो काम है वो भी सहकारी समितियां करिया करे जिनसु खास कर जो है बिचौलिया री छुट्टी भेजावे और सीधो जो किसान है आपरी फसल ने अच्छी कीमत में जो है सरकार ने बेच सके। कानफेड रे माध्यम सु दैनिक उपयोग री जितनी भी वस्तुआ है वे आपने उचित मूल्य माते उपलब्ध वे राशन रे जो आपरे गांव रे मायने शहर रे मायने दुकाना है उन माते आपने गेहूं है चावल है या अन्य पदार्थ है वे उचित मूल्य रे माते आपने मिलिया करे। और महिला सहकारी जो समितियां है वे महिला रे आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार रा ऋण प्रदान करे स्वयं सहायता समूह रे माध्यम सु प्रशिक्षण देन यानी आगे बढ़न में सहयोग करे और साथे साथे जो सहकारी समितियां है आवासीय योजना में भी कम आय वर्ग रा जो लोग है वाने सस्ता और दीर्घकालीन जो ऋण है वे प्रदान करन रो काम भी करिया करे।
2: कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इपको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार चौला मूंग उड़द मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इपको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: बिल्कुल किरण जी, आप जयपुर जावा तो आप देखा कि राज फेड और कान फेडरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जकी है वह आपने दिखे वगैरह मायने कही है कि एक तो है कि भाई समर्थित मूल्य माते फसल री खरीद और एक है कि भाई जका सस्ती दर रे माते घरों सामान
1: हाँ सर,
0: खाली राशन रोई सामान नहीं राज्य सरकार जरिए राज फेड और कान फेड होते करे कि भाई दूजी जकी चीजा है रोजमर्रा री जकी जरूरती चीजा है
1: बिल्कुल सर,
0: उन टाइप रो स्टोर भी बनावे के वो में लगभग हर वे चीज जकेरे माते सरकार टैक्स लेवे या कोई रियायत दे सके तो सस्ते दर रे माते जो आपने अब जोधपुर में सहकारी समिति है
1: है भंडार है।
0: हाँ
1: हाँ
0: तो स्टेशन रोड माते उठे हैंग मिले टूथपेस्ट लेन जो भी घर की जरूरती चीज है तो वह इन तरह की जबकि बड़ी बड़ी एक तरह देखा तो छोटो शॉपिंग मॉल चलाउन रो काम भी सरकार जरिए कोऑपरेटिव करे तो कोऑपरेटिव नाम है उत्थान रो प्रगति रो और विकास रो और इन कोऑपरेटिव जुड़ और आपा अपने गांव ने आगे ले जा सकार अगर कोई पढ़िया लिखिया है गांव रे मायने कोऑपरेटिव आपरी कोई सोसाइटी रजिस्ट्री करनी चाहे तो सोसाइटी रो रजिस्ट्रेशन भाई लोग कम उकम न्यूनतम 11 सदस्य अधिकतम आपरी मर्जी उतार आ सक और वह जिले स्तर माता हुए तो जोधपुर मायने कोऑपरेटिव जो की सोसाइटी रो दफ्तर है उठे हुए जका आपरा सदस्य है बाना एक रजिस्टर डालना पड़ी उन रजिस्टर में एक मीटिंग आउट करनी पड़ी कि भाई मैं आज है 10 या 20 लोग इन काम रे वास्ते जुटिया हाँ मैं एक अड़ी सोसाइटी बना रही हाँ जो कि गांव रे मायने पर्यावरण रो ध्यान रखेला या जो भी आप रो उद्देश्य है उन उद्देश्य रो अवलोकन कर उन पहले पन्ने माते सदस्य रा सगवारा साइन कर पचे उगेरी एक कार्यकारिणी के भाई आज मैं हैंग बेड़ा होया ओ मानो उद्देश्य है अब मैं एक कार्यकारिणी बना रही हाँ ये मैं अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष ए तीन नामी तर बाकी जका सक्रिय सदस्य वाणा नाम लिख और जका सदस्य वाणा राशन कार्ड या आधार की प्रतिलिपि ले और आप कोऑपरेटिव ऑफिस आओ तो एक रसीद कटे 2,500 रुपया की
1: रजिस्टर्ड करवा
0: हाँ तो वह पछे आपने पंजीयन कर आप एक सर्टिफिकेट दे दे कि इन गांव रे आ लोग सदस्य जकी संस्था है आ रजिस्टर्ड है।

0: रजिस्टर्ड संस्था रो देखो फायदो है कि आप कोई भी काम कर सको और सरकार रो भी कोई काम है आप जरिए सोसाइटी करा सको।
1: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, और अब देखो आप बात करी ही कि जुलाई रो महीनो लागो है और टाबना री स्कूल शुरू वेगी है, तो सरकारी स्कूल में जो प्रवेश वंचित रहेगा है वहाँ रे टाबरा ने स्कूल सु जोड़न रे सारू जो है। अब शिक्षक 4 जुलाई सु टाबरा ने घर घर जाए हाउस होल्ड सर्वे कर रहा है ताकि स्कूल रे मायने जिन बच्चा रो नामांकन नी वियो है उरो नामांकन करियो जा सके ताकि प्रत्येक जो को है विद्यार्थी स्कूल सु जुड़ सके। पहली अभियान मई में शुरू करियो हो पर गर्मिया री छुट्टियां वेगी तो अबे पाची स्कूल ना खुलन रे साथे ओ जो कार्यक्रम पाचो शुरू वेगो है घर घर जाए जो अभिभावक है वहां ने समझावेला कि भाई आप रो टाबर स्कूल क्यों नहीं जा रही हो, इन्हें स्कूल में आप प्रवेश दिलाओ, स्कूल में कई कई सुविधा है, बच्चा ने स्कूल सु जोड़न रो जो है वो एक सार्थक प्रयास है वो करी जे रही हो।
0: ढाणी ढाणी गांव गांव स्कूल खोल दी। अब एड़े में अगर कोई सरकार आप रा आंकड़ा देखे उठे ड्रॉप आउट स्टूडेंट जका है छात्र छात्राओं की संख्या देखे तो वे रकान खड़ा हुए कि भी ए टाबर क्यों एल आने घर कने आपा स्कूल खोल दी इतना बढ़िया बढ़िया मास्टर लगा दिया हमें ए टाबर सिर्फ के का गांव रे मायने जो कोई एक चौमासा रे टाइम है कि भाई वो तो बातों ही पुगावे वो तो बकरियां चराउन ने जावे तो ए छोटा छोटा काम वास्ते टाबर जो को शुरुआती जुलाई अगस्त रो महीनो है स्कूल उन्हें कहीं है कि फंट पड़ जान पचे वो स्कूल नेड़ो ही नहीं आवे इन वास्ते सरकार स्कूल रा जका टीचर है अध्यापक है माने आज जिम्मेदारी दी है कि वे वहां घर जा और समझाइश करे कि भाई टाबरा ने स्कूल आलगा मत करो, एक बार अगर स्कूल आलगा कर दिया तो पूरी जिंदगी बानी अलग हो जाला। पढ़ा लिखा जो को घर परिवार है, पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है दो घर री, तो अगर आपने अपने देश ने अपने समाज ने अपने गांव ने आगवान बनाना है आगे बढ़ाना है घर परिवार ने तो आपने शिक्षा रो महत्व जानना पड़ी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हुई तकदीर ताला खुले है रे तकदीर ताला खुले पचे आप भारत रे शीर्ष स्थान वाते पहुंच सको हो, कलेक्टर बन सको हो, SP बन सको हो और चाहे आप किनी जाति रा हो चाहे किनी धर्म रा हो चाहे किनी प्रांत रा हो एक शिक्षा एडी सीडी है जो कि आपने ऊंचाई प्रदान करे और भारतीय जो कि अपने राष्ट्रपति है तो वो एक सब मोटो उदाहरण है कि आदिवासी महिला होने के बावजूद आज भारतीय वह राष्ट्रपति और सिर्फ शिक्षा रहे बलबूते मात्र।

0: बिल्कुल सा गुरविंदर जी, और देखो आता यहाँ घड़ी वेगी और घड़ी में टाइम देखो।
1: अमे चौपाल कार्यक्रम रो भगत हो रही है पूरो, तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप साथी गुरविंदर विष्णु
0: और किरण ने दिराओ सी
1: राम राम, राम।

0: कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफको। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सीमा डेरी गूंज।

0: राम राम नवलाभा। ओ नवलाभा, अरे अरे क्या होगा नहीं हो?
1: ओ आज फाटक ने पकाओ कौन बजा?
0: अरे आज मारा दो ही खाओ माते पड़िया थाना सामान लाया हूँ जी का।
1: सामान लायो कौन है दिया तो?
0: अरे खोलो खोलो मैं भारिया मरू।
1: अरे भारिया मर तो अरे आयो भाई आयो कौ है कौ कई लेन आयो कौन कर ने तो चढ़ो
0: गए।
1: अरे खोल दी भाई ले आओ रोहन मैं कौन कौन लायो थे?
0: अरे
1: कमल है
0: ओलक तो लिया आते हैं
1: आज ओलक लिए भाई कौ है मारे कोई चीज बुस लेन आवे थेला भरियोड़ा खावे मत देखू नी तू फटकर
0: ओलक लिए बेगा।
1: अरे कौ इतना कौन लाया भाई
0: आज मैं अपने हाथ पौधा लाया हूँ पेमली बोर टीकड़ी बोर खरबूजारा बेलान एथाण आंबारा पेड़ चिकूरा पेड़।

0: है, रोज रोज क्या माने लाओ कौन लाओ कौन, आज लो हमें लगा दो पूरा खेतम में।
1: ओ ठीक खेत खेत में कौन है ढाणी चारू मेर बात देवा, पर एक
0: हाँ
1: बात बता दे के एक दे के, ओ तो है अंबेरू
0: हाँ
1: एंड ओ है सर चीकुरो,
0: हाँ नवलबा।
1: ओ है सर धर्मरो एंड ओ है ए सर तीन बुढ़िया है
0: हाँ सर
1: एंड भले कौन है बताया कौन इंड काकड़ी
0: लाए नवलबा
1: है,
0: हैंगे देखो ए।
1: इंड काकड़ी लायो को लायो नहीं, और आजकल बात थार खेजड़ी आवे बात लाई को
0: हाँ
1: लायो
0: बा कौन ले बा लाऊं
1: बाल लानी भाई, और ठीक है बढ़िया करियो भाई ये तो खासा लिया बच्चा हाथ एक दो तो आप और है जो चारू मेरू और रानी चारू मेरू ए इंडिया उबाली
0: हाँ सर
1: और इंडियन बाहर देवाना थे पाचा खाड़ा खोदा हावड़ है जो जाप तो कल फिर करा दे
0: हाँ सर चारू में
1: मैं।
0: फल
1: हाँ
0: फ्रूट हो
1: अरे खाद बढ़िया भाई खाद बढ़िया है, थोड़ी माटी है जो लाइडी नैगिड़ी है बे है थोड़ा खाड़ा तैयार कर पानी भिजो फसे है जो दिन दिन भर ही नहीं
0: हाँ
1: उन दिन है जो आप है जो कह नहीं गया पौधा रोक दे
0: रोप देवा सा।
1: आ तो मारे मंत्री जोर करी भाई कमल वारे वाह जदी मैं क्यों मिठड़ो गीत हूं तो आयो है न के भाई एकदम ए हमसार आज भाई देखे ठीक है हमने तपत कर दी है भाई
0: है
1: एक
0: नवलबा
1: हम
0: अनुति
1: कदे
0: दपत
1: बारी की करो भाई देखे अरसाठ जाऊं ढुको नहाऊं नहाऊं ढुको है
0: हाँ सा
1: और हाल की कोई कह नहीं छाटी कटी पड़ी को नहीं कटी कटी तो पड़ी है
0: हाँ नवलबा
1: कटी में बरियो है कटी हड़बाऊ हुई है कटी कई हुई अपना में अटे अपर है जो बात उन्हें कह नहीं कि एरिया में थोड़ी बरसात हुई कोनी
0: कोनी
1: हुई
0: हुई
1: ठीक है भाई हम देखे क्या कुदरत रे हाथरी बात है कुदरत खेल आप रख करी
0: करी
1: आ बात है आन दूजी बात आ है कि भाई देखे ए रूंगड़ा कटी फाऊ में मिल गया की कर लायो आज
0: हाँ नवलबा वन महोत्सव चल रही है सब तो जने फाव में भी दिया अन पया में दिया सरकार दिया आप लगाओ चारू मेर हरियाली कर दो सर।
1: हाँ अच्छी बात है देखे भाई के जे कोई तरीके उन काम करो तो वो ठीक है मैं देखे कि भाई पहला कोऑपरेटिव वाला खासा नाम देता बीज बाज रहन
0: हाँ
1: करता
0: नवलबा
1: ठीक है नहीं, और ये कोऑपरेटिव वाले दिया हुई कौन था
0: हाँ बेज माटिया
1: है
0: सर
1: वाह तो बढ़िया भाई ए लायो जी को शौका न मैं आने कह नहीं हूं तू देखे टाबर ने पाल दी पाल मोटा कर दू
0: हाँ नवलबा
1: आ मारी कह नहीं भाई देखे मंदरी बात है और रूप है जो कह नहीं कि देव रूप है
0: देव रूप है सर।
1: और क्या उसमें कह हो सरवर तरवर संत जन चौथा बरसन में और परमार्थ रे कारण चारू धारी दे
0: दे
1: तो हकरो कह नहीं मैं चाहो तो भाई अपन चारू मेर है जुगो अपने देखे ढाणी जा रे पाड़ हैंग है जुगो है रोकड़िया रो लगावा
0: हाँ नवलबा
1: लाडो पानी पा बोकरा भले जू देखो गया तो कुदरत आप ही मोटा करी
0: कर
1: आ जरूर कह नहीं कह भाई अंबाई लागी काकड़िया लागी दाड़मी लागी बोरिया लागी
0: लागी
1: यार हूं तो तीन ऋतुरा फल है बे बरोबर मिलबो करी तो बस कह नहीं घर में बीमारी नहीं पड़े
0: नहीं पड़े
1: है
0: नवलबा
1: कौन
0: हाँ सर
1: वारे वाह कह नहीं कदी कदी से काम एडो करो के मारो जी हो रो जा मैं यू करे नहीं
0: हाँ नवलबा
1: ओ गीत लो हूं तो आयो के
0: हाँ सर
1: ओ गीत लो मनी भाई कर लो मीठो लागो मनी हुना वे कनी
0: हुनो सर।

0: वाह भाई, ये वाह वाह सच्ची है। भाई देखो जटे भाकर है, पहाड़ है, उठे है जिको कहनी जी नवरी घणे ही वैन कहनी के भाई लागे ही हकरो घणो ही मन ही राजी रहे। खैर बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
1: आज आपने कोऑपरेटिव याद है नवलाबा, आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस है सा, और आयोजन 1923 अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा कराया जावे। 1995 में यूएन ने आधिकारिक मान्यता दी।
0: ए बात समझ गोर भाई, देखे अपन बड़े रात थे तू कोऑपरेटिव मान तो बड़ा होता आए ही है।
1: हाँ सर,
0: पहला कहो हो तो भाई देखे के कोई हो तो हैंग मिन का खाने हो जब कहो करता बड़े रात के भाई नू तो पातो ले उता।
1: हाँ।
0: के ब्याह हो तो जब कह के भाई मे थार नू तो वरदान थे मार नू तो बर थे मारे जिम ने आवरा नू थार जिम ने हूँ। ठीक है नी, तो इन हिसाब इन कोऑपरेटिव है।
1: हाँ।
0: तो कोऑपरेटिव में भरता कोऑपरेटिव पर देश आजाद हुए पर सरकार पे आई निकास करण देवना हरू करिया बीज दिया और आज है जिको कोऑपरेटिव घणो काम करे। कोऑपरेटिव देख दूधरी कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव है जिको घणी है जिके नी लुगयाली कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव कौ है भाई देखे का मिनक है जिको आगे बढ़ समझे नी। वो उन्हों कौ है घेंगारू है जिको कह नी के भाई तरक्की हो जा, कोई रोजी रोजगार है, काम धंधो है। हमें जो चौमासरा दिन है तो चार मिनक में हो या पर निर्णाण करो नी आडा डोडा आई पे कह नहीं कि अपने कह हकरी हाक हो तो लोग आई लाई आज को हैंग डोका ही पटाई नीटी ही पटाई है। ओ अपने तो कह थेटू ही हो ओ कह नहीं रीति रिवाज री हो। वाह भाई वाह, की कोने मिले ऐ तो होगी बात ना मैं कौन जलमियान कौन भूत होया।
1: हाँ सा
0: ई बाबत मने बात री बिगत बार आज बताई दो।
1: जन्मिया जे मैं पहलो नाम है सा सीतारमण राजू, अन जन्म 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश में हुआ सा। अपने प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी हा।
0: ए अल्लूरी हा है तो।
1: हाँ अल्लूरी सीतारमण राजू।
0: हाँ मैं तो भाई मोटो काम करियो।
1: हाँ सा
0: और कह नी दिखना दे मैं आरो मोटो नाम है।
1: है
0: तो ए कह देश री कह नी आजादी का सिपाही हा और कई टाइम हो चुको मिन घर कह नी घर बार छोड़िया अंग्रेजों मुकाबलो करियो
1: करियो
0: अल्लूरी सीतारमन जी बड़े कौ कह कोई
1: आपने रंपा विद्रोह करियो सा आदिवासी सभा ने इकट्ठा करिया पाने पचे गुरिला युद्ध सिखायो पचे अंग्रेज के खिलाफ
0: अच्छी बात है लुक जुबन कह नी हमलो करो।
1: हाँ नवला
0: तो बच कह नी अंग्रेजी थोड़ी गया भाई 1857 ले 1947 तक है जो ओ कह नी के भाई संग्राम हुयो
1: हुयो सा
0: तो 90 वर्ष देखे कोई कम को है दो दो पीढ़ी खप गई जब जान अपन आजाद हुए तो आजादी है जो मोती मूंगी
1: मूंगी
0: है तो एड़े कह नी भाई देखे के एड़े बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके पर बचे पर ढोकदा कोटि कोटि नमन करे मन ले रहा भूल सदा।
1: हाँ, आगे ऐसा गुलजाई लाल नंदा अन जन्म 4 जुलाई 1897।

0: बलकोट पंजाब में होशा देश का प्रमुख राजनीतिज्ञ ने अर्थशास्त्री हा देश का पहला और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री हा जिको पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री फोत होया निशा बिन बचे दो बार 13-13 दिन वास्ते
1: अंतरिम बात राखी और बड़ा कह नी सादगी आला मिनखा और ए तो कह नी की ता कह के भाई परोपकारी हा के हमारे खुदरे रहो न आते घरों मकान नहीं हो
0: नहीं।
1: और एक थोड़ कटी किराए लिया हार पच बा उठू किरे वो मकान मालिक माने कहो के भाई किराए दे के भाई किराए आ जद दे पच बे धक्का देन बार कार हड़क मार हेमान ने कियो आरो पच कोई उठे वो कह नी खबर नवीस दे कियो वो फोटो छापियो कह आ बाजार है पच छापड़ी के तो देश का प्रधानमंत्री है जो गुलजारी लाल जी नंदा तो गुलजारी हा भाई तो बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके।

0: खुदरे रहे उन्हें वहां तक घरों मकान नहीं हो
1: नहीं।
0: और एक थोड़ कटे किराए लिया हार पच बाउटू किराए वो मकान मालिक माने कहो क्या भाई किराया दे क्या भाई किराया आ जिद दे पच बे धक्का देन बार कार हड़क मार हेमान ने कियो आरो पच कोई उठे वो कह नहीं खबर नवीस दे कि उन वो फोटो छापियो उन कह आ बाजार है पच छा पड़ी के तो देश का प्रधानमंत्री है जो गुलजारी लाल जी नंदा तो गुलजारी हां भाई तेरा बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है पर बातें पर धोक देवान मंदड़े ना फूल छड़ाओ भला है
1: आगे ऐसा नसीम बानो आना जन्म 4 जुलाई 1916 पुरानी दिल्ली में हुआ सा हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार ब्यूटी क्वीन ही सा
0: ओ हो जब पहले तो मैं मिनक लुगया बनता और पच है जुगा नसीम भाई ने आया जब कह नहीं फूट रही लुगया भाई देखे है जो कह शिले में आई
1: आई
0: तो कह नहीं पहलो पहल है जो भाई देखे काम हरू करियो तो मोटी बात है बिजली बात
1: है
0: तो कह नहीं उन टाइम देश आजादी कोई हो नहीं
1: कोने
0: अनके बे कह नहीं काली बोली गुंगी फिल्म आउती और ए है जो कह नहीं के उन टाइम रा जग सा वो काम करियो तो दिन दिन है आने आने कह नहीं अकीदत रा गुल पेश करा कोटी कोटी नमन करा मंदड़े रा फूल चढ़ावा और माते कोई कह नहीं कैमरो भेजियो कोई पुराना गीत वेद होना
1: होना सर।

0: वाह भाई रे वाह, कह दियो नहीं आज तो कह भाई नंबर ले गो कमल।
1: हाँ यूँ
0: भले
1: आगे ऐसा विमलेश कांति वर्मा अपना जन्म 4 जुलाई 1943 प्रयागराज यूपी में हुआ सा। पिछले 4 दशक को अधिक समय वो निरंतर अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कोश निर्माण पटालोचन अनुवाद
0: सांस्कृतिक बहु गुणी मिनक है
1: अध्ययन क्षेत्र में देश विदेश में नाम
0: विद्वान मिनक है तो आने का कोटि कोटि बधाई देनी है।
1: हाँ सर बधाई
0: देनी भगवान कह नहीं हजत हजर आके का काम करता रहे बड़े।
1: आगे लक्ष्मीकांत पारसेकर 4 जुलाई 1956 गोवा में जन्मे हैं। राजनीतिज्ञ है 2014-17 तक गोवा का 10वां मुख्यमंत्री रूप।
0: वाह भाई वाह है कटी कोई कह नहीं मुख्यमंत्री रो दो क्या हमारे लोग कोई छोटी बात को है नहीं। और एडा जग सावा काम करिया तो आनी कोटि कोटि बधाई है और भगवान हजरत जरा के सो का काम करता रहे बड़े।
1: है तो जन्मे जी का सा अनाज फोत हुआ पहले नाम है स्वामी विवेकानंद जी। 4 जुलाई 1902 ने फोत हुआ सा अपने मान आध्यात्मिक गुरु दार्शनिक ने रामकृष्ण परमहंस राय शिष्य और मुख्य रूप 1893 शिकागो में वो विश्व धर्म सभा में भाषण दियो नहीं वो है ना ऐतिहासिक बात।
0: अच्छी बात है देखो अगर विवेकानंद जी विवेकानंद जी
1: हाँ सर
0: बे मोतियारा ने कहो उठो जागो और हार मत मानो जीत जीत नहीं वे जीते थे
1: हाँ
0: जो रुको मत
1: रुको
0: और बे कह नहीं भाई सन्यासी होया और उठे कह नहीं पराई धरती अमेरिका में जान बे जब भारतीय संस्कृति सभ्यता की बात बताई तो कह है कृष्ण भगवान ने लाल जी गोपियां फिरती के जी उठे बे जिका कोई बो कह के मोठो ठोड़ ही जट सभा हुई मिन को बार लाड़ दौड़ी
1: लाड़ दौड़ी
0: और माने मानिया और भारत कह नहीं की भाई कह के सभ्यता संस्कृति ने बे आके संसार में कह के झंडो ऊंचो करियो तो स्वामी जी नहीं है जिसको कोई नहीं भूल सके पर्वत पर धोख देवा कोटि कोटि नमन करा और मंदिरा फूल चढ़ाओ बारे भतरे मार्ग माते हालता रहो थे ठीक है।
1: हाँ सर
0: भले
1: आगे ऐसा पिंगली वेंकैया 4 जुलाई 1963 ने फोत होया ऐसा महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत देश राष्ट्रीय ध्वज पारंपरिक डिजाइन बनने वाला है।
0: हाँ जी बात है भाई देखे जब

0: इसरो का नी तिरंगो नी झंडो थरपी जी नो हो।
1: हाँ सर।
0: उन टाइम रा नियारा नियारा रंगा ना कई है जुगो का नी क्या झंडा आया
1: आया सर।
0: संविधान सभा रे हम ही पचे है जुगो है कहूँ पिंगली कहूँ कह
1: पिंगली वेंकैया जी है।
0: हाँ पिंगली वेंकैया जी है ए जुगो झंडो बनायो।
1: हाँ सर।
0: और कह नी केसरिया सफेद हरा।
1: हाँ
0: और मैं अशोक चक्र का निशान और कह नी कह राष्ट्रीय कह प्रतीक चिन्ह है और झंडे ने नीचे आप हैंगी क्या नहीं हैंगी हिफाजत में।
1: हाँ सर।
0: तो भाई ऐडा बिल्ला मिनका ने कोई नहीं भूल सके पर बातें पौर ढोक दा कोटि कोटि नमन करा मन डेरा भूल से ना बड़े
1: आगे ऐसा अम्मू स्वामीनाथन 4 जुलाई 1978 ने पोत हुई सा अपने आंदोलन की सेनानी सामाजिक कार्यकर्ता देश संविधान सभारी चुनी गई महिला है नवला।
0: ओ हो ठीक ठीक देखे भाई संविधान जिन टाइम बन ढुको नी।
1: हाँ सर।
0: डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैंगा नी कह नी हाथ लिया
1: लिया सर।
0: और लुगी जात ने कह भाई बारह हक कूदबा ने पूछ ने जिको पूछ
1: बीकानेर राजस्थान रहा।
0: हाँ।
1: हिंदी फिल्म में मान गीतकार मु एक हानव।
0: अरे हाँ भाई बीकानेर जोधपुर गिरती कोट में कोई होटल में ही काम करियो।
1: अच्छा।
0: हूँ उन टाइम देखे भाई के थोड़ो न हो जब बाबे रहते एक आया मैं गिरदी कोट जब उठे आऊ मिल जा।
1: अच्छा।
0: पते है जी को उठ गया पर बम्बई उठ जान कह नी अपने मारवाड़ी राजस्थान जी जिकी कह नी के भाई खास बात है मैंने गीता में लिखी।
1: अच्छा।
0: और गीता में लिखी इन बे सिनेमा में है जी को गीत बनिया
1: बनिया
0: तो ऐडा मिनका ने कोई नहीं भूल सके। और बिरला कह नी की मिनक है जी को कह आपरी की इनकी कह विरासत छोड़ दिया तो कोटि कोटि नमन है मन डेरा फूल चढ़ावा और लिखियो कोई बढ़िया छोको कह नहीं कोई गीत लो तो होना
1: होना।

0: ठीक ठीक है तो जैद सित्तो और भिलमरो गीत है।
1: हाँ नवलाबा
0: समझा नहीं। अरे भाई क्या नहीं सूरो गीत है,
1: है
0: और मोटी बात अहंग बली है ठीक है भैया। हमें क्या नहीं मंदिर फूल सजा दिया कोटी कोटी नमन कर दिया और हमें भाई देखे मेरी बाढ़ जो भाई और तो कहीं को नहीं हम बाढ़ कांटो ही कर दियो हुड़ा पाड़ी होगा
1: होगा
0: पड़ी हम कद भर गया बस कुदरत अरदास है
1: बादला तो आवे ऐसा
0: आवे है पर हम भरी हो कह पांचा चारा मकीन है जी को कह भरी भरी
1: हाँ सा
0: देर है पर अंधेर नहीं है हमें थे देर अंधेर मत करो थे देखो जिम जिम कह में आंधी का दिन है फटाफट रसोड़े में तैयार कराओ बेलू
1: कराऊ
0: और हूँ फेर दू माला
1: हाँ
0: भैया देखे माला फेर बैठो हूँ जी तो थे एकदम भोजन भोजन सीजे तैयार और अर्जिश होने ही कोई
1: अर्जिश बाकी
0: सुना भाई।

0: Vabbè, a me va anche i cuori, è malapeduto. A certi anni che allora mi devo stare in un sai che andare in pergo, un programma temo che pure poi se non le va lì, ram ram.
1: अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
2: अब सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण व उद्घाटन समारोह किया गया, उस पर प्रसारित की जा रही है रेडियो रिपोर्ट।

0: श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ चिप का उत्पादन का लक्ष्य रखने के लिए बधाई दी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा

0: निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विकास को रेखांकित करती है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मैनचेस्टर में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालीन योगदान को महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सैन्यकर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज
2: पानी के लिए 230 किलोमीटर लंबी एक अलग पाइपलाइन द्वारा नचना जलाशय से पानी लाने की व्यवस्था की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका स्पष्ट संकल्प था कि थार क्षेत्र को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यह परियोजना सितंबर 2013 में इस परियोजना का की शुरुआत हुई। अप्रैल 2017 से तत्कालीन राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तब ये हालत बदली और ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी।
3: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित महामहिम राज्यपाल महोदय और अन्य आमंत्रित मेहमानों का अभिनंदन किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका राजस्थान से हमेशा विशेष लगाव रहा है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के धरातल पर उतर गए। सरकार का एक साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने रामजल सेतु लिंक परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 22 मई को 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में बना रहे थे, तब आपने अमृत भारत स्टेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में बांसवाड़ा में आपने माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास सहित 1,80,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के उपहार राजस्थान को आपने दिया था। इस वर्ष 28 फरवरी को अजमेर में आपने करीब 22,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर एवं 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना के साथ देशव्यापी HPV वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया था। आपने प्रदेश को भारत माला परियोजना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी ऐतिहासिक सौगातें दी है। आज भी आपके कर कमलों से प्रदेश को 1,05,000 करोड़ से अधिक के विकास के कार्यों की सौगात मिलने जा रही है।
3: राजस्थान रिफाइनरी लोकार्पण के साथ 13,000 करोड़ लागत की जयपुर मेट्रो फेज 2, 34,000 करोड़ रुपए की यमुना जल परियोजना का उद्घाटन

0: किया गया। इससे शेखावटी क्षेत्र में जलभाव से मुक्ति मिलेगी। 75 लाख आबादी निर्बाध जल प्रवाह से लाभान्वित होगी।
1: राम जल सेतु और यमुना जल परियोजनाएं राज्य के जल प्रबंधन को नई दिशा दे रही हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हर जरूरतमंद परिवार को अपना घर दे रही है और सड़क विकास गांवों को शहरों से जोड़ रहा है।
0: इस अवसर पर ऊर्जा, नागरिक उड्डयन एवं रेल विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया गया।
2: रेगिस्तान का रत्न HPCL, राजस्थान रिफाइनरी और चूरू सादलपुर चूरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण कार्य। अब हम आप सभी की तालियों के उद्घोष के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्साह के अतिरिक्त के साथ आग्रह करते हैं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर हम सभी राजस्थानियों को ये सौगात प्रदान करने की कृपा करें। मान्यवर,
0: समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न आयोजनों में उपस्थित हुए लाखों लोगों का अभिवादन किया। आपने इस उपस्थिति को सरकार के विकास कार्यों में सहभागिता बताया।
3: आज राजस्थान की धरती से भारत ने विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहां हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं। 2 महीने पहले यहां जो हादसा हुआ उसके बाद इतनी तेजी से काम पूरा कर लेना, ये भी परिश्रम की पराकाष्ठा का उदाहरण है। आप सबने दिखा दिया है, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता। भाइयों बहनों, आज राजस्थान में विकास के कई और भी कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आज ही जोधपुर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है और मैं सोशल मीडिया में देख रहा था ये नए टर्मिनल का आर्किटेक्चर इंटीरियर ये सोशल मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ राजस्थानी राजस्थान दिख रहा है। साथियों, ये मारवाड़ में पर्यटन, व्यापार और रोजगार को नई गति देगा। इस कार्यक्रम में जो लोग जोधपुर से जुड़े हैं मैं उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के

0: चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है। भाइयों बहनों, शेखावटी क्षेत्र के जल संकट को दूर करने का इंतजार भी अब खत्म होने जा रहा है। मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रिफाइनरी के उत्पादों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
0: जब राजस्थान विकास

0: भविष्य को नई दिशा दे रही हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों से युवा हुनरमंद बन रहे हैं। शिक्षा में सुविधाएं बढ़ी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, साइकिल, स्कूटी जैसी पहल बच्चों के सपनों को गति दे रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना के साथ राजस्थान में महिलाएं नई ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं।
1: आकाशवाणी बाड़मेर द्वारा उत्पादित इस रेडियो रिपोर्ट के निर्देशक थे चमनलाल चौधरी और प्रस्तुतकर्ता दिनेश कुमार सैनी, वाचन स्वर मुकेश पाल सिंह।
2: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी द्वारा पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन समारोह की रेडियो रिपोर्ट आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हमने रिले की। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा मैं कहती हूँ

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी

0: रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना बॉबी फिल्म से लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में। गीत के बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, प्रेम कहानी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के हैं गीत के बोल, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: महबूबा फिल्म से आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में आइए सुनते हैं हाथ की सफाई फिल्म से ये गीत। गुलशन बावरा के हैं गीत के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं दोस्त फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक

0: इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रूपये से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है।

दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। तोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए।

0: बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश महागो विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate. And in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमी कंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India, where engineers and professionals from various states are working under one roof to power the global digital economy. The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Addressing at the occasion, Union Minister Ashwini Vaishnaw announced that India will have 5 operational semiconductor plants by the end of 2026. He emphasized

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हमारे आज के कलाकार थे अदनान सामी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।

0: नमस्कार। आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार। सावन अगर हकीकत है तो आषाढ़ एक कल्पना, ऐसी कल्पना जिसमें भरे होते हैं खुशी के रंग, झीनी बहार, गर्म हवाओं के बीच हल्की सी फुहरन, जैसे तस्वीर खिंचवाने के बाद उसे देखने की त्वरित ललक होती है या कपड़े सिलवाने के बाद उन्हें पहनने की, ठीक वैसे ही आषाढ़ में धरती खुद को आकाश के आईने में निहारने को आतुर रहती है, खूब सजना सवरना चाहती है, बादलों और हवाओं को हरी ओढ़नी सिलने को दे आती है, खूब बतलाना और जतलाना चाहती है, सिद्ध करना चाहती है अपने होने और जग की सार्थकता को। आकाश और धरा के बीच जो रिक्त है, जो दूरी है, उसे पास लाती है, उसे मिलाती है, उसे बुलाती है ये बरखा। सही मायने में ये बरखा ही सार है, आधार है इस संसार सागर का, जीव जगत के अस्तित्व का। बरखा है तो ये कहानी है, बरखा है तो ये रवानी है, कोई इसमें बहुत ज्यादा डूब जाता है तो कोई सारा का सारा प्यासा रह जाता है। बरखा खुले में मैदानों में होती है, मगर घर की बहुत सी खिड़कियों से प्यास झांकती रह जाती है। बशीर बद्र का एक शेर सायाज ही याद आ रहा है, जिस बादल की आस में जूड़े खोल दिए सुहागन ने, वो पर्वत से सिर टकरा कर बरस गया सहराओं में। सुनते हैं रूपक, मेघ, मन और मालवा।
2: प्रकृति की लय में आषाढ़ का एक दिन। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में लिखा है, आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिस्त सानु वक्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। यानी आषाढ़ के पहले दिन जब यक्ष ने पर्वत के शिखर पर झुके हुए मेघ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि एक हाथी क्रीड़ा में मगन हो टीले से मिट्टी खोद रहा है, तो यक्ष अपनी पत्नी यक्षिणी की स्मृति में व्याकुल हो उठता है और मेघ को ही अपना संदेश वाहक बनाने का निश्चय करता है। कालिदास की ही रचना मेघदूत से प्रेरित होकर मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक लिखा। ये कालजयी कृति आधुनिक हिंदी नाटक की आधारशिला मानी जाती है। आषाढ़ का पहला दिन भारतीय काव्य परंपरा में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं है, वे मनुष्य के भीतर घटित होने वाले भाव परिवर्तन का भी समय है। उमड़ते मेघ, आकाश में फैलती घटाएं और वर्षा की पहली आहट भारतीय साहित्य में सदियों से प्रेम, प्रतीक्षा, स्मृति और विरह के प्रतीक रहे हैं। कालिदास ने मेघदूत में मेघ को संदेश वाहक बनाया था।

0: ऐसा दूध जो दूरियों को जोड़ता है और स्मृतियों को जीवित रखता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यही प्रकृति बोध एक नए रूप में मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में दिखाई देता है। इस नाटक में प्रेम, विरह, सृजन और जीवन दृष्टि का संवाद है। प्रकृति है जो पात्रों की मन स्थितियों के साथ चलती है और मालवा का परिवेश है जो पूरे नाटक को संवेदनात्मक धरातल देता है। भारतीय साहित्य में आषाढ़ का महीना विशेष महत्व रखता है। ये केवल वर्षा का आरंभ नहीं बल्कि प्रतीक्षा, स्मृति, प्रेम और विरह का काल भी है। संस्कृत से लेकर हिंदी तक की काव्य परंपरा में आषाढ़ और मेघ मनुष्य की भावनाओं के वाहक रहे हैं। नाटक की शुरुआत ही आषाढ़ का पहला दिन और मूसलाधार वर्षा के साथ होती है। भारी वर्षा में मल्लिका कालिदास के साथ वर्षा विहार कर गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती हुई लौटती है और अपनी माँ से कहती है,
1: आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गईं और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ।
0: मल्लिका को भीगने का तनिक भी दुख नहीं होता। वो कहती है, अगर मैं नहीं भीगती तो इस सुख से वंचित रह जाती। वो उस सौंदर्य का वर्णन करती है जो उसकी स्मृति में स्थायी रह जाता है और यहाँ प्रकृति उसके मन की अनुभूति बन जाती है। मल्लिका कहती है,
1: मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघ मालाओं में खो जाता है, क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह रहता है।
0: मल्लिका केवल कालिदास से प्रेम ही नहीं करती, वह उनके भीतर के कवि को भी पहचानती है। इसीलिए जब उज्जैनी से कालिदास को राजकवि बनने का निमंत्रण मिलता है तो एक बड़ा द्वंद्व सामने आता है। कालिदास का मन तैयार नहीं होता। उन्हें लगता है कि इस गांव, इन पर्वतों, इन मेघों और मल्लिका से दूर होकर कहीं उनका रचनात्मक स्रोत सूख न जाए। मालवा की प्रकृति, आत्मीय परिवेश और मल्लिका, यही तो कालिदास की रचनात्मकता का आधार हैं। लेकिन मल्लिका अपने प्रेम को बंधन नहीं बनने देती। वह अपने व्यक्तिगत सुख से अधिक कालिदास की रचनात्मक यात्रा को महत्व देती है। वह उन्हें समझाती है कि उन्हें उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए। जब कालिदास कहते हैं,
2: फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजाश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है।
1: और वो प्रश्न मैं हूँ ना?
2: तुम पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ, उन सूत्रों में तुम हो, ये आकाश और ये मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा।
1: विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिन सब तुम्हारे साथ जाएंगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब कभी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़ते हुए मेघों से घिर जाया करूंगी।
0: कालिदास उज्जैनी पहुंचते हैं, वहां उन्हें यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, वैभव प्राप्त होता है, उनका व्यक्तित्व विस्तार पाता है और उनकी पहचान दूर दूर तक स्थापित होती है। लेकिन इसी यात्रा के साथ एक दूसरा परिवर्तन भी घटित होने लगता है। वे धीरे धीरे उस भाव भूमि से दूर होते जाते हैं जहां उनकी सृजनात्मक चेतना ने जन्म लिया था। जिस प्रकृति ने उन्हें संवेदना दी, जिन आत्मीय संबंधों ने उनकी

0: कल्पना को आकार दिया और जिस सहज परिवेश ने उनके भीतर के कवि को जन्म दिया था, वही संसार अब उनसे छूटने लगता है। नाटक का अंतिम भाग इसी गहरी विडंबना को उजागर करता है कि मनुष्य जीवन में उपलब्धियां तो अर्जित कर लेता है, पर कई बार उसी प्रक्रिया में वह उन स्रोतों से दूर हो जाता है जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को निर्मित किया था। उल्लेखनीय है कि नाटक की शुरुआत भी आषाढ़ की वर्षा से होती है और अंत भी वर्षा के ही वातावरण में घटित होता है। किंतु जहां आरंभ की वर्षा में उल्लास, प्रेम और संभावनाएं हैं, वहीं अंत की वर्षा में समय, दूरी और जीवन की अनकही रिक्तता का बोध है। इसीलिए आषाढ़ का एक दिन केवल कालिदास की कथा नहीं है, यह नाटक हमें बताता है कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे कुछ ऐसी स्मृतियां और संबंध भी छूट जाते हैं जिनका मूल्य समय बीतने पर अधिक गहराई से समझ में आता है।
1: वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसी ही वर्षा हो रही है, वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु
2: लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो मलिका, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो।

0: मेघ मन और मालवा, अभी आपने ये रूपक सुना। आलेख और वाचन सुश्री भावना झा का था और नाट्य स्वर था नेत्रा और प्रांजल का। साथियों, कहते हैं इंसान कुछ नहीं करता, समय प्रावर्तिक रहकर उसे उस ओर आकर्षित करता है। मोहन राकेश की कृति आषाढ़ का एक दिन विवेक, आत्मबोध और अनुभव जैसे बिंदुओं पर मौन रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है, चिंतन के नए द्वार खोल जाती है और यथार्थ कुछ कुछ तत्कालीन समाज को आगाह करता है। लेकिन एक सीढ़ी नीचे उतरा जाए तो वहाँ एक ऐसी पीढ़ी दिखाई देती है जो जड़ता, बंधन, दमन और शोषण में लिपटी हुई है। निराशा के बीच वहाँ कोई उम्मीद भी नहीं। साहित्य के हर अनुयायी ने किसी न किसी मोड़ पर प्रेमचंद को अवश्य पढ़ा है। सब कुछ न सही पर बहुत कुछ जरूर पढ़ा है। कुछ ऐसा भी है जो नहीं पढ़ा होगा। आइए ऐसी ही कुछ रचनाओं पर चर्चा करते हैं वरिष्ठ प्रसारणकर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से। आपसे बातचीत कर रही हैं युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा।
1: 31 जुलाई को महान कथाकार साहित्यकार प्रेमचंद की जयंती है और प्रेमचंद जैसे बड़े और प्रसिद्ध लेखक की कुछ रचनाएं जो कालजयी हो गई, मगर ऐसी भी बहुत सी रचनाएं हैं जिनका जिक्र कम होता है या जिनको एक आम पाठक द्वारा या कुछ खास पाठकों द्वारा भी कम पढ़ा गया है। हालांकि वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में। प्रेमचंद कुछ अनपढ़े कुछ अनसुने, इस विषय के इर्द गिर्द आज हम बात करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल वो ये है कि कुछ रचनाएं जो इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनकी पहचान ही बन गई, तो क्या इसी लोकप्रियता ने उनकी अन्य उत्कृष्ट रचनाओं को पाठकों की दृष्टि से ओझल कर दिया?
2: देखिए, ओझल कर दिया शायद ज्यादा बड़ा एक बयान होगा, और वैसे एक हद तक तो ये देखिए होता ही है कि किसी भी रचनाकार ने अगर प्रचुर मात्रा में लिखा है तो उस प्रचुर मात्रा में लिखी गई रचनाओं में से कुछ रचनाएं अधिक चर्चित होती हैं, किसी समय विशेष में ज्यादा चर्चित होती हैं। समय बदलता है, युग के मानदंड और मान्यताएं बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, मनुष्य के सरोकार बदलते हैं, तो उसके साथ साथ कई कहानियां, कई रचनाएं, कई कविताएं, कई उपन्यास फिर से वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

0: जाते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आपकी साहित्य में रुचि है और आपको साहित्य पढ़ने में सुख मिलता है और उससे आप कुछ समृद्ध होते हैं, तो हर साहित्यकार की और खासतौर से खूब लिखने वाले साहित्यकारों की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं, उनके अलावा भी कई रचनाएं होती हैं जिनको पढ़ने से आप समृद्ध होते हैं और उनकी रचना धर्मिता के बहुत सारे ऐसे पहलू आपके सामने आते हैं जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं।
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
0: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी

0: में आते हैं, जो कुछ रचनाओं विशेष पर अगर आप केंद्रित बने रहें तो उतने प्रकट नहीं होते हैं,
1: वो रचनाएं भी बहुत इजाफा करती हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि प्रेमचंद की ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनका साहित्यिक मूल्य आपकी दृष्टि में बहुत ऊंचा है लेकिन कम पढ़ी गई या कम चर्चित है या बिल्कुल ही अनदेखी रह गई?
0: देखिए, बिल्कुल अनदेखी रह गई वाली बात तो थोड़ी कठिन होगी, क्योंकि प्रेमचंद का जैसे मानसरोवर है जिसमें उनकी कहानियां संग्रहित हैं और बहुत सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों की चर्चा तो शायद एक बातचीत में एक आदमी के द्वारा करना लगभग असंभव ही होगा। एक संयोग है, मेरी स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश में हुई और ये दौर था, ये 1960 के दशक का अंत था और उस समय उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तिका हुआ करती थी जिसमें प्रेमचंद की ऐसी कहानियां थीं जिनको बाल मनोविज्ञान के साथ जोड़ करके ज्यादा बच्चों के लिए इनको अनुकूल माना जाता था और प्रेमचंद की कई कहानियां एक साथ पढ़ने का जो सौभाग्य था वो उससे शुरू हुआ। उसमें जहां तक मुझे याद है कि कफन शायद नहीं थी, सबसे चर्चित कहानियों में कफन है, पूस की रात है, लेकिन कई कहानियां थीं जो बहुत चर्चित हैं और सब जानते हैं, ईदगाह जैसे महान कहानी है और ईदगाह उसमें थी। हाँ, एक कहानी और जो बहुत लोकप्रिय भी है और मुझे बहुत प्रिय है, बड़े भाई साहब, जिसमें अगर आप पढ़ें तो शिक्षा की बात है लेकिन साथ साथ मनोविज्ञान भी है, अद्भुत कहानी है। अगर इससे हम जोड़कर देखें तो मुझे एक कहानी जो बहुत प्रिय है वो गुल्ली डंडा है। इस कहानी में ये है मूल रूप से कि एक आदमी है जो अब किसी कस्बे में रहता था बचपन में, वहां उसका बचपन बीता है और अब वो बाद में उसके पिता का ट्रांसफर हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक समृद्ध घर का था, वो इंजीनियर बन गया और बहुत साल बाद उस अपने कस्बे में लौट के आया है। अब वो याद कर रहा है तो उसमें उससे मीठी याद है वो गुल्ली डंडा के खेल की है और फिर उसकी जो रोमांच का वर्णन करते हैं पर गुल्ली डंडा का पूरा जो आनंद होता है, लेकिन साथ साथ एक सामाजिक चेतना अपने आप आती है और कहा जाता है कि हिंदी में ऐसी कहानियों की कमी है जिनमें खेल का, विज्ञान का, ऐसे विषय जो है अपेक्षाकृत कम आते हैं। तो ऐसी अगर आप प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी आप, जो कि बड़ी काफी प्रसिद्ध कहानी है, पर उसमें जो आप याद करें कि भारतीय ढंग के शतरंज में प्यादे किस तरह चलते हैं और विलायती शतरंज में कैसे चलते हैं, इसको वो कहानी की विकास में और कहानी के मर्म के बयान में इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि सिर्फ शतरंज का ही नाम नहीं रख दिया है। ऐसी एक कहानी जो मुझे याद आती है इसमें बाल मनोविज्ञान की ही अगर बात करें तो रामलीला कहानी। रामलीला कहानी हमारे आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही सार्थक और प्रासंगिक है। अब इस कहानी में क्या है कि रामलीला हो रही, अच्छा शुरुआत इससे होती है कि वो आदमी जो कहानी लिख रहा है वो फिर वही मामला है कि वो बूढ़ा हो चला है और लिखते हैं कि अब जब मैं लोगों को खोटे लगाकर और हु करते दौड़ता हूं तो कई बार हंसी आती है, पर बचपन में लगता था कि उसका जादू था, उसका रोमांच था। और फिर लिखते हैं कि मेरे बगल वाले घर में ही वो मेकअप हुआ करता था और जिसमें वो सीता का मेकअप और तमाम देवियों का मेकअप और उन पर बुंदियां चिपकाना और रज पीस करके लगाना उनके ऊपर जो पाउडर, और मैं बहुत उत्साहित रहता था। और जब राम का और सीता लक्ष्मण का रथ निकलता था तो राम के पीछे खड़े होते थे और लिखते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो आनंद उसमें आता था वो लाट साहब के चैम्बर में बैठकर भी नहीं आया। मतलब लाट साहब उस जमाने में जो ब्रिटिश टाइम था, हम जानते हैं कि प्रेमचंद चले गए 8 अक्टूबर 1936 को। यहाँ तक तो कहानी बच्चे की है लेकिन उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है कि रामलीला का मंचन हो चुका है लगभग, और अब स्थिति यह है कि उसमें चर्चा चल रही है कि जो कराने वाले लोग हैं, जो कमेटी है, जो जमींदार साहब हैं, कि चढ़ावा कम आया है तो मतलब ये कि जो मुनाफा होता था, जो कमाई होती थी रामलीला के जरिए, वो उतनी हो नहीं पाई, तो उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो भरपाई के लिए अंत में ये होता है कि कोई नाचने वाली एक महिला है उनको बुलाया जाता है और फिर उनको ये काम दिया जाता है कि अपनी अदाओं से आप लोगों से कुछ पैसे निकलवाइए, और वो निकलवाती हैं। और उसमें होता ये है कि बालक जो कहानी कह रहा है, इस बालक के पिता पुलिस में हैं और बड़े कड़क आदमी हैं, तो इससे भी वो मांगती हैं कुछ पैसे दीजिए इस तरह का, तो लोग कहते हैं कि इनसे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तो वो बड़े गुस्से से देखते हैं और निकाल के अशर्फी दे देते हैं। इनको बड़ी शर्म भी आती है कि मेरे पिताजी जो है वो यहाँ आकर के इस तरह पैसे दे रहे हैं। अगले दिन स्थिति ये होती है कि राम, सीता और लक्ष्मण रो रहे हैं, मतलब वो बच्चे रो रहे हैं जो उनका अभिनय करते थे, और राम का अभिनय करने वाला जो बच्चा है वो उनको समझा रहा है, तो बताते हैं कि इस बार जमींदार साहब ने कुछ दिया नहीं, कहा कि बहुत कम आमदनी हुई है, आगे कभी ले जाना, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करें कैसे जाएं सोच रहे हैं। तो ये पिताजी से पैसे मांगने जाता है कि आप 2 रुपए दे दीजिए तो उन लोगों को दे दूं, तो वो नहीं देते। अब यहाँ बाल मनोविज्ञान का एक रूप देखिए। उस दिन से मुझे अपने पिता से ऐसी चिढ़ हो गई कि जीवन में उनके किसी सीख को फिर मैंने माना ही नहीं। इससे मेरा नुकसान भी हुआ लेकिन मेरे अंदर ऐसी एक जुगुप्सा पैदा हुई कि आप उस नाचने वाली को अशर्फी देने को तैयार थे लेकिन इन बच्चों को आप नहीं दे सके। और फिर वो कहते हैं कि मैं कहीं से, मुझे 2 आने कहीं पड़े थे या मिल गए और वो जाकर माँ से मांग के या कहीं से 2 आने दिए। यानी एक कहानी का वो एक सिरा उठाते हैं और उस सिरे से वो उसे कहां तक ले जाते हैं। कई कहानियां और दिमाग में घूमने लगी। प्रेरणा कहानी याद आ रही है, एक बच्चे की कहानी जिसको अपने शिक्षक से प्रेरणा मिली।

0: सही है कि ज्यादा चर्चा ये केंद्र में वही कहानियां रहती हैं जो बहुत चर्चित हैं और होनी भी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ।
1: तो जहाँ आप होनी भी चाहिए, जहाँ आप कह रहे हैं, वहाँ एक सवाल मन में आता है कि क्या जिन रचनाओं को हमने मान लिया है कि जो बहुत चर्चित हैं, बहुपठित हैं, उनमें और जो दूसरी और रचनाएं जिनका भी आप जिक्र भी कर रहे थे उदाहरण सहित, तो क्या उनमें अपने कथ्य में, अपने प्रभाव में या उनकी अपनी शैली में, रचने की शैली में कुछ मूल अंतर है?
0: नहीं, अंतर नहीं है, विस्तार है। मुख्य बात यह है कि प्रेमचंद का एक तो विकास हुआ लगातार। प्रेमचंद ने बिल्कुल सामान्य किस्सा गोई से शुरू किया और वो निखरते चले गए। प्रेमचंद जो हैं, उनकी जो आखिरी दौर की कहानियां हैं, कफन है या पूस की रात है, ये उनकी सबसे महान कहानियां मानी जाती हैं। उनका अंतिम पूरा जो उपन्यास है वो गोदान है, जो उनका महानतम उपन्यास माना जाता है। और सच्चाई ये है कि उनका वैचारिक विकास भी हुआ, वो एक किस्सा गोई से आगे बढ़े, अपने समय से प्रभावित थे, आदर्शवादी चेतना के साथ आगे बढ़े, हृदय परिवर्तन बहुत होता था उनकी कहानियों में। लेकिन ये है कि प्रेमचंद के यहाँ हमें क्या मिलता है, आपने पूछा, वो ये मिलता है कि जब आप कुछ कहानियों पर ही केंद्रित रहते हैं तो आपको एक बानी मिलती है उनकी कहानी कला की, उनके सरोकारों की। जब और कहानियां पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन के इतने सारे तमाम पक्ष और हैं। प्रेमचंद उतने तक ही नहीं थे, वो सामाजिक यथार्थवाद की चेतना, सामाजिक प्रतिरोध की चेतना, बदलाव की चेतना, आजादी की लड़ाई का हिस्सा, मजदूरों किसानों के हकों के लिए लड़ने वाले। तो वो आप देखें कितनी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल आपके आसपास घट रही हैं। इसको देखने के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि कितने तरह से जीवन को उन्होंने देखा, उस पर विचार किया। प्रेमचंद ने कहा है कि सच्चा साहित्यकार स्वभावतः प्रगतिशील होता है और साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, उनके वाक्य हैं। लेकिन ये है कि मनुष्य से और सृष्टि से बहुत गहरा और आत्मीय प्रेम किए बिना आप साहित्यकार नहीं हो सकते, कलाकार नहीं हो सकते, अच्छे मनुष्य नहीं हो सकते। और प्रेमचंद के यहाँ उनकी कहानी कला में कितने व्यापक स्तर पर, कितनी सूक्ष्मताओं के साथ हमारा संसार, हमारा जीवन मिलता है, जो तब था और जो आज 9 दशक बाद भी प्रेमचंद हमारे पुरोधा हैं और हमारी उंगली पकड़कर हमें ले चल रहे हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने विस्तार में प्रेमचंद की कहानियों के बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराया आपने।
2: ये भी प्रेमचंद, अभी आप इस विषय पर वरिष्ठ प्रसारण कर्मी, लेखक और आलोचक श्री राजीव कुमार शुक्ल से बातचीत सुन रहे थे। आपसे बातचीत कर रही थी युवा लेखिका नवोदिता मिश्रा। साथियों, प्रेमचंद का युग यकीनन वैसा ही रहा होगा जैसा उनकी कृतियों में है, पर देश को आजादी मिलते ही सब कुछ न सही पर बहुत कुछ बदला। राष्ट्रीय धारा के कवियों की चेतना प्रस्फुटित हुई। अतीत और तत्काल के महासंगम की ज्वाला ने देशभक्ति, एकता और अखंडता के नए सूत्र रचे। आइए उस धारा के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर की राष्ट्रभक्ति और शक्ति पर एक वार्ता सुनते हैं। दिनकर राष्ट्र के हितकर वार्ताकार हैं, वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और प्राध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी।
3: भारत के स्वाधीनता संग्राम में जो भारत के और भारतीय भाषाओं के, विशेष रूप से हिंदी के कवियों ने जो योगदान दिया, उसमें एक लंबी चौड़ी सूची है। माखनलाल चतुर्वेदी हैं, सोहनलाल द्विवेदी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और इसमें एक नाम है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर न सिर्फ राष्ट्रीय भावना के कवि हैं बल्कि उनकी वाणी में और उनकी लेखनी में जो ओज था वो अद्भुत ओज था। और मंचों पर जिस तरीके से वो कविता का गायन किया करते थे उसमें मुझे लगता है कि शायद सचमुच लोगों की भुजाएं फड़कने लगती होंगी।
4: सुख से नहीं, विवश उड़ने के पंख नहीं होने से, और मूक इसलिए कि उनके कंठ नहीं खुलते हैं। सोचा है यह कभी कि गूंगापन कैसी पीड़ा है, भीतर भीतर दर्द भोगना लेकिन बटा न पाना, उसे किसी से कहकर मेरे मन को चोट लगी है। बोल नहीं सकता जो उसका भी दुख कोई दुख है, कितने लोग समझते हैं भाषा उदास आंखों की।
3: आप लोगों को हैरत होगी कि रामधारी सिंह दिनकर 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली में किसान आंदोलन कर रहे थे उसके संदर्भ में उस समय जब विजय संदेश रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखते हैं तो उस कविता को पढ़ करके आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। और वो दृश्य सामने आ जाता है कि जब सरदार पटेल ने बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसमें ब्रिटिश सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। मैं आपको उनकी चार लाइनें सुना सकता हूं और अद्भुत आपको आनंद आएगा उस कविता को।

0: सुनने में।
1: तेग तोप तलवार उधर थी, इधर निरीहों की थी आह, उधर मिटा देने की धुन थी, इधर प्रबल मिटने की चाह, इधर उठी हुंकार, सृष्टि सारी वह डामा डोल हुई, प्रलय कारणी ध्वनि जनसत्ता की अतिशय अनमोल हुई, ठोक ताल दुंदुभी बजा शासन की हस्त हिलाई है, वीर बार दोली वालों की गाओ विजय बधाई है। निरे निहत्थे हैं पर क्यों डर जाएं तेरी फटकारों से, गगन गूंज जाएगा भीषण सहस हुंकारों से, दमन जेल से डरे कौन पाशवी शक्ति में क्यों भूला, भारतीय बच्चे झूलेंगे फांसी का प्यारा झूला, बलिवेदी पर चढ़कर जग में अनुपम कीर्ति कमाई है, वीर बारदोली वालों की गाओ विजय बधाई है। और एक कविता नहीं, उनकी लंबी कविताओं की ऐसी सूची है जो बार बार जहां पर वो इस तरीके की बात करते हैं। और जिस तरीके से फांसी के फंदों पर झूल जाने वाले हमारे क्रांतिकारी थे, शहीद थे, उनके लिए ये कविताएं एक ऐसा संजीवनी का काम करती थीं कि उन कवियों की कविताएं पढ़ करके लोग भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मिरथी जैसी काव्य कृति लिखी, और न सिर्फ राष्ट्र के स्तर पर वो जिस तरीके से समाज में भी बात करते हैं, जाति जाति रटते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। एक कविता और मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1945 में ये कविता लिख रहे हैं। हा भारत की लाल भवानी, जवा कुसुम के हारों वाली, शिवा रक्त रोहिणी वसना कबरी में लाल सितारों वाली, कर में लिए त्रिशूल कमंडल दिव्य शोभनी, सुरसर स्नाता राजनीति की अचल स्वामिनी, साम्य धर्म ध्वज धर की माता, भारत भूमि के मिट्टी से श्रृंगार सजाने वाली, चढ़ हिमाद्री पर विश्व शांति का शंख बजाने वाली। 1945 के आसपास ना एक बहुत बड़ा ये चल रहा था कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और राष्ट्रीयता कहीं अंतर्राष्ट्रीयता में बाधित तो नहीं होती, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर भारत भूमि पर भारत के स्वाधीनता आंदोलन की आवाज बुलंद करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को उस देश के रूप में स्थापित करते हैं जो विश्व शांति की बात करता है। जिस समय भारत परतंत्र था उस समय ये बात कहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन दिनकर जी ने बात कही। जयप्रकाश नारायण रामधारी सिंह दिनकर जिसे बहुत अधिक प्रभावित थे, उस समय उनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दिनकर जी ने कुछ साम्यवादी स्वभाव की भी कविताएं लिखी और गांधी जी पर भी कविताएं लिखी उन्होंने, लेकिन खुद उन्होंने कहा ये कि मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के बीच में झटके खाता रहा हूं, इसीलिए उजले को लाल से गुणा करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है, वही रंग केसरिया रंग, वो रंग उन्होंने कहा। और स्वयं ये किसी आलोचक ने नहीं कहा, किसी दिनकर जी के पाठक ने नहीं कहा, स्वयं दिनकर जी स्वीकार करते हैं। 1965 के युद्ध के समय सैन्य शिविरों में वो कविताएं गाई जाती थी, और दिनकर की अन्य अन्य कविताएं जो हैं सैनिकों के लिए शिविरों में, वहां के आम आदमी जो थे जब गांवों से सेनाएं निकलती थी तो दिनकर जी की कविताएं गा गा करके सैनिकों का उत्साह बढ़ाया जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको रश्मिरथी पूरी याद है, परशुराम की प्रतीक्षा से वो उद्धृत करते हैं, क्षमा क्षोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो। ये कविता की लाइन ऐसी है जो आम तौर पर तब से पिछले 50-60-70-80 वर्षों से लेकर के आज तक जो है लगातार उद्धृत की जाती है, मुहावरा बन गई है, अपनी बात को कहने का अंदाज बन गया है। दिनकर जी की कविताएं जो है, शानों को मिलता दूध दही, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, ये कविता की पंक्तियां ऐसी हैं जो आम आदमी के मुंह पर, आम आदमी की जुबान पर आती हैं। अपनी बात को कहने के लिए दिनकर जी की पंक्तियों का उदाहरण देकर के जिस तरीके से अपनी बात को यहां पर पुष्ट किया जाता है या स्पष्ट किया जाता है, ये वास्तव में कवि दिनकर की वो सार्थकता है या वो उनकी सफलता है जो शायद हर कवि को नहीं मिलती। दिनकर जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, अपने समय का सूर्य हूं मैं। जब दिनकर जी इस तरीके की पंक्ति पढ़ा करते थे तो समूचा मंच जो है अनगिनत तालियों से भरा रहता था। एक लंबी उनका काव्य नाटक जिसमें चंद्रगुप्त के बारे में है, सेल्यूकस का उदाहरण देते हैं वो कि सेल्यूकस आपने आकर के हमें बहुत अच्छा किया कि हमें अपने आत्मगौरव का भान करा दिया। वो लिखते हैं, भारत भूमि है एक हिमालय से आसेतु निरंतर, पश्चिम में कंबोज कपिश तक उसकी ही सीमा है, किया कौन अपराध गए जो हम अपनी सीमा तक, अनाहूत हमसे लड़ने को क्यों सेल्यूकस चढ़ आया, मदोन्नमत यूनान जानता था न मगत के बल को, समझा था वह हमें छिन्न शायद पुर के कैसा, वह कलंक का पंख आज धुल गया देश के मुख से, हम कृतज्ञ हैं सेल्यूकस ने अवसर हमें दिया है। दिखा दिया पूरे विश्व को भारत की उस आत्मगौरव का व्यक्त करने का अवसर दिया सेल्यूकस ने, वीर सिकंदर के गौरव का प्रतिभू सेल्यूकस था, आज खड़ा है वह विपन्न आहत सा मगध सभा में, उस बलिष्ठ शार्दूल सदृश निष्प्रभ हत तेज अकिंचन, पर्वत से टकराकर जिसने नखरद तोड़ लिए हों, उस भुजंग सा जिसकी मणिमस्तक से निकल गई हो। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर।
2: दिनकर
0: राष्ट्र के हित कर। अभी आप ये वार्ता सुन रहे थे। वरिष्ठ लेखक, स्तंभकार और

0: अध्यापक डॉक्टर अवनिजेश अवस्थी की इस वार्ता के साथ ही हम अमित घोष, उमा शंकर जोशी, अजीत कुमार, महाश्वेता देवी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गोपाल दास नीरज, कुंवर बेचैन, कन्हैया लाल नंदन की स्मृति को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति राम अवतार पैरवा की।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हमने रिले किया। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
3: और आज इसे आगे बढ़ाने वाले गुणी कलाकारों में पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। कोलकाता के निकट स्थित उपनगर बोशीरहाट में जन्मे और संगीत के माहौल में पले बढ़े पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने अपने पिता संगीताचार्य श्री अरुण कुमार चट्टोपाध्याय से महज 5 वर्ष की आयु में संगीत सीखना आरंभ किया। आगे चलकर आपने पंडित ए कानन, विदुषी मालविका कानन और उस्ताद मशकूर अली खान जैसे प्रख्यात कलाकारों से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय ने बड़ी ही छोटी उम्र में मंच पर कदम रखा। केवल 7 वर्ष की आयु में सन 1979 में कोलकाता में आयोजित सुरेश संगीत सम्मेलन में उस्ताद अमजद अली खान के साथ आपको कार्यक्रम प्रस्तुत करने का सुयोग प्राप्त हुआ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड के कलाकार होने के साथ साथ आप संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत ICCR के सूचीबद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ भी हैं। आज की पीढ़ी के सुविख्यात ख्याल गायकों की श्रेणी में आपका नाम शामिल है। किराना घराना की पारंपरिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय अपनी ख्याल और ठुमरी की प्रस्तुतियों में अद्भुत सुंदर गायकी का मिश्रण करते हैं, जो आपकी पेशकश को रंगदार और लोकप्रिय बनाता है।
4: Tonight in the National Program of Music, we present Khayal Recital by Pandit Arnob Chattopadhyay, the musical heritage initiated by Ustad Abdul Karim Khan and Ustad Abdul Wahid Khan. The doyens of Kirana Gharana has meandered through the ages and is still survived by a few vocalists such as Pandit Arnob Chattopadhyay. Born and groomed in a musical ambience in the suburban town of Boshirhat near Kolkata, Pandit Arnob Chattopadhyay was initiated into the world of music at a tender age of 5 years by his father, Sangeetacharya Sri Arun Kumar Chattopadhyay. Later, he was trained in classical music by such stalwarts as Pandit A. Kanan, Vidushi Malavika Kanan and Ustad Mashkur Ali Khan. Pandit Arnob Chattopadhyay flowered into a young performer very early in his life. At the age of 7 only, he shared the stage with Ustad Amzad Ali Khan at the Suresh Sangeet Sammelan, Kolkata in the year 1979. A top-grade artist of Akashvani and Doordarshan and an empaneled Hindustani classical music artist at ICCR, Ministry of Culture, Government of India, Pandit Arnob Chattopadhyay is one of the most acclaimed vocalists of the present generation. While maintaining the pure tradition of Kirana Gharana, Pandit Arnob Chattopadhyay is known for mixing the other forms of Gayaki both in Khayal and Tumri presentations, which makes his renditions quite colorful and popular.
3: आज रात पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय के साथ संगत करेंगे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह।
4: Tonight, Pandit Arnob Chattopadhyay is accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha.
3: Khayal Gayan ke is karyakram

0: की शुरुआत पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय राग यमन के साथ करेंगे। यह बंदिश पूर्वार्ध में विलंबित एक ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय बिगिंस हिज ख्याल रिसाइटल विद राग यमन। द कंपोजिशन इज सेट टू विलंबित एक ताल फॉलोड बाय द्रुत तीन ताल।

0: अध्ययन के अंतर्गत आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग यमन सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग हमीर। यह बंदिश पहले मध्य लय तीन ताल तत्पश्चात द्रुत एक ताल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Yaman in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He now presents Rag Hamir, the composition of which is set to Madhyalaya Teen Tal, followed by Drut Ek Tal.

0: आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग हमीर सुन रहे थे। ख्याल गायन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग वाचस्पति के साथ करेंगे। यह बंदिश मध्य लय तीन ताल और द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: यू वर लिसनिंग टू राग हमीर। पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय कंक्लूड्स हिज ख्याल रिसाइटल विद राग वाचस्पति। The composition of the rag is set in Madhya Laya Teen Taal and Drut Teen Taal.

0: के इस कार्यक्रम में आप पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय से राग वाचस्पति सुन रहे थे। आपके साथ संगत कर रहे थे तबले पर इमोन सरकार, हारमोनियम पर कमलाक्ष मुखोपाध्याय और तानपुरा पर कोयल शाह। और इसी के साथ आज रात संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग वाचस्पति in the Khayal recital by Pandit Arnob Chattopadhyay. He was accompanied on the tabla by Imon Sarkar, on the harmonium by Kamalaksha Mukhopadhyay, and on the tanpura by Koel Saha. And with this, we come to the end of National Program of Music Tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.
2: अभी आप सुन रहे थे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हमने रिले किया। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka.

11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:51 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।